काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रभु स्मरण के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

यूं तो समूचा ब्रजधाम ही प्रभु का अत्यंत ही पावन है, लेकिन और वैसे भी अगर एक बार जो प्राणी ब्रज में आ जाए, या तो उसका जाने का मन नहीं करता, और अगर चला भी जाए तो हर पल आठ्याम ब्रज का ही स्मरण होता है, और ख़ासकर वृंदावन धाम, वहाँ की मंगल बेला कितनी चित्ताकर्षक होती है। तो ये मन फिर उसी में ही रम जाना चाहता है, और ये कह उठता है कि याद आवे वृंदावन की मंगल बेला।

वह राम रोम रोम में हैं, और फिर परमात्मा को आप जिस रूप में भी भजना चाहें, स्मरण करना चाहें, वह तो उसी रूप में ही अपने भक्त को नजर आते हैं। आपकी अनुभूति अपने इष्ट के उसके स्वरूप पर निर्भर करती है कि आप उन्हें किस रूप में भजना चाहते हैं, स्मरण करना चाहते हैं। बस मन की एक निष्ठा का होना बहुत ज़रूरी है, और ये सहजता जो हमें उस परम पिता से जोड़ती है, वो सहज भाव, वह प्रेम, सहजता की डोरी परम पिता से जोड़ती है। फिर चाहे आप राम या फिर श्याम या फिर कोई और नाम से, जिस नाम से आप बस स्मरण करें, करते जाएं, फिर देखिए मन को कितनी शांति मिलती है।

आप सुन रहे थे अभी संवेद स्वरों में देशभक्ति परक रचना को। इसके अलावा आपने जिन गायक स्वरों में भक्ति परक रचनाएं सुनी वे गायक स्वर थे हरिओम शरण, एम एस सुबुलक्ष्मी, पंडित भीमसेन जोशी और अनुराधा पौडवाल साथियों के। आज का वंदना कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। चिंतन

0: अनुक्रम में लीजिए आज प्रस्तुत है जीवन की सफलता संबंधी विचार। आज का है विमल अरोरा।
1: यदि हमारी कोई विशेषता और बहादुरी है तो वो बस इतनी भर कि प्रलोभनों और आकर्षणों को चीरते हुए दैवी निर्देशों का पालन करने में हमने अपना सत्साहस और मनोबल झोंक दिया। जो सुझाया गया वही सोचा और जो कहा गया वही करने लगे। हमने जीवन में एक ही उपार्जन किया है, प्रेम। एक ही संपदा कमाई है, प्रेम। एक ही रस हमने चखा है और वो है प्रेम का। हर किसी को विश्वास रखना चाहिए कि और हम कुछ हमारे पास हो चाहे ना हो, असीम प्यार भरी ममता से हमारा अंतःकरण भरा पूरा अवश्य है। जिसने हमें तिल भर प्यार किया है उसके लिए अपने मन में से ताड़ बराबर ममता उमड़ी है। लोग अपनी आंख से हमें कुछ भी देखते रहे हों, अपनी समझ से कुछ भी समझते रहे हों, किसी ने विद्वान, किसी ने तपस्वी, किसी ने तत्वदर्शी, किसी ने मांत्रिक, किसी ने लोक सेवी, किसी ने प्रतिभा पुंज आदि कुछ भी समझा हो, हम अपनी आंखों और अपनी समझ में केवल मात्र एक अति सहृदय, अति भावुक और अतिशय स्नेही प्रकृति के एक नगण्य से मनुष्य मात्र रहे हैं। प्यार करना सीखने और सिखाने में सारी जिंदगी चली गई। यदि कोई हमने धंधा किया है तो बस एक ही, महंगी कीमत देकर प्यार खरीदना और सस्ते दाम पर उसे बेच देना। हमारी एक ही प्रभुत्व संपदा है प्यार। इसी के बल पर तप, संतोष, विवेक, सेवा, स्वाध्याय, श्रम आदि अन्य सद प्रवृत्तियों को स्थिर रूप से प्राप्त करने का अवसर मिला है। आत्मविश्लेषण, चिंतन, मनन और अंतःमंथन के आधार पर यह सुनिश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमें यदि अंतरंग विभूतियां प्राप्त हुई हैं और उनके आधार पर वाय जगत में कुछ हलचलें उत्पन्न करने का अवसर मिला है तो इसका एकमात्र कारण हमारे अंतःकरण में आदि से अंत तक लबालब भरा हुआ है प्यार। लोग प्यार करना सीखें। हमें अपने आप में, अपनी आत्मा और जीवन में, परिवार में, समाज में, कर्तव्य में और ईश्वर में दसों दिशाओं में प्रेम बिखेरना और इसकी लौटती हुई प्रतिध्वनि का भाव भरा अमृत पीकर धन्य हो जाना, यही इस जीवन की सफलता है।
0: चिंतन बिंदु क्रम में अभी आप सुन रहे थे जीवन की सफलता संबंधी विचार, स्वर विमल अरोरा का था। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस कान से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण।

एक तनु नामक छद्म रूपधारी मुनि और सुअर रूप में प्रकट होने वाले राक्षस कालकेतु के मायावी षड्यंत्र के फलस्वरूप राजा प्रताप भानु ने भोजन के लिए 100,000 ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। राजा

के पुरोहित रसोइये के रूप में स्वयं कपटी मुनि ने वेदों में वर्णित 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन बनाया, जिसमें नाना पशुओं के अतिरिक्त ब्राह्मणों का मांस पकाया गया था। ज्यों ही राजा भोजन परोसने लगा कि गंभीर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, यह भोजन मत खाओ, इसको खाने से बड़ी हानि होगी, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। ये सुनकर स्तंभित ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हुए और राजा को शाप दिया कि 1 वर्ष के भीतर वह परिवार सहित राक्षस हो जाएगा। किंतु तभी फिर से आकाश से सुंदरवाणी घोषित हुई कि इसमें राजा का कोई दोष नहीं था, वह स्वयं तो निर्दोष था। ये सुनकर सभी ब्राह्मण चकित रह गए।

आप अभी सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण। गायक स्वर राजेंद्र कचरू और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर विशेष वार्ता में विजय कुमार आर्य की वार्ता। विषय होगा सरकार के 12 साल और आम आदमी के जीवन में बदलाव। दोपहर 12 का आज समय रहेगा। प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर का। आज इस कार्यक्रम में आप

कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द कारण लक्षण और निवारण इस विषय पर जानकारी ले सकते हैं। कार्यक्रम में शामिल होकर विशेषज्ञ डॉक्टर एस के गुप्ता होंगे, वरिष्ठ न्यूरोसर्जन। आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी सुनिएगा पूर्वाह्न 11 बजे।

0: दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम ब्रज लोक गीत प्रसारित किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में कलाकार होंगे लाखन सिंह। बहनें कार्यक्रम सुन सकेंगी वनिता लोक दिन में 1:15 पर। आज इस कार्यक्रम में चर्चा सुनेंगी बहनें महिलाओं के अधिकार और उनकी जागरूकता और महिलाओं के लिए सरकारी योजनाएं विषय से संबंधित। पहनावा वार्ता क्रम में आरती सेठ वार्ता प्रस्तुत करेंगी। विषय होगा ऑफिस में महिलाओं का कैसा हो पहनावा। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा 2:30 का दोपहर। युववाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा संध्या 5:30 पर। आज इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस और संध्या संविधान इस विषय पर आप चर्चा सुनेंगे और मार्गदर्शन क्रम में अमर सेठ की इनसे ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। विषय होगा कंपनी सचिव के क्षेत्र में कैरियर। साथ ही कुछ फिल्म संगीत भी इसी कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं। किसान वाणी कार्यक्रम में संध्या 6:15 पर आज आप सुनेंगे खेत बचाओ अभियान क्रम में प्राकृतिक खेती एवं संतुलित उर्वरक प्रबंधन। और वार्ताकार होंगे डॉक्टर विजय वीर सिंह निर्देशक DRMR, डॉक्टर रामस्वरूप जाट इनसे बातचीत करेंगे सत्यव्रत सिंह। संध्या 6:45 से आज आप सुनेंगे ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत बनाम बांग्लादेश के मध्य ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर से आंखों देखा हाल। और आंखों देखा हाल का प्रसारण आप मैच की समाप्ति तक सुन सकते हैं। इसके बाद के श्रोता साथियों, आप जो भी कार्यक्रम है यानी कि हमारे आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र से, वो प्रसारण ऐप हमारा न्यूज ऑन AIR पर आप विधिवत तरीके से सुन सकते हैं। संध्या 6:45 पर फिल्मी वजनों पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन सुनिएगा। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में देश समारोह क्रम में आज नेहा शर्मा जानकारी देंगी जगन्नाथपुरी स्थल के बारे में। शाम 7:31 पर सुनिएगा व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। और 10:00 रात्रि आप सुन सकते हैं रासलीला में आज प्रसंग होगा लीला श्याम सगाई बूझत श्याम कौन तुम गोरी। इसके लेखक होंगे हरिबाबू कौशिक, प्रस्तुति नरेश मल्होत्रा की होगी। रात्रि 10:30 पर उपशास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित भीमसेन जोशी का गाया ठुमरी गायन। ये था आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है खेती की बातें। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में आज पशुओं में गल घोंटू रोग विषय से संबंधित जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, पशुओं में फैलने वाली संक्रामक बीमारी गला घोंटू के बारे में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये बीमारी मुख्य रूप से जुगाली करने वाले पशुओं में देखने को मिलती है। जुगाली करने वाले पशुओं में भी मुख्य रूप से काले धन वाले पशु जैसे भैंस आदि में। यह रोग कम और युवा अवस्था वाले पशुओं में अधिक

0: होता है। इस रोग से ग्रसित 80 से 94% तक पशु मर जाते हैं। अब आप इस रोग के लक्षण के बारे में जान लें। शुरू में पशु खाना पीना छोड़ देता है, सुस्त हो जाता है, कानों का नीचे उसका लटकना, पहले कब्ज और फिर जोरदार दस्त, दांत पीसना तथा एकाएक शरीर का तापक्रम 104 से 108 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच जाता है। इसके पश्चात पशु की हालत तेजी से खराब होने लगती है, जैसे कंठ और जबड़े के बीच कष्टप्रद कड़ी तथा गर्म सूजन सी आ जाती है, जीभ सूज करके मुंह से बाहर निकल आती है, मुंह से लसलसा पदार्थ निकलता है, जीभ तथा गले की सूजन अधिक बढ़ने पर पशु को सांस लेना कठिन हो जाता है, जिसके कारण वह घुर्र घुर्र की आवाज़ करने लगता है। अंत में पशु अपनी गर्दन नीचे डालकर बेसुध होकर जमीन पर लेट जाता है और 12 से 36 घंटे में दम घुटकर उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, ये संक्रामक रोग है और इस रोग से ग्रसित पशु के संपर्क में स्वस्थ पशुओं के आने पर रोग फैलता है। यह रोग आपके गांव या क्षेत्र में फैले ही नहीं, इसके लिए सामूहिक रूप से वर्षा आरंभ होने के पूर्व पशुओं में टीकाकरण करवाना चाहिए। इसके लिए पशुपालन विभाग की ओर से सामूहिक टीकों का समुचित प्रबंध होता है। आप प्रखंड यानी कि ब्लॉक स्तर पर उपस्थित पशुपालन अधिकारी या नज़दीक के पशु चिकित्सक से टीकाकरण करवा लें। टीकाकरण सामूहिक रूप से ही करवाना होगा, वरना किसी एक पशु को रोग होने पर अन्य पशुओं के भी इसी रोग से प्रभावित होने का डर रहता है। अगर किसी कारणवश टीकाकरण सरकारी स्तर पर नहीं हो पा रहा है तो आप बाजार से गलाघोंटू कंपोजिट ब्रॉथ वैक्सीन नामक टीका खरीद करके लगवा सकते हैं। अगर किसी के पशुओं को ये गलाघोंटू रोग से प्रभावित है तो स्वस्थ पशुओं को उसके संपर्क में आप ना आने दें, उन स्वस्थ पशुओं को प्रभावित पशुओं से अलग ही रखें। स्वस्थ पशुओं को करीब 15 से 20 घन सेंटीमीटर सीरम का त्वचा के नीचे इंजेक्शन दिया जाता है। तत्पश्चात जब तक इस महामारी का प्रकोप कम न हो जाए, प्रत्येक 10 दिन के बाद सीरम का इंजेक्शन पशु को देते रहना चाहिए। ध्यान रहे, बीमारी फैलने पर किसी भी पशु को वैक्सीन का टीका न लगाएं, बल्कि इस कार्य को वर्षा प्रारंभ होने से पहले ही आप संपादित कर लें। इस रोग से प्रभावित पशुओं को सल्फामेजाथीन, सल्फाडाइजीन तथा टेरामाइसिन जैसे इंजेक्शन दिए जाते हैं और बेहतर ये रहता है कि जैसे ही इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई पड़ भी जाते हैं तो तुरंत नज़दीक के पशु चिकित्सक से मिलकर के अपने पशुओं का उचित इलाज कराना चाहिए। और अगर इस तरह का रोग फैले ही नहीं, इससे बचने के लिए अभी आप अपने पशुओं में टीकाकरण करवा लें।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में पशुओं में गलघोंटू रोग विषय से संबंधित जानकारी दे रहे थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 55 मिनट होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदेहल्याः सेवातीर्थस्थले प्रगति इति सूचना संचार प्रौद्योगिकी आधारित मंचस्य 25वें उपवेशनस्य अध्यक्षतां विहितवान्। अस्यां गोष्ठ्यां श्रीमोदी चतुर्षु राज्येषु विस्तृतान् मार्ग विद्युत औद्योगिकी वीथि तथा मेट्रो रेलवे क्षेत्राणां चतुर्प्रमुखान् आधारभूत संरचना प्रकल्पान् समीक्षितवान्। एतेषां प्रकल्पानां आहत्य व्ययः प्रायः 30,000 कोटि रूप्यकाणि अस्ति। आर्थिक विकासं क्षेत्रीय सम्पर्कं औद्योगिक विकासं तथा जनकल्याणं वर्धयितुं संधारिताः एते प्रकल्पाः, समयसीमा, विभिन्न संस्थानां समन्वयः तथा प्रलम्बित विषयानां शीघ्र निवारणाय विशेष ध्यानेन सह सन्ति समीक्षिताः। अद्य तावत् संविधान हत्या दिवसो वर्तते। दिवसोयं तस्याः घटनायाः स्मरणं कारयति यदा पंच सप्तत्युत्तर ऊन

आप सुन रहे थे अभी मुकेश की आवाज़ में फिल्म आँख मिचौली का ये गीत, और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आप अभी सुन रहे थे बेटी फिल्म के गीत को बासंती और खुर्शीद बानो की आवाज़ में। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत साथियों आपकी नज़र।

अभी आप सुन रहे थे ब्लफ मास्टर फिल्म के गीत को मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। और अब आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत।

आप अभी सुन रहे थे शैलेंद्र की इस रचना को लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने और फिल्म दाग का ये गीत था। साथियों, इस गीत के साथ ही आज का पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 7:18 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अगला प्रसारण।

0: सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिजिटल मंचों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। कहा, साइबर धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में राज्यों को करना चाहिए काम। लखनऊ अग्निकांड में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 PCS अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल। और प्रदेश भर में कल से मौसम के शुष्क रहने की संभावना। पूर्वी जिलों में 28 जून तक कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेवा तीर्थ में आयोजित प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता

0: की। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित यह बहुमाध्यम मंच केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों को निर्बाध रूप से एकीकृत कर सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रभावी योजना और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उपयोग पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से संबंधित शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने नागरिकों को ठगने के लिए डिजिटल मंचों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसे मामलों का सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा समन्वित, संवेदनशील और समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को साइबर धोखाधड़ी के मामलों

0: जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को साइबर धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित पंजीकरण और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
1: लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में LDA ने विभागीय जांच कर दोषियों को चिन्हित कर लिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आग की चपेट में आई इमारत का नक्शा वर्ष 2014 में पास किया गया था। इसके बाद वर्ष 2016 में LDA ने मानकों का पालन न करने पर इमारत को गिराने का नोटिस जारी किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। विभागीय जांच में तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 PCS स्तर के अधिकारियों की लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की संस्तुति की गई है।
2: तो इसमें जो दोषी लोग हैं, हम लोगों ने अपनी आंतरिक जांच कर ली है। जो दोषी लोग हैं उस समय जो तैनात प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रहे हैं उनके विरुद्ध, और साथ ही साथ निर्माण करने में जिन लोग का निश्चित रूप से सहयोग रहा होगा 16-17 में तैनात जो अधिकारीगण थे उनके विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई के लिए शासन भेज दिया है, और हम लोग शासन से अनुरोध भी कर रहे हैं कि सख्त से सख्त इन लोगों पर कार्रवाई की जाए।
1: अग्निकांड में घायल हुए 7 लोगों को इलाज के बाद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU से डिस्चार्ज कर दिया गया है। KGMU के प्रवक्ता KK सिंह ने बताया कि एक गंभीर रूप से घायल युवक की हालत भी अब स्थिर है। इस बीच प्रदेश भर में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम द्वारा कोचिंग संस्थानों में चेकिंग अभियान लगातार जारी है। गौतमबुद्ध नगर में सिटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश पांडे ने बताया कि वहां जांच के दौरान 2 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया। अयोध्या में CFO महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अयोध्या प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए 2 टीमें बनाई हैं जो फायर सेफ्टी की जांच के साथ लोगों को जागरूक भी कर रही हैं।
3: जो दुखद घटना हुई है लखनऊ में, उसके क्रम में हमारे जिले में 36 हम लोगों ने कोचिंग को रजिस्टर किया हुआ फायर सर्विस में, उन सभी को हम एक अभियान के तहत 2 टीमें हम लोगों ने बनाई हुई है। एक चेकिंग ड्राइव शुरू किया हुआ है, छोटी मोटी कमी मिल रही है तो उसको इमीडिएट रेक्टिफिकेशन के लिए कह रहे हैं, अगर कहीं कोई बड़ी कमी मिलती है तो निश्चित रूप से फिर उस पर कार्रवाई की जाए।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत इन्वेस्टर्स रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो के माध्यम से प्रदेश के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सेक्टोरल पॉलिसीज, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी आदि की प्रगति से अवगत कराते हुए निवेशकों को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश की जानी मानी कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की और कई निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश को लेकर बेहद सकारात्मक माहौल बना है।
4: भारत के 3S का एक मॉडल बना है, जहां सेफ्टी है, जहां पर स्टेबिलिटी है और स्पीड है। एक मजबूत रूल ऑफ लॉ के स्टेट के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आपको मिलेगा। एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस यूपी के अंदर आपको मिलेगी।
1: भारत में ताजिकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून जादा ने कल रामपुर स्थित रजा लाइब्रेरी और संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियां भारत और ताजिकिस्तान की साझा सांस्कृतिक विरासत को समझने में बहुत महत्वपूर्ण हैं। रजा लाइब्रेरी के निदेशक पुष्कर ने बताया कि ताजिकिस्तान और भारत के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जल्दी ही एक समझौता ज्ञापन MOU भी किया जाएगा।
5: भारत के बीच में सांस्कृतिक और अकादमिक सहयोग किस प्रकार का हो सकता है, उस दिशा में हमने बातचीत भी की, और आने वाले समय में हम वहां के संस्थानों और रामपुर रजा पुस्तकालय के बीच में समझौता ज्ञापन करेंगे। एक विशेष बात ये आई कि कुछ ग्रंथ यहाँ पर कजाकिस्तान से सीधा संबंध रखे और वो उस स्क्रिप्ट को और उस भाषा के अध्ययन के लिए मुझे हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर साहब ने कहा है कि वो वहां से स्कॉलर्स हमारे यहाँ भेजेंगे जो उसका अध्ययन कर सकें। और
1: राज्य सरकार ने मुजफ्फरनगर हरिद्वार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करने को सहमति प्रदान कर दी है। प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया, मुजफ्फरनगर हरिद्वार।

0: आरआरटीएस कॉरिडोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति देने वाला दूरगामी कदम सिद्ध होगा।
1: हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आरआरटीएस को मुजफ्फरपुर होते हुए हरिद्वार तक ले जाने के लिए डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया है। उस डीपीआर के लिए 6.43 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। शासन से इसके लिए पत्र जारी हो गया है। मंडलायुक्त मेयर को इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और जो डीपीआर की तैयार होनी है जितना हिस्सा मेयर के अंदर आएगा उसका पैसा मेयर का प्राधिकरण और जितना हिस्सा मुजफ्फरनगर जनपद में आएगा उसका पैसा मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण खर्च करेगा।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
2: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मौसम विभाग ने कल से प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 जून तक कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश भर में आज भी कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिजिटल मंचों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। कहा, साइबर धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में राज्यों को करना चाहिए काम। लखनऊ अग्निकांड में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 PCS अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल। और प्रदेश भर में कल से मौसम के शुष्क रहने की संभावना। पूर्वी जिलों में 28 जून तक कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए, वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
3: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।

0: श्रोता साथियों, आप सब कैसे हैं? बढ़िया हैं? तो बस अच्छा ही रहें, बढ़िया ही रहें, राजी खुशी रहें और स्वस्थ रहें। अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें, अपने परिवार को ध्यान रखें और आसपास ऐसे लोग जिन्हें आपकी ज़रूरत है, साहब के सहयोग की ज़रूरत है, तो जिनको ही ध्यान रखें। देखो, ज़िंदगी तो हिल मिल कर सबके संग साथ चल के जो है या को रहवे को नाम है। और अपने लिए तो अपने ताएँ तो सभी जिए हैं, है कि ना? लेकिन दूसरन के संग और दूसरन के ताएँ जीवे जीवे को जो आनंद है वो फिर बाको को विकल्पे ना इन्हें पल भर की जे जिंदगानी है और पल भर के ही तो ये जीवन है। पलक झपकते ही पल भर में का होए को कछु ना जाने और ना जान सके है। सब वह लीलाधारी की लीला है। समय, जीवन, मरण, ये सब तो वह ने अपने ही हाथ रखो है। हम सब के हाथ में तो बस सिर्फ अपने कर्म को जो है वह को भार दियो है, तो हम सब अपने या जो जिम्मेदारी वानी दीनी है तो वह को हम सब निभावें। बहरहाल, अपने कार्यक्रम में देखो, आज जो हम आपके ताई वार्ता लेके आए हैं बहुत ही बढ़िया है। और कम से कम अगर हम आज कहें कि आज के प्रसंग में, यानी कि जो वर्तमान में स्थिति चल रही है, चाहे वो ब्रज होए, चाहे वो कोई भी स्थान होए, है ना, पर्यावरण को जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबन के ताई, क्योंकि ब्रज के वृक्ष होए चाहे कहूँ के होए बहुत ही खास हुए हैं। लेकिन ब्रज की तो खैर बात ही अलग है। यहाँ के तो वन उपवन, इनमें तो इनकी शीतल घनी छाँव में कान्हा की विनके उनकी लीलान की जो हमें अनुभूति हुए है, बाकी गवाह है ब्रज के जो वृक्ष हैं। तो आज जो आप समझ रहे हैं हम आपके ताई जो वार्ता लेके आए हैं बहुत ही बढ़िया है। तो ब्रज के वृक्ष और लोक संस्कृति इन वृक्षन से कैसी जुड़ी भई है, तो लोक संस्कृति में विन को महत्व, यानी ब्रज के वृक्ष और लोक संस्कृति में विन को महत्व, और यह विषय पर हम सबन को बहुत ही बढ़िया जानकारी दे रहे हैं उमा शंकर। तो फिर आओ सुने जे वार्ता।
1: वृक्ष ब्रज संस्कृति के मूल आधार हैं। ब्रज प्रदेश विशाल वर्ण के काजें प्राचीन काल से विख्यात है। वृक्षण की महिमा शीघ्र प्राचीन ग्रंथ में मिले है। श्रीमद् भागवत में वृक्षण के काजें महाभागान शब्द को प्रयोग किया गया है। देखो इन महाभागान वृक्षण को देखो, जो केवल दूसरे के ताई जीवे हैं और जो स्वयं हवा वर्षा एवं धूप को सहते हुए हम लोगों की रक्षा करे हैं। अहो, समस्त प्राणी को जीवन प्रदान करवे बारे इन वृक्षण को जन्म कितनो उत्तम है। ये कितेक धन्य हैं जिनके पास सो को याचक विमुख है के ना जाए। जो वृक्ष पत्र पुष्प फल छाया बलकल मूल लकड़ी गंध गौंद भस्म अस्थि और अपनी टहनी सो सबकी कामना को पूरी करे हैं। वास्तव में वृक्ष कल्पतरु के समान हुए हैं, तभी तो सूरज की भीषण गर्मी को स्वयं सहके अपने आसपास के वातावरण को ठंडो और शांत रखे हैं। वृक्षण की पृथ्वी के नीचे फैली हुई जड़ भूमि के कटाव को नष्ट होवे ते रोके हैं। वृक्ष पानी को रोकने में समर्थ हैं, जाते वे स्वयं हु जल प्राप्त करे हैं और नदी सरोवरन को सूखवे ते बचावे हैं। पर्यावरण संरक्षण में तो इन वृक्षण को बड़ो ही महत्व है। एक समय हो जब ब्रज प्रदेश वनन सो घरो भयो हो। यहाँ के आंतरिक भाग में अनेक वन और उपवन है। 16वीं सदी में श्री नारायण भट्ट ने अपनी पुस्तक ब्रज भक्ति विलास में 133 वनन को विस्तार से वर्णन किया है। इनमें तो 91 वन यमुना के दाई ओर और 42 बाके बाई ओर को स्थित है। इनमें 12 वन और 12 उपवन और

बारह प्रतिवन और बारह ही अधिवन हते। जा प्रकार प्राचीन काल से ही वृक्षण ने ब्रजभूमि में अपनो साम्राज्य स्थापित कर रखो है, यही कारण यहाँ को प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत मोहक रम्य और अलौकिक हु और उपयोगी हुए है। वायु को शुद्ध करनो, तापक्रम को नियमित रखनो और पथिकन को छाया प्रदान करनो इन वृक्षण को पुनीत कार्य है। यही कारण सो ब्रज के प्रमुख अनुष्ठान में एवं पूजा अर्चना में घरन में सजावे को वृक्षण की महत्ता परिलक्षित हुए है। असल में मानव को संपूर्ण जीवन ही वृक्षण पर आधारित है। ब्रज की लोक संस्कृति जिन विशेष वृक्षण के ऊपर जी जान सो निछावर है और जिनकी लोक जीवन में पूजा अर्चनाओं करी जाए है, साथ ही जो वृक्ष ब्रजवासिन को औषध और हरितमा प्रदान करे हैं, उनमें से कछु महत्वशाली वृक्षण की चर्चा हम यहाँ करें हैं। कदम्ब है, ये कदम्ब ब्रजभूमि को सबसे लोकप्रिय वृक्ष है। मेघन की गर्चना और आषाढ़ मास की पहली फुहार कदम्ब की कलीन को दुलार जाए हैं और वर्षा ऋतु के पगन की आहट पाए के जे एक साथ पुष्पित है के स्वयं को सुगंधित पुष्पन सो सुसज्जित कर लिए है। या कि मादक गंध सुगंध संपूर्ण वातावरण को सुगंध सो भर दे है। भोरा जापे मडनान लगे हैं। सौंदर्य को धनी यह वृक्ष बादरन की गर्जन को सुन के हर्षित है उठे है और लोक कंठ गाय उठे हैं। अजब सुगंध आली उड़ रही झुक रही है कदम्ब की डार। ब्रज में कदम के वृक्ष अधिकांश रूप में जमुना किनारे विद्यमान है। कवि जगत नंद ने अपने प्राचीन चार कदम खंडीन के नाम उनको उल्लेख या प्रकाशों की है। देख सुनहरा पास गिर जल बिहार नंद गांव, कदम्ब खंड ब्रज चार हैं जगत नंद एक ठाव। यानी सुनहरा गांव, गिरिराज के पास जतिपुरा, जल बिहार यानी मानसरोवर और नंद गांव, इनके अतिरिक्त हु कुमुद वन, बहुला वन, पैंठा, श्याम ढाक, पिसाया, दोमिल वन, कोट वन और करहला आदि स्थान में हु कदम खंडीन के दर्शन हुए हैं। ब्रजभूमि में कदम को वृक्ष अति पुनीत लोकप्रिय और प्रमुख वृक्ष है। कृष्ण की नाना प्रकार की लीला भूमि में कदम को वृक्ष सदा सहायक रहे हुए। राधा कृष्ण की अधिकांश लीला कदम की गहन छाया और सुगंधित वातावरण के मध्य ही रची गई हैं। श्री कृष्ण की अनेक लीलान में बंसी वादन लीला, चीरहरण लीला, गौचारण लीला, नागनाथन लीला, रासलीला और हिंडोरेन में झूलवे की लीलान में कदम वृक्ष सहायक और साक्ष रहे हुए। बांसुरी की धुन सुनके कदम और अन्य तरवर पुलकित है जाए हैं। चीरहरण की लीला में कदम की महत्वपूर्ण भूमिका है। रस की खान कविवर रस खान तो ब्रज लोक जीवन पे ऐसो मुग्ध भयो के ब्रजभूमि में ही निवास करवे की अभिलाषा कदम्ब की डारन पे ही करवे की चाहना करवे लगे। जो खग हो तो बसेर और करो नित कालन दिकूल कदम्ब की डारन। प्राचीन और अर्वाचीन सिगरे कवि ने या भक्तकालीन में कदम वृक्ष की मादक और सुवासित गंध सो आकर्षित है के बड़ी मुग्धकारी कवितान को सृजन कियो है। ये वही कदम्ब है, कदम को वृक्ष है जहाँ में अनेक ऋतुन को परिवर्तित हो तो देखो है, जाने ब्रजभूमि में इतिहास बनते देखो है, जाने अपने ऊपर गोपीन के चीरहरण को टांग के उनकी अभिलाषान को पूर्ण करो है, जाने ग्वाल वालन की छाक खाए के ताई उनको शीतल सघन छाया प्रदान करी हती, वाई वृक्ष पर चढ़ के नंदनंदन ने काली देह में छलांग लगाई हती और जी काली नाग नाथवे को साक्षी रहो है। सावन के महीना में झूला झूलवे को जे पेड़ साक्षी है, जाखू निहार के लोक कंठ गामन लगे है। झूला पड़ो कदम की डारी झूले कृष्ण मुरारी ना, झूला पड़ो कदम की डारी झूले राधा प्यारी ना। राधा कृष्ण को अनुराग कदम सो है, वे कदम के पुष्पन की माला को हृदय में धारण करे हैं। जा कदम की फूली डार पर बैठ के नंदनल विष्णु को आकर्षित करे वारी भुवन मोहिनी मुरली बजा में है। या कदम के झिंग बसवे बारे ब्रजवासी धन्य हैं, जो जमुना जल शीतल कूल पे केल करे जा कदम की छैया, सुन नित वंशी को शब्द वृंदावन माह सुनावे सदा ही कन्हैया। आज बड़े दुख को विषय है कि जा ब्रज प्रदेश में अनेक कदम खंडी समाप्त हो चुकी हैं और ये एक विचारणीय प्रश्न है। ऐसे ही एक करील को वृक्ष है जो झाड़ी युक्त है, जो ऊसर और कंकरीली भूमि पर ही पैदा है जाए, जहाँ में हरे गहरे रंग की पतली पतली शाखाएँ हों जिनमें पत्ता ना हों, जहाँ में टैटी नामक छोटो सो गोल फल लगे हैं, जहाँ को अचार डारो जाए है जो सूल विनाशक और औषधि को काम करे है। करील को वृक्ष ब्रज भूमि की

0: बदा है कांटन ते युक्त हैते होते हु करील की कुंजन को विशेष आकर्षण है। कबीरस खान तो इन करील की कुंजन पर ऊंचे ऊंचे मैलन को निछावर करते हैं। रस खान कवो इन आँखें सो ब्रज के बन भाग तड़ाग निहारो कोट घूम कल धोत के धाम करील की कुंजन ऊपर बारो। वे श्री कृष्ण को ढूंढत हार गए बिनकू काऊ ने पतो नहीं बतायो। बाद में पता चलो कि वे कुंज कुटी में बैठ के श्री राधा जी के पैरों की चप्पी कर रहे हैं। हेरत हेरत हार पर्यो रस खान बतायो न लोग लुगायन देखो दुरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलूटत राधिका पायन। ताल तमाल बन है जामे तमाल को वृक्ष बहुत ही ऊंचो और सदाबहार वृक्ष है जो वृक्ष की विभूति है। ये वृक्ष 20 से लेके 28 फीट यानी 7 मीटर तक की ऊंचाई तक चलो जाए है। देखने में गहरो हरो और सुंदर लगे है। जमुना को तट जाके लें विशेष प्रसिद्ध है। भारतेंद्र जी ने कहो है कि तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। वैसाख में जामे श्वेत पुष्प आवे है और कलमी नींबू जैसो फलहू जामे लगे है। जा वृक्ष की छाया बड़ी घनी हुए है। कविवर कुम्भनदास ने कहो है कि जमुना के तट फूले तमाल केत की कंद नौतन प्रवाल। रस खान ने हु स्वर में स्वर मिला दिनो कि लहलही लता लपटी तमालन पे कह कही तापे कोकिला की काकलीन की। तमाल वृक्ष की श्यामता श्याम जी को पर्याय बन चुको है। कविगणन ने तमाल को श्री कृष्ण को रूप में चित्रण कियो है। अति राजत घनश्याम तमाला कंचन बेल बनी ब्रजवाला। बट को वृक्ष ब्रज संस्कृति को बहुत महत्वशाली वृक्ष है। ये वृक्ष विशाल सदा हरत और घनी छायादार है। या को विशेष फैलाव और वृक्ष में सबसे बड़ा हुए है। श्री कृष्ण ने जहाँ जहाँ लीलाएं करी थी वहाँ वहाँ उनकी स्मृति चिंतन के रूप में बड़े विशाल वृक्ष आज हु विद्यमान हैं। कवि जगत नंद ने 10 प्रसिद्ध बट वृक्षन को उल्लेख किया है। जिन स्थानों पर ये वृक्ष हैं उनके नाम हैं पिपरौली जाब रसौली संकेत वन परासौली भांडीर वन। इनके अतिरिक्त 4 बट वृक्ष और हुए हैं जो अत्यंत प्रसिद्ध हैं जैसे बंसी बट अक्षय बट विशाल बट श्याम बट। ब्रजलोक में ज्येष्ठ मास की अमावस्या को बरगद की पूजा बट सावित्री बट के रूप में करी जाए है जो लोक प्रसिद्ध है। जामे सुहागन वैयर रोरी चामर फल आम अठावरी आदि सो बट की पूजा करे हैं और सत्यवान सावित्री की कहानी को सुने हैं। या प्रकार ब्रजलोक में बट वृक्ष की बड़ी मान्यता है। या को ब्रह्मा जी को स्वरूप मानो जाए है। ब्रज के प्रत्येक गाँव में बट वृक्ष अवश्य हुए हैं। पक्षी वृक्ष आज पीपल हु ब्रज को एक प्रमुख पेड़ है। जी वृक्ष ब्रज प्रदेश को अति विशिष्ट सुप्रसिद्ध अत्यंत पावन है। यहाँ के हर गांव में एक पीपल का पेड़ जरूर पाया जाए है। श्री कृष्ण ने गीता में कहो है कि अश्वत्थ सर्वृक्षाणाम मैं सभी वृक्षों में अश्वत्थ हूँ यानी पीपल को वृक्ष में ही हूँ। यह वृक्ष देव स्वरूप है। जी देवतान के समान मनुष्य को कल्याण करे है। ये वृक्ष दिन रात सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रदान करे है। प्राचीनता में और पूजनीय वृक्ष में पीपल अद्वितीय है। वृक्ष में ब्रज में पीपल की एक दुर्लभ जाति हु प्राप्त हुए है जाकू पारस पीपल कहो जाए है। जी वृक्ष महावन और ध्रुव टीले के पास में बताया जाए है। लोक में पीपल की बड़ी उपयोगिता है। जाकी छाल सो रंग बनाया जाए है। हवन यज्ञ आदि में पीपल की समिधा या लकड़ी काम में लाई जाए है। पीपल को काटनो वर्जित है जाते पाप लगे है ऐसो लोक विश्वास आज हु बलवती है। पीपल के वृक्ष पे मृत आत्मान की शांति है तो जल सो परिपूर्ण घट लटकाया जाए है। शनिवार के दिना शनि ग्रह की शांति के काज है पीपल की पूजा हु करी जाए। बापे तेल पानी तिल फल फूल चढ़ाए जाए हैं। ब्रज में पाए जाए वाले अन्य प्रमुख वृक्षों में आम नीम बेल छोकरा पलास बेर बांस पापड़ी गूलर आदि बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिनते लोक मानस काऊ न काऊ रूप में बनो अवश्य है। ये सभी वृक्ष लोक जीवन में लकड़ी ईंधन भवन निर्माण के अनेक कामन में आमे हैं। इनके फलहू स्वादिष्ट और मधुर तथा पुष्टवर्धक हुए हैं।
1: तो साथियों अभी जो है आप सुन रहे थे जे वार्ता और या को विषय है तो ब्रज के वृक्ष और लोक संस्कृति में विनको महत्व बताया रहते या विषय पे हमें उमाशंकर। तो बहुत ही बढ़िया देखो जानकारी हती कि रहती और अब अपने कार्यक्रम में आप

तो देखो अभी जो है हम सब जो लोकगीत सुन रहे थे बहुत ही बढ़िया है, तो कृष्ण कुमारी माथुर की आवाज़ में। और अब आओ सुने जे अगलो लोकगीत हकीम सिंह की आवाज़ में।

तो अभी जो है ना, कितना बढ़िया भजन हो तो हकीम सिंह की आवाज़ में इस लोग गीत को जो हम सबन ने सुनो हो। तो आज के ब्रजमादरी कार्यक्रम यही विश्राम ले है। आप सबन को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी, और अब समय हो चुका है अगले प्रसारण का, तो बस सबसे कुछ ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल

0: रोजगारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
3: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभिडांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी की गई है।
4: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेके पड़ाव था, जिसमें संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की, उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभिडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
3: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीषा।
0: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
3: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल

0: के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग। शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति। देश बंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Samvidhan Hatya Divas being observed to pay homage to those who suffer during emergency. India-China border trade via Lipulekh Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. U.S. federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed 4 major infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Prime Minister Modi also assessed progress under the TB Mukt Bharat Abhiyan. More from our correspondent.
3: During the meeting, Prime Minister Narendra Modi reviewed 4 major infrastructure aimed at enhancing connectivity, industrial development and public welfare. He directed ministries and state governments to resolve pending issues on a mission mode and ensure timely completion. He also emphasized the effective use of the PM Gati Shakti National Master Plan for better planning and monitoring of projects. Mr. Modi also reviewed the progress of TB Mukt Bharat Abhiyan and suggested leveraging artificial intelligence and involving NCC cadets and My Bharat volunteers. measures in awareness and community mobilization efforts. Reviewing grievances related to cyber crime and digital arrest, frauds,

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: हमारी जनगणना हमारा विकास।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
9: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
8: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
9: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
8: आज अभी नशा छोड़ने का

0: संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिले नादां का ये गीत। आवाजें थीं किशोर कुमार लता मंगेशकर की, शब्द रचना शायर जनाब नक्श लॉयलपुरी की और धुन संगीत का खयाम की। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म गजल के इस गीत को। लिखा था शायर जनाब साहिर लुधियानवी ने और संगीत मदन मोहन का था। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं गीतांजलि कार्यक्रम यानी कि फिल्म संगीत का, और इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं जिंदगी के अनेकों रंग से भरे हुए सराबोर, कुछ खट्टे कुछ मीठे, कुछ गुनगुनाती, कुछ गम तो कुछ हौसला। इस तरह से जो रंग जिंदगी के होते हैं उनसे सराबोर एक कार्यक्रम आपके लिए। और अब कार्यक्रम का आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

गंगा की लहरें। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था चित्रगुप्त ने।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना फिल्म गंगा की इस सौगंध फिल्म का गीत। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: चाचा सिर्फ।
1: आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म दुश्मन का ये गीत, लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और आप सुनते हैं ये अगला गीत।

0: आप सुन रहे थे अभी जूली फिल्म के गीत को, और आज का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: साथियों, प्रस्तुत है आज कार्यक्रम कलामे शायर। इस कार्यक्रम में आज आइए सुनते हैं डॉक्टर सईद आजमी का कलाम।
5: गजल से पहले कुछ कतात मुलाहजा फरमाएं। नफरतों का ना दरिया बहाओ, रहबरो होश में अब तो आओ। देश पर मुश्किलें आ पड़ी हैं, देशवासी हैं सबको मिलाओ। नफरतों का न दरिया बहाओ, रहबरो होश में अब तो आओ। देश पर मुश्किलें आ पड़ी हैं, देशवासी हैं सबको मिलाओ। और दूसरा कथा देखें। जागिए ख्वाबे गफलत से अहले वतन, जागिए ख्वाबे गफलत से अहले वतन, वरना पछताओगे मेरे अहले वतन, वरना पछताओगे मेरे अहले वतन। नफ़रतो बुग्ज के तुम शजर काट दो, नफ़रतो बुग्ज के तुम शजर काट दो। होश से काम लो मेरे अहले वतन, होश से काम

आम लो मेरे अहले वतन। और तीसरा कथा देखें कि धर्म निरपेक्ष है आईन अपना, धर्म निरपेक्ष है आमीन अपना, तो फिर शोशे नए क्यों छोड़ते हो। वफा में अपनी है तारीख शाहिद, हमें जयचंद से क्यों जोड़ते हो। धर्म निरपेक्ष है आईन अपना, तो फिर शोशे नए क्यों छोड़ते हो। वफा में अपनी है तारीख अपनी, हमें जयचंद से क्यों जोड़ते हो। चौथा कथा देखेंगे, सियासत इतनी गंदी हो गई है, सियासतदान भी शर्माने लगे हैं। सियासत इतनी गंदी हो गई है, सियासतदान भी शर्माने लगे हैं। हया गैरत नहीं अब नाम को भी, हया गैरत नहीं अब नाम को भी, खजल चेहरे भी मुरझाने लगे हैं, खजल चेहरे भी मुरझाने लगे हैं। और पांचवा कथा देखें, कौमों मिल्लत में यहाँ नाम वही पाता है, कौमों मिल्लत में यहाँ नाम वही पाता है, दीन और दुनिया में आराम वही पाता है। खुद सताइश की तमन्ना नहीं होती जिसमें, खुद सताइश की तमन्ना नहीं होती जिसमें, खिदमते खल्क का इनाम वही पाता है, खिदमते खल्क का इनाम वही पाता है। और देखिए एक किताब लादा फरमाए कि बागबानों की निगहबानी वह खुशकामी से, बागबानों की निगहबानी वह खुशकामी से, गुल महक उठते हैं आबाद चमन होता है। बागबानों की निगहबानी और खुशकामी से, गुल महक उठते हैं आबाद चमन होता है। रहबरे कौम से हल्की सी भी लग्जिश हो अगर, रहबरे कौम से हल्की सी भी लग्जिश हो अगर, आग लग जाती है बर्बाद चमन होता है। रहबरे कौम से हल्की सी भी लग्जिश हो अगर, आग लग जाती है बर्बाद चमन होता है। और एक कथा और देखें कि न पूछो दोस्तों मुझसे मेरे हालाते नागुफ्ता, न पूछो दोस्तों मुझसे मेरे हालाते नागुफ्ता, सरापा दर्द हूँ रंजो अलम मेरी कहानी है, सरापा दर्द हूँ रंजो अलम मेरी कहानी है। ज़माना मुझसे बरहम है मैं मखूरे ज़माना हूँ, ज़माना मुझसे बरहम है मैं मखूरे ज़माना हूँ। सितम दीदा बड़ी गमगीन अपनी ज़िंदगानी है, बड़ी गमगीन अपनी ज़िंदगानी। और आखिरी कथा देखें, ये हो के हम सब एक दिवाली मनाएं दोस्तों, हो के हम सब एक दिवाली मनाएं दोस्तों, प्यारो उल्फत से रहें ईदें मनाएं दोस्तों, प्यारो उल्फत से रहें ईदें मनाएं दोस्तों। नफ़रतों को दफन कर दें और फिर सीने मिलें, नफ़रतों को दफन कर दें और फिर सीने मिलें। दिल को करके साफ हम होली जलाएं दोस्तों, दिल को करके साफ हम होली जलाएं दोस्तों। और गज़ल का मतला मुलाहजा फरमाए, जानिबे बामो दर देखते रह गए, जानिबे बामो दर देखते रह गए, वो ना आए मगर देखते रह गए, जानिबे बामो दर देखते रह गए, वो ना आए मगर देखते रह गए। और शेर देखें कि मुझको कोशिश ने मंजिल पे पहुंचा दिया, मुझको कोशिश ने मंजिल पे पहुंचा दिया, और रफीके सफ़र देखते रह गए, और रफीके सफ़र देखते रह गए। और शेर देखें कि उनके आने की खुशियाँ रहीं रात भर, उनके आने की खुशियाँ रहीं रात भर, हो गई जब सहर देखते रह गए, हो गई जब सहर देखते रह गए। और शेर देखें कि बारहा उठ के रिंदों ने पी और हम, बारहा उठ के रिंदों ने पी और हम, अपना बारे दिगर देखते रह गए, अपना बारे दिगर देखते रह गए। और इस गज़ल का मकता मुलाहजा फरमाएं, उन पे थी हर नज़र ऐ सईद आज़मी, उन पे थी हर नज़र ऐ सईद आज़मी, बज़्म में तुम किधर देखते रह गए, बज़्म में तुम किधर देखते रह गए, जानिबे बामो दर देखते रह गए, वो ना आए मगर देखते रह गए। एक गज़ल और मुलाहजा फरमाएं, मतला अर्ज़ है कि क्यों न होता बज़्म में एहसास-ए-बेगाना मुझे। गौर फरमाएं थोड़ा सा, क्यों न होता

0: अपने माबूल पे है हमको यकीने कामिल, हश्र के रोज यकीनन ही रियायत होगी, हश्र के रोज यकीनन ही रियायत होगी, हम शजर बन के ज़मीनों से लिपट जाएंगे। ये शेर ख़ास तौर से मुलाहजा फरमाएं कि हम शजर बन के ज़मीनों से लिपट जाएंगे, दफन हो जाएंगे अब और न हिजरत होगी, दफन हो जाएंगे अब और न हिजरत होगी, तुमको ताकत पे गुरूर और भरोसा है बहुत, तुमको ताकत पे गुरूर और भरोसा है बहुत, ठीक है कर लो ये हिटलर की रवायत होगी, ठीक है कर लो ये हिटलर की रवायत होगी। और शेर देखें, काम अच्छा करो अच्छाई की तबलीग करो, काम अच्छा करो अच्छाई की तबलीग करो, क्योंकि ये काम ही असलाफ की सुन्नत होगी, क्योंकि ये काम ही असलाफ की सुन्नत होगी। और इस गज़ल का आखिरी शेर है, एहतजाज अपना तो हद दर्जा शरीफाना है, एहतजाज अपना तो हद दर्जा शरीफाना है, झूठे इल्ज़ाम लगाओ ना हिमाकत होगी, झूठे इल्ज़ाम लगाओ ना हिमाकत होगी। और इस गज़ल का मकता देखें, ऐ सईद आज़मी घबरा नहीं जाना शर से, ऐ सईद आज़मी घबरा नहीं जाना शर से, काम हिम्मत से किए जाओ सआदत होगी, काम हिम्मत से किए जाओ सआदत होगी, मिलके सब काम करोगे तो रफाकत होगी, अपनी मर्जी जो चलाओगे अदावत होगी।
1: तो अभी आप सुन रहे थे कलाम शायर में, आज कलाम और शायर थे डॉक्टर सईद आज़मी। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 9:15 होने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: है जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बस्ती और बदायूं जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित सिंह का।
2: प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल पूर्ण होने पर बस्ती विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बस्ती में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सर्किट हाउस में सुपोषित कार्यक्रम के अंतर्गत पहुंची महिलाओं को किट वितरण किया। साथ ही साथ जिले में चल रहे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष से पूर्ण होने पर उनके द्वारा दिए गए अनेक योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 12 वर्षों का स्वर्णिम काल पूरा किया है। उनके नेतृत्व में भारत देश की तस्वीर बदली है और तकदीर भी बदली है और एक नई सोच के साथ भारत ने एक नई दिशा की ओर बढ़ने का संकल्प लिया है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी और उन्होंने अपनी सरकार का लक्ष्य गरीब कल्याण योजनाओं के साथ शुरू किया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि
3: 4,128 करोड़ रुपए की हमारी 383 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी और इन परियोजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम चलाए गए हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद उनको रिवाइवल के प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किए जिसमें जो पहले 2 शुगर मिल रिवाइव किए गए।
2: बस्ती जिले में खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती में प्राकृतिक खेती विषयक पर एक दिवसीय कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश एवं देश के विभिन्न किसान कृषि वैज्ञानिक अधिकारियों तथा बड़ी संख्या में किसानों ने सहभाग कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने किसानों से आह्वान किया कि वे कृषि विज्ञान के तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त कर प्राकृतिक खेती को अपनाएं तथा कृषि में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग को न्यूनतम प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक है बल्कि किसानों की उत्पादन लागत को कम कर उनकी आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बस्ती जिले में मुहर्रम के दौरान निगरानी के लिए 1400 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इस दौरान निकलने वाले जुलूस और मजलिसों के मद्देनजर

0: पर्याप्त पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस क्रम में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मुहर्रम को लेकर अधिकारियों ने पीस कमेटी के साथ बैठक की। बैठक में मुहर्रम को लेकर थाना क्षेत्र वासियों से सुझाव मांगा गया। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से मानक के अनुरूप संपन्न कराने की अपील किया। जिलाधिकारी कृतिका जोशा ने बताया कि
1: जनपद में लगभग 1952 ताजिए रखे जाएंगे, जिनकी निगरानी के लिए 1400 के ऊपर के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जुलूस की जो संख्या है वो 127 है। इसको लेकर के पुलिस की सभी ड्यूटीज लग गई है, एज वेल एज प्रशासन की ओर से भी सभी मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लग गई है।
0: बस्ती में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर असम प्रभारी और पूर्व लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी ने बस्ती स्टेडियम में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में भाग लेते हुए योगाभ्यास किया और लोगों को नियमित योग अपनाने का संदेश दिया। योग दिवस इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर स्वस्थ जीवन के लिए योग के महत्व को समझा और नियमित योग करने का संकल्प लिया। लखनऊ में कोचिंग संस्थान की घटना के बाद बस्ती जिले के सभी कोचिंग संस्थानों में मानक की चेकिंग की जा रही है। फायर सेफ्टी समेत एंट्री और एग्जिटिंग की चेकिंग की जा रही है। जिले में भी पुलिस विभाग के साथ फायर टीम और DIOs लगातार चेकिंग कर रहे हैं। टीम ने सबसे पहले कटरा क्षेत्र के लक्ष्य एकेडमी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लगे फायर सेफ्टी एक्सपायर मिले, तत्काल ही संस्थान को फायर सेफ्टी को लेकर चेतावनी जारी की गई। मानक विहीन कोचिंग संस्थान चलाने पर अधिकारियों ने कड़ी आपत्ति जताई, साथ ही मानकों को पूरा करने के लिए भी निर्देश दिए। क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने एक कोचिंग संस्थान के चालक को निर्देश दिया कि वहीं इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी ने बताया कि शासन और उच्चाधिकारियों के निर्देश पर संयुक्त टीम द्वारा कोचिंग और लाइब्रेरी सेंटरों की चेकिंग कराई जा रही है।
2: बस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बदायूं जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद नईम का।
3: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों पर आधारित बदायूं के डैड परिसर में आयोजित 4 दिवसीय प्रदर्शन के अंतिम दिन बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। जनप्रतिनिधियों, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों आदि ने सेल्फी प्वाइंट पर तस्वीरें लेकर पलों को यादगार बनाया। बदायूं जनपद के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वन एवं पर्यावरण डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने बीते दिनों प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में पहले दिन से ही आगंतुकों में सरकार की योजनाएं जानने के लिए भारी उत्साह देखा गया। आगंतुकों ने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव से पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं में स्टार्टअप, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और निःशुल्क खाद्यान्न वितरण जैसी योजनाएं शामिल रहीं। प्रदर्शनी का आयोजन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। बदायूं स्थित कृष्णा लॉन में बदायूं से लखनऊ के लिए नई ट्रेन संचालित होने के संबंध में बीते दिनों आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि ये बदायूं जनपद की जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि बदायूं से लखनऊ के लिए रेल सेवा संचालित किए जाने की मांग को लेकर वो लंबे समय से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के समक्ष लगातार प्रयासरत थे। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने बताया,
4: आज मुझे खुशी है कि बदायूं से सीधी ट्रेन लखनऊ के लिए जनता की बहुत पुरानी डिमांड थी चलने जा रही है, इसकी स्वीकृति मिल गई और बहुत जल्दी तिथि तय करके बदायूं से हरी झंडी दिखाई जाएगी। यहां से 5 मिनट 25 मिनट पर ट्रेन यहां से चलेगी और शाम को वापस भी आ जाएगी।
3: बदायूं की जिलाधिकारी अवनीश राय ने बीते दिनों कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन की सुगमता से सुलभ कराने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि 1 से 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से माइक्रो प्लान बनाकर स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने 28 जून से प्रारंभ हो रहे पल्स पोलियो अभियान के कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान अंतर्गत ब्लॉक स्तर नोडल अध्यापकों का संवेदीकरण, स्थानीय निकायों पर संवेदीकरण, ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी की संवेदीकरण आदि कार्य समय पर पूर्ण करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि संबंधित सभी बैठकर समय से पूर्ण कराकर अभियान को सफल बनाया जाए। उन्होंने बताया कि 11 जुलाई से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने 28 जून 2026 से पल्स पोलियो दिवस पर सभी प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को पल्स पोलियो दिवस के दिन बूथ का उद्घाटन संबंधित ग्राम प्रधान से करवाने को निर्देशित किया। बदायूं बीते दिन राष्ट्रीय नीति 2020 के अंतर्गत सतत शिक्षण पद्धति एवं कार्यप्रणाली विषय पर एक फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य संसाधन व्यक्तियों के रूप में प्रोफेसर साजिद जमाल और डॉक्टर अहमद मुज्तबा सिद्दीकी, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अध्यापन कार्य से जुड़े हैं, ने शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों, छात्र केंद्रित शिक्षा, नवाचार

0: और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। योगा फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर आधारित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि व जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि योग हमें फिट रखता है और जो फिट है वही हिट है। इस अवसर पर सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, MLC प्रतिनिधि शारदेन्दु पाठक, नोडल अधिकारी व राज्य आयुक्त GST नितिन बंसल, जिलाधिकारी अवनीश राय सहित अन्य अधिकारी व आमजन आदि मौजूद रहे। योग दिवस पर योग प्रशिक्षकों ने सभी को योग करवाया। जनपद के प्रभारी मंत्री व प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वन एवं पर्यावरण डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में कोरोना वैक्सीन से देश के लोगों की हिफाजत की।
1: हम आज इस योग

0: में कोरोना वैक्सीन से देश के लोगों की हिफाजत की।
1: हम आज इस योग दिवस पर अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के दीर्घायु की कामना करते हैं। ये योगा को इतना ज्यादा पॉपुलर हिंदुस्तान में करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया को योग का लाभ बताया।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। अभी आप सुन
3: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबो हवा के अंतर्गत, जानकारी मोनिका रंगा से। विषय है जल ही जीवन है।
4: जल ही जीवन है, जल ही अमृत है। इसका आशय यही है कि इस सृष्टि में जल ही सभी भौतिक पदार्थों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जल के अभाव में न तो पेड़ पौधे, वनस्पति एवं खेती हरियाली आदि फैल सकती है और न प्राणी जगत का जीवन सुरक्षित रह सकता है। पंच भौतिक पदार्थों में पृथ्वी के बाद जल तत्व का महत्व इसी कारण दूसरे स्थान पर माना गया है। मंगल आदि अन्य ग्रहों में जल के अभाव से ही जीवन एवं वनस्पतियों का विकास नहीं हो पाया है, ऐसा नवीनतम खोजों से स्पष्ट हुआ है। धरती पर ऐसे कई भूभाग हैं जहां पर जलाभाव से रेगिस्तान का प्रसार है तथा प्राणियों को कष्टमय जीवन यापन करना पड़ता है। हर धर्म, मजहब, संप्रदाय हमें पानी का सम्मान करने की सीख देता है, पानी की बर्बादी न करने की ताहिद करता है। इस्लाम के पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ में जगह जगह पानी के महत्व के बारे में कहा गया है। ऐसी 60 आयतें हैं जिनमें पानी के महत्व को समझाया गया है। जल के लिए दिलकश अंदाज में कहा गया है कि अल्लाह ने पानी बरसाया है, उसने तुम्हारी रोजी के लिए फल फूल अनाज पैदा किए हैं। सभी जीवित प्राणियों के जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ और सुरक्षित जल मिलना जरूरी है, या दूसरे शब्दों में कहें तो उनके लिए जल सुरक्षा आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून इसे मानव अधिकार की संज्ञा देता है। पानी प्रकृति द्वारा दिया गया उपहार है, लेकिन पानी देने के लिए प्रकृति की भी अपनी सीमाएं हैं। कई स्थानों पर पीने के पानी की उपलब्धता खतरनाक रूप से कम होती जा रही है। जहां पर जमीन को ढक दिया गया है या फिर पेड़ों को काट दिया गया है, ऐसे स्थानों पर जहां पहले वर्षा का जल जमीन द्वारा सोख लिया जाता था और भूमिगत जल भंडार में मिल जाता था, अब वह समुद्र में जाकर खारे पानी का हिस्सा बन जाता है। वर्षा का जो पानी बचा रहता है वह इतना अधिक प्रदूषित हो जाता है कि मानव के उपयोग के लायक नहीं रह पाता। कुदरत का बेशकीमती उपहार पानी अब इंसान को आसानी से मुहैया नहीं हो पा रहा। इंसानी लापरवाही और कमजोर प्रबंधन के चलते न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कई मुल्क पीने के पानी की किल्लत के लिए परेशान हो रहे हैं। पानी की कमी इस कदर भयावह होती जा रही है कि कुछ सालों में पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि धरती पर 70% हिस्से पर पानी होने की बावजूद दुनिया के अधिकांश मुल्क पेयजल की कमी का सामना कर रहे हैं। पानी के इस भयावह संकट के जिम्मेदार हम ही हैं। हमारी लापरवाही और उपेक्षा के चलते ही जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। संसार के कई हिस्सों में लोगों को सेहतमंद रहने के लिए जितना पानी जरूरी है वे उन्हें मिल नहीं पाता। बहुत बार लोगों को पानी के लिए मीलों चलना पड़ता है और तब भी उन्हें जो पानी मिलता है वह पीने के लिए सुरक्षित नहीं होता। यदि लोगों को उनकी रोजमर्रा जरूरतों के लिए पानी नहीं मिलता तो उनका जीवन कठिन हो जाता है और उन्हें तरह तरह की खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और लोगों को जो पानी मिलता है वो अगर साफ नहीं है, उसमें कीड़े मकोड़े या फिर खतरनाक रासायनिक तत्व मिले हुए हैं, तो ये भी रोगों को बढ़ावा दे सकते हैं। यदि समुदाय के पास ऐसे पानी की उपलब्धता है जिसे सभी आसानी से पा सकते हैं और साथ ही सुरक्षित भी हो, तो समुदाय के हर एक सदस्य का स्वास्थ्य, उनकी सेहत जरूर ही अच्छी होगी। कुछ स्थानों पर बड़ी औद्योगिक इकाइयां भूगर्भीय जल का अनुचित विदोहन कर रही है। खनिज संपदा यथा संगमरमर, ग्रेनाइट, पत्थर, चूना पत्थर आदि के विदोहन से भी धरती का जल स्तर गिरता जा रहा है। दूसरी ओर वर्षा काल में सारा पानी बाढ़ के रूप में बह जाता है। शहरों में कंक्रीट, डामर आदि के निर्माण कार्यों से धरती के अंदर वर्षा का पानी नहीं जा पाता। इस कारण पाताल तोड़ कुएं भी सूख गए हैं। इस तरह बढ़ते हुए जल संकट के निवारण के हेतु ये उपाय किए जा सकते हैं। भूगर्भ के जल का असीमित विदोहन रोका जाए, खनिज संपदा के विदोहन को नियंत्रित किया जाए, शहरों में वर्षा के जल को धरती के गर्भ में डालने की व्यवस्था की जाए, बांधों का निर्माण किया जाए और कुओं को अधिक गहरा चौड़ा किया जाए। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, अर्थात पानी के बिना

0: आप सुन रहे थे अबी कार्यक्रम आओ हवा के अंतर्गत। ये जानकारी मोनिका रंगा से, विषय था जल ही जीवन है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। साथियों, कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। आज दिन में आप सुनेंगे 12 बजे से सिम्स हेलो डॉक्टर, ये प्रायोजित कार्यक्रम। आज का विषय रहेगा कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण। कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर SK गुप्ता, जो कि वरिष्ठ न्यूरोसर्जन है, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। शामिल होने के लिए हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर कार्यक्रम में कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता है वो स्टडी कोड अवश्य लगाएं 0565। कार्यक्रम का विषय कृपया ध्यान रखें, कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण। आप भी अगर किसी ऐसी समस्या से जैसे रीढ़ की हड्डी है उसमें दर्द है, कोल्हे की और जोड़ में नस का दबा होना है, सियाटिका है, माइग्रेन है, सर्वाइकल दर्द आदि के समाधान के लिए तो सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर SK गुप्ता से। समय ध्यान रखिए, आज दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।

0: प्रस्तुत है ये विशेष वार्ता। विषय है सरकार के 12 साल और आम आदमी के जीवन में बदलाव, और इस विषय से संबंधित ये जानकारी दे रहे हैं विजय कुमार आर्य।
1: हम बात करने बैठे हैं, बीते 12 साल में हमारी सरकार ने आम आदमी के जीवन में बदलाव लाने के लिए क्या क्या योजनाएं लागू की और उनके क्या क्या प्रभाव हमारे देशवासियों पर पड़े। 2014 के बाद हम 2026 में इस सरकार के 12 साल निकलने के बाद जब एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें सच में मालूम पड़ता है कि कितना बदलाव देश में आया है और ख़ास तौर से आम आदमी को क्या राहत मिल पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मई 2014 में केंद्र सरकार के मुखिया के रूप में शपथ ली थी तब भारतीय राजनीति एक बड़े बदलाव के दौर में प्रवेश कर रही थी। अब इस सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं और इन 12 सालों में सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को देश पर लागू कर आम आदमी की तस्वीर बदलने का काम किया है। इन योजनाओं को सबसे बड़ी पहचान इस प्रकार से माना जाता है कि इससे आम लोगों की जिंदगी पर कितना असर पड़ा है। यूं तो सरकार ने इसके लिए 200 से अधिक ऐसी योजनाएं लागू की हैं जो आम आदमी, गरीब आदमी, जन सामान्य के लिए लाभदायक सिद्ध हुई हैं। लेकिन अगर उन सब की हम बात करेंगे तो बहुत लंबा समय बीत जाएगा, इसलिए हम कुछ चुनी हुई योजनाओं के बारे में आज आपके सामने बात करते हैं और उन्होंने किस तरीके से लाभ पहुँचाया इस पर हम विचार रखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सरकार ने जनधन योजना के माध्यम से बैंकिंग को गांव-गांव तक पहुंचा दिया। आम आदमी

जो बैंकिंग के बारे में कतई नहीं जानता था, जिसका डाकखाने में भी एक खाता नहीं होता था, वो बैंकों तक पहुंचने लगे और खाते खुलवाने लगे। इससे सबसे बड़ी बात फायदे की ये हुई कि सरकार की योजनाओं में जो वित्तीय लाभ उन्हें दिए जाते थे, वो सीधे तौर पर जो सरकार देना चाहती थी वो नहीं पहुंच पाते थे। कहीं ना कहीं बीच में कुछ ऐसी रुकावटें होती थीं या कुछ ऐसे गड्ढे होते थे जिसमें उनको पूरा पैसा नहीं मिल पाता था। इसलिए सरकार ने जीरो बैलेंस वाले बैंक खाते खुलवाना शुरू किए और इसका फायदा ये हुआ कि सरकारी योजनाओं का पैसा लोगों के खातों में सीधे पहुंचने लगा। सबसे बड़ी बात, कोरोना काल में जब महिलाओं और गरीब परिवारों तक आर्थिक पहुंचाने में इस योजना ने बड़ी भूमिका निभाई, तब लोगों को इसका महत्व मालूम पड़ा। मथुरा में ही 10,35,836 गरीबों के जीरो बैलेंस वाले खाते खोले गए। इनमें से 8,39,951 अटल पेंशन योजना में शामिल किए गए और इस योजना के सहारे से उनको 60 वर्ष की आयु पूरे करने के बाद मासिक किस्त के रूप में पेंशन भी मिलेगी। दूसरी एक बड़ी योजना हम देखते हैं, उज्ज्वला योजना, जिसने गरीबी के निचले स्तर में रहने वाली जो महिलाएं थीं उनके जीवन को धुएं से बाहर निकाला। वो एक घुटन भरी जिंदगी जीती थीं, जब वो जलावन के लिए जगह जगह गांव में देहात में जंगल में जाती थीं, लकड़ियां बीन कर लाती थीं, उपले जलाया करती थीं, गोबर के कंडे बनाया करती थीं, उपले बनाया करती थीं और उन्हें जलाकर अपनी घर की रोजी रोटी का इंतजाम करती थीं। ऐसी महिलाओं को, ऐसे परिवारों को सरकार ने मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए। इससे दूसरा फायदा ये हुआ, उनको आसानी होने के साथ साथ महिलाओं की सेहत में सुधार होने लगा। धुएं की वजह से महिलाओं और बच्चों के साथ कई बीमारियां जहां जुड़ जाती थीं, वो उनसे बचाव होने लगी। घरों में स्वच्छता भी बढ़ी और ये योजना जो है महिला सशक्तिकरण के लिए एक मिसाल बन गई। इस योजना में देश की 10,33,00,000 परिवारों को निःशुल्क घरेलू गैस कनेक्शन दिए गए। उत्तर प्रदेश में देखें तो 1,86,00,000 परिवार लाभान्वित हुए और मथुरा जनपद में 2,13,380 परिवारों को मुफ्त घरेलू गैस कनेक्शन मिले। इसके बाद सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को आम आदमी तक मुहैया कराने के लिए आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से ऐसी योजना शुरू करी जो सारी दुनिया की सब हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स में सबसे बड़ी योजना है और इससे गरीब परिवारों को सालाना 5,00,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता इलाज के लिए मिलना शुरू हुई। जबकि पहले स्थिति यह थी, संकट आ जाने पर, कोई बड़ी बीमारी हो जाने पर, आकस्मिक खर्च इलाज का आ जाने पर, दुर्घटना की वजह, कई समस्याओं से इलाज कराना भारी पड़ जाता था, परिवार कर्ज में डूब जाता था, खेत खलिहान तक बिक जाता था। तब आम आदमी के पास उस समय खर्च करने के लिए एक पैसा नहीं होता था, लेकिन इस योजना से कैंसर, दिल की बीमारियां और बड़े बड़े मामलों में ऑपरेशन कराने के बारे में तो वो सोच भी नहीं पाते थे, लेकिन इस समस्या से आयुष्मान भारत में शामिल होने के बाद उन गरीबों के लिए बड़ी राहत मिली। इस योजना से देश में 45 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 1,31,00,000 परिवारों के 5,59,00,000 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। मथुरा में भी 9,63,858 व्यक्तियों को गोल्डन कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिनके मार्फत वे सरकार के पैनल में शामिल किसी भी अस्पताल से अपनी समस्या का निदान कराने के लिए इलाज करा सकते हैं, ऑपरेशन करा सकते हैं। इसके अलावा देश में एक बड़ी समस्या थी, घरों में शौचालय नहीं थे, शहरी इलाकों में भी बड़ी हालत खराब थी और ग्रामीण में तो एक तरीके से शौचालय जाने की स्थिति ही नहीं थी। लोग खेतों में, खलियानों में, जंगलों में जाया करते थे, जिससे स्वास्थ्य संबंधी तो समस्याएं होती ही थी, सुरक्षा और सम्मान के प्रति भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता था। तो स्वच्छ भारत मिशन चलाकर सरकार ने एक सफाई अभियान ही नहीं चलाया बल्कि एक सामाजिक बदलाव का आंदोलन खड़ा कर दिया। देश में बड़ी संख्या में, यानी 12 करोड़ से भी अधिक, और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 3,31,00,000 परिवारों में शौचालयों का निर्माण कराया गया। हमारे जनपद में ही 229 करोड़ की धनराशि खर्च करके 1,91,327 शौचालयों का निर्माण कराया गया। इस योजना में किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की।
प्राकृतिक

आपदाओं में किसानों का नुकसान होता आया है, उनके जीवन भर की पूंजी बर्बाद होती रही है, उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिरता रहा है, कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, तो कभी और तरीके से उनको फसल का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन सरकार ने फसल बीमा योजना चालू करके देश के 78 करोड़ बीमित किसानों को 1,83,000 करोड़ रुपए का भुगतान दिया है उनके नुकसान की भरपाई करने के लिए। इनमें से 79,51,000 किसान ऐसे हैं जिन्हें 6,283,000 रुपए उत्तर प्रदेश में ही क्षतिपूर्ति के मिल चुके हैं। इसके अलावा सरकार ने छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोगों को उनके कारोबार में राहत देने के लिए, उनको सबल बनाने के लिए एक ऐसी योजना लागू की जिसे मुद्रा योजना नाम दिया गया। इससे छोटे व्यापारी और युवा बिना गारंटी के 10 लाख रुपया सरकार से कर्ज पा चुके, जिन्हें चाय की दुकान खोलनी है, बूटीक खोलना है, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान करनी है, और तमाम छोटे छोटे व्यवसाय ऐसे जिनके बारे में वो सोच के रह जाते थे और बैंक में गारंटी नहीं दे पाते थे, उन्हें बिना गारंटी के इन पर ऋण मिलने लगा। 10 लाख रुपए तक के कुल 152 लाख करोड़ की धनराशि के ऋण दिए गए हैं देश में, जिसमें से हमारे प्रदेश में 58,111 करोड़ इस योजना में वितरित की गई। तो इस योजना ने हमारे देश के छोटे छोटे व्यापारियों, छोटे मोटे काम करने वाले व्यापारियों और या नया काम, नया रोजगार शुरू करने वाले युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा संबल प्रदान किया। और युवाओं के लिए सरकार ने स्टार्टअप इंडिया के नाम से एक नई योजना भी शुरू करी, जिसमें उद्यमिता विकास करने का काम उनके लिए किया गया। 2016 में लॉन्च हुई ये स्टार्टअप इंडिया योजना देश में उद्यमिता विकास की नई पहचान दे दी। सरकार ने इस योजना में टैक्स छूट दी, आसान रजिस्ट्रेशन दिए और फंडिंग सपोर्ट जैसे कदम उठाए, जिसकी मदद से आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। इस योजना में 50 लाख रुपए तक के ऋण से विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में मदद दी जाती है। उत्तर प्रदेश में 32,936 लाभार्थी 1,105 करोड़ की मार्जिन मनी पाकर 2,63,488 को रोजगार मुहैया करा चुके हैं। आवासीय समस्या दूर करने के लिए सरकार ने गरीबों को पक्का घर मुहैया कराने की एक योजना तैयार की, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से। इस योजना में 5,37,00,000 परिवारों को पक्के आवास बनाकर आवंटित किए गए, जिनमें से 4,12,00,000 ग्रामीण क्षेत्र में तथा 1,25,00,000 निर्माण शहरी क्षेत्र में आवासों के कराए गए और गरीबों को आवंटित किए गए। उत्तर प्रदेश में ही 62,00,000 परिवारों को इस योजना से लाभ मिला, जिनमें मथुरा के 43,873 शहरी और 3,000 से अधिक ग्रामीण आवास पाने वाले लाभार्थी शामिल हैं। किसानों को एक और तरीके से राहत देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई, जो किसानों को सीधे सीधे साल में 3 किस्तों के रूप में 2,000 रुपये करके 6,000 रुपये उनके खाते में देती है। इससे छोटे किसानों को अपनी खेती को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए और चालू खर्चे के लिए बहुत बड़ी आर्थिक मदद मिल जाती है। इस योजना में हमारे जनपद में 3,10,857 किसान लाभान्वित हुए हैं, जिन्हें अब तक कुल 1,48,89,00,000 रुपया मिल चुका है। अब 10वें नंबर पर हम बात करें तो एक प्रधानमंत्री ने एक योजना और चालू की, पीएम स्वनिधि योजना। ये भी छोटे दुकानदारों के लिए बहुत मददगार साबित हुई, खास तौर से कोरोना के बाद जब लोग बेरोजगार हो गए बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में, तब उनको इस योजना ने बहुत राहत दी। और उनमें भी वो छोटे रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार शामिल थे जो रोज की जिंदगी इन अपने धंधों से किसी न किसी प्रकार कमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोरोना ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया। तब सरकार ने इस योजना से उन लोगों को एक बार दोबारा खड़े होने की हिम्मत दी। देश में 70,00,000 से अधिक और उत्तर प्रदेश में 15,31,000 तो मथुरा में 50,290 स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित किया गया। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में केवल 210 रुपये महीने देने पड़ते हैं, जबकि 60 वर्ष की उम्र के बाद 5,000 रुपये तक की पेंशन पा सकने का बहुत बड़ा लाभ उन्हें मिलता है, जो उनकी माली जिंदगी आसान करने में बहुत बड़ा काम करते हैं। और अगर पति पत्नी दोनों इस योजना में शामिल होते हैं तो 10,000

0: रुपया उन्हें मिल जाता है जो कम से कम उनके राशन और छोटे मोटे खर्चों के लिए भरपाई करते हैं। इस योजना में 1,11,062 खाता धारक अब तक शामिल किए जा चुके हैं। हम बात करें तो एक और ऐसी योजना तकरीबन इसी तरीके की सरकार ने इस बीच चलाई है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। यह योजना खाद्य सुरक्षा के मामले में बहुत बड़ा काम करने वाली योजना निकली। इस योजना में देश के 81,35,00,000 से अधिक गरीब लोगों को हर महीने 5 किलोग्राम मुफ्त राशन गेहूं या चावल के रूप में दिया जाता है। यह योजना भी साल 2020 से लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में 3,63,00,000 राशन कार्डों के माध्यम से 15 करोड़ लोगों को इसका सीधा लाभ दिया जा रहा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पिछले एक दशक से ज्यादा लंबे समय में सरकार की इस प्रकार की योजनाओं से देश के करोड़ लोगों को लाभ हुआ है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया है।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे ये विशेष वार्ता सरकार के 12 साल और आम आदमी के जीवन में बदलाव, और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे विजय कुमार आर्य। साथियों, आइए अब सुनते हैं कुछ गैर फिल्मी गजलें। आज कलाकार हैं उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन। सुनते हैं ये पहली रचना इनकी,

कितनी पलकों की नमी मांग के लाई तो होगी, कितनी पलकों की नमी मांग के लाई तो होगी, प्यास तब फूल की शबनम ने बुझाई तो होगी, प्यास फूल की शबनम ने बुझाई होगी। आइए सुनते हैं ये अगली गज़ल।

साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कुछ गैर फिल्मी गज़लों का, और आज कलाकार हैं उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन। सादगी सिंगार हो गई है, सादगी सिंगार हो गई है, आईनों की हार हो गई है। आइए सुनते हैं ये गज़ल।

सादगी सिंगार हो गई, आईनों की हार हो गई। कितनी खूबसूरत ये रचना थी जो अभी आपने सुनी और आवाज़ दी थी उस्ताद मोहम्मद हुसैन और उस्ताद अहमद हुसैन। आज आप इनकी गाई हुई कुछ गज़लों का आनंद ले रहे थे, कुछ गैर फिल्मी गज़ल कार्यक्रम के अंतर्गत। साथियों, आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अभी आपने सुना नाजिया हसन की आवाज़ में कुर्बानी फिल्म के गीत को लिखा था। गीत को इंदीवर ने और संगीत दिया था बिद्दू ने। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ों में फिल्म फूल बने पत्थर के इस गीत को। साथियों, अगला गीत सुनने से पहले कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। आज आप दिन में 12 बजे से सुनेंगे कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर। आज का विषय रहेगा कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण। कार्यक्रम में हमारे साथ विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर एस के गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरोसर्जन, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फ़ोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं और कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के जो श्रोता है वो स्टूडियो कोड अवश्य लगाएं 0565। विषय ध्यान रखें कृपया, कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण। तो समय है ना, आज दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई और अब कार्यक्रम का ये अगला गीत।

साधना सरगम की आवाज़ में आपने सुना भी फिल्म गंगा जमुना सरस्वती के इस गीत को। इंदिवर के लिखे इन बोलों को धुन से संवारा था अनु मलिक ने। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

आप अभी सुन रहे थे उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ में मोहरा फिल्म के गीत को। लिखा था गीतकार आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था वीजू शाह ने। साथियों, अगला गीत सुनने से पहले कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। आज दिन में 12 बजे से आप सुनेंगे सिम्स हेलो डॉक्टर कार्यक्रम। आज विषय रहेगा कार्यक्रम में कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण। कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे हमारे साथ डॉक्टर एस के गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरोसर्जन, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530-135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। विषय ध्यान रखिएगा, कमर एवं रीढ़ की हड्डी।

का दर्द कारण लक्षण और निवारण। मथुरा से बाहर के श्रोता हैं वे स्टडी कोड अवश्य लगाएं 0565। तो आप जैसे कि रीढ़ की हड्डी है उसमें दर्द है, कूल्हे के जोड़ में नस का दबा होना है, सैट का है, माइग्रेन, सर्वाइकल दर्द, इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए, समाधान के लिए पूछिए विशेषज्ञ डॉक्टर एस के गुप्ता से अपने सवाल। तो समय आपको याद है ना, आज दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई और अब कार्यक्रम का ये अगला गीत।

साथियों, अभी आपने सुना इश्क विश्क फिल्म के इस गीत को अलीशा चनोय और कुमार शानू की आवाज़ में। समीर के लिखे इन बोलों को धुन से संवारा था संगीतकार अनु मलिक ने। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म एक दूजे के लिए में इस गीत को। आवाजें थी अनूप जलोटा, लता मंगेशकर की। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत।

अलीशा चिनॉय, विनोद राठौर और साथियों की आवाज़ में आपने सुना फिल्म हलचल के गीत को। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। अगला गीत सुनने से पहले कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। आज सिम्स हेलो डॉक्टर का प्रसारण दिन में 12 बजे होगा। आज का विषय रहेगा कार्यक्रम में कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण। जानकारी देने के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर एस के गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरो सर्जन। आकाश

सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। साथियों, आप कार्यक्रम में शामिल होने के लिए टेलीफोन नंबर 25135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर शामिल हो सकते हैं। विषय ध्यान रखिए, कमर में रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण। जैसे कि रीढ़ की हड्डी में दर्द है, कूल्हे की जोड़ में नस का दबा होना है, सियाटिका है, माइग्रेन है, सर्वाइकल दर्द है, इन सब से निजात पाने के लिए यानी समाधान हेतु आप सवाल पूछिए कार्यक्रम में शामिल होकर डॉक्टर एस के गुप्ता से। और मथुरा से बाहर के श्रोता हैं वो स्टडी कोड अवश्य लगाएं 0565। सूचना समाप्ति। और अब ये अगला गीत।

दिल विल प्यार व्यार, आपने सुना भी इस फिल्म के गीत को अभिजीत और सुनिधि चौहान की आवाज़ में। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: जानम समझा करो, आपने सुना भी इस फिल्म के गीत को, हेमा सरदेसाई।
1: क्या
0: आप सुन रहे थे अभी फिल्म संगीत का कार्यक्रम FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति आज संजय सारस्वत की है।
2: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30 से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से होता है रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 11:00 से 11:30 तक। अगर आप अपने फोन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हमें फोन अवश्य कीजिए। हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन करें। फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो,
1: आदरणीय सारस्वत जी को सादर से प्रेम प्यार भरा नमस्कार। सर
0: नमस्कार।
1: आपका ब्रज रेडियो श्रोता मित्र राजू लवानिया बोल रहा हूँ, कनौली से सारस्वत जी।
0: लवानिया जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आकाशवाणी मथुरा परिवार को और सभी श्रोताओं को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से सर।
1: और सर गंगा दशहरा है, जब थोड़ी सी गंगा माँ के बारे में बात आपके कार्यक्रम के माध्यम से कर ली जाए तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। और मैं यही कहूंगा श्रोताओं से कि वो गंगा मैया की सफाई और स्वच्छता की ओर जरा ध्यान दें। गंगा
0: जी,
1: में जो गैर कानूनी कचरा या फिर जो गंगा में बहाने योग्य नहीं है ऐसी चीजों को गंगा में न बहाएं। और
0: कुल
1: जी,
0: मिलाकर गंगा जी को, यमुना जी को गंदा ना करें,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: स्वच्छ रहने दें, क्योंकि हम उन्हें अपनी माँ का दर्जा देते हैं।
1: जी बिल्कुल। जब माँ का दर्जा देते हैं तो माँ के प्रति बच्चों का जो फर्ज है उसे भी तो याद रखना चाहिए और उसको निभाना भी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, पूजनीय है वो।
1: जी गंगा माँ को कभी मतलब ज्यादा दुखी हो के ये न कहना पड़े कि मानो तुम्हें गंगा माँ हूं न मानो तो बहता पानी,
0: बिल्कुल सर,
1: तो यही गीत सुनवा दीजिए सर गंगा की सोगंध फिल्म का।
0: बिल्कुल सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सारा जी नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो सर, राधे सर जी।
0: राधे राधे, कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र नेत्रपाल जी, ग्राम नगर से बात कर रहा हूँ जी आपसे सर।
0: बहुत स्वागत है नेत्रपाल जी कार्यक्रम में आपका।
1: आपका स्वास्थ्य कैसा है सर, और टीम का स्वास्थ्य कैसा है सर?
0: सब लोग बहुत अच्छे हैं, दुआएं हैं आप लोगों की। आप भी ठीक हैं?
1: हाँ सर, ठीक हूँ, कोई बात नहीं।
0: अब तो मौसम में कुछ आज परिवर्तन आ गया है,
1: ठंडक आ रही है, ठंडक हो रही है अब तो।
0: गर्मी से राहत है?
1: बहुत राहत है सर
0: जी। आज नेत्रपाल जी कौन सी फरमाइश रहेगी कार्यक्रम में बताएं?
1: आज फिल्म है सफर
0: जी,
1: नदिया बहे बहे धारा, चंदा चले चले रे तारा।
0: आपकी पसंद का ये गाना सुनवाते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए
1: सर। राधे राधे
0: राधे राधे।

0: हेलो।
1: हाँ भैया जी, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से जी।
0: आपका स्वागत है सर कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है भैया, अच्छे हैं।
0: क्या हाल चाल है आपके यहाँ मौसम का?
1: मौसम का तो यही है भैया, अभी सबसे गर्म है कह सकते हैं। अभी भी काफी परेशान है बारिश में होने की वजह से, खेती बाड़ी काम भी काफी अधूरा है।
0: हमारे यहाँ तो प्रभु की कृपा रात से कुछ हो गई है आज।
1: अब देखिए, घूम फिर कर अगर इधर भी आ जाए तो जी
0: थोड़ी
1: जी
0: राहत है। आज क्या फरमाइश रहेगी योगेश भाई?
1: फिल्म है साजन का घर और गीत के बोल है, नजर जिधर जिधर जाए उधर तो ही नजर आए।
0: बिल्कुल सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का गाना।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका भी सर।

0: हेलो
1: हेलो अजमानी राधे राधे
0: राधे राधे, कौन बोल रहे हैं?
1: संजय बोला सर जी घनगांव से।
0: संजय भाई, कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं बहुत बहुत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके भी लिए। आपसे बात नहीं होती है तो हमको भी जरूरत दिन नहीं करता है आपसे बिना बात करे।
0: अरे वाह वाह वाह, बड़ा प्रेम है आपका हमारे प्रति।
1: मैं आपकी रातों दिन याद करता हूँ। मैं
0: कोई बात नहीं, कभी लग जाता है फोन, कभी नहीं भी लगता है। आज कार्यक्रम में क्या फरमाइश रहेगी सर, बताइए।
1: आज कच्चे धागे का
0: कौन सा गाना
1: तेरे बिन जीना मर जाना ढोलना।
0: सुनवाते हैं संजय जी, आपकी पसंद का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए।
1: राधे राधे सर जी।
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो आकाशवाणी, नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: सर हम सचिन कुमार बोल रहे हैं, गांव झोली से।
0: सचिन कुमार।

0: मैं गांव छोली से।
1: सचिन कुमार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
0: सर और बताइए, आप कैसे हैं?
1: हम अच्छे हैं, आप बताएं कैसे हैं, क्या करते हैं आप?
0: सर अभी तो हम पढ़ते हैं।
1: कौन सी कक्षा में?
0: क्लास में पढ़ते हैं सर।
1: अच्छा अच्छा तो छुट्टियां खत्म हो गई?
0: छुट्टियां भी तो सर चल रही हैं, कुछ दिनों में खत्म होने वाली हैं। तब तक सोचा के थोड़ा एक दो दिन और कॉल मिल जाए तो सही रहेगा, फिर तो अपने क्लास में जाएंगे।
1: फिर तो पढ़ाई पे ध्यान देना जरूरी है।
0: यस सर।
1: छुट्टियों में भी होमवर्क तो मिला होगा?
0: वो सर होमवर्क तो पहले ही कर लिया सर, लास्ट की रस्मों में।
1: अच्छा, एडवांस में ही करके बैठे हैं आप आराम से?
0: यस सर, बारे में कुछ भी काम पाया पहले से।
1: हमारा कार्यक्रम कब से सुन रहे हैं आप?
0: सर आपका कार्यक्रम सब काफी दिनों से आ रहे हैं।
1: अच्छा, आज बताइए क्या फरमाइश है कार्यक्रम में?
0: सर फिल्म का नाम है मन, और गाने के बोले दिनक दिन दाना वो दिन तो बजाना।
1: बिल्कुल, सुनवाते हैं सचिन जी आपकी पसंद का गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति संजय सारस्वत की थी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में आज गुरुवार 25 जून को 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर एस के गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरोसर्जन, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। श्रोताओं, आप हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94 12 22 55 75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण। श्रोताओं, यदि आप कमर एवं रीढ़ की हड्डी की समस्या जैसे रीढ़ की हड्डी में दर्द, कूल्हे के जोड़ में नस का दबा होना, साइटिका, माइग्रेन, सर्वाइकल दर्द आदि के समाधान के लिए सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर एस के गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरोसर्जन, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। श्रोताओं, ध्यान रहे, हमारे कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 12 बजे यानी कि आज गुरुवार को 25 जून 2026 को। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाजों में अभी आपने सुना ये गाना, फिल्म का नाम था बॉडीगार्ड। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म बॉम्बे से। इस गीत को गाया है चित्रा ने।

कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये गीत, फिल्म का नाम था क्या कहना। और आइए अब सुनते हैं उदित नारायण, कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया हुआ ये गाना, फिल्म है इश्क।

श्रोताओं कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। श्रोताओं स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में आज गुरुवार 25 जून को 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण लक्षण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर एस के गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरोसर्जन आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412255775 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण लक्षण और निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। श्रोताओं ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण लक्षण और निवारण। श्रोताओं यदि आप कमर एवं रीढ़ की हड्डी की समस्या जैसे रीढ़ की हड्डी में दर्द, कूल्हे के जोड़ में नस का दबा होना, साइटिका, माइग्रेन, सर्वाइकल दर्द आदि के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर एस के गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरोसर्जन सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। श्रोताओं ध्यान रहे, आज गुरुवार 25 जून 2026 को अब से कुछ ही देर में यानी कि 12 बजे कार्यक्रम का समय रहेगा। सूचना समाप्त हुई। और आइए अब सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है विश्वात्मा। स्वर अमित कुमार और साथियों के हैं।

अमित कुमार और सपना मुखर्जी के गाए फिल्म विश्वात्मा के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण। विशेषज्ञ डॉक्टर हैं डॉक्टर एस के गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरोसर्जन, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल मथुरा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मथुरा।
3: है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर शिरादा वैली मथुरा।
4: श्रोताओं नमस्कार। आपका अपने कार्यक्रम जिसका नाम है आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समय समय पर विशेषज्ञ डॉक्टरों के माध्यम से कुछ ऐसी बीमारियां जो सामान्यतः कोई भी बीमारी होती तो हमारी थोड़ी सी लापरवाही या उस वजह से है कि हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि कोई भी बीमारी जब आती है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, कुछ इंडिकेशन शरीर में आते हैं जिसके आधार पर अगर हम थोड़े से जागरूक हों, थोड़े से सजग हों और एक उचित जगह, उचित हॉस्पिटल और उचित डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो निश्चित तौर पे उसका इलाज बहुत आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर कोई भी बीमारी गंभीर नहीं होती। हम बात इस उसकी नहीं कर रहे कि कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई बहुत अचानक समस्या पैदा हो गई, लेकिन बीमारी का आना धीमे धीमे होता है, लेकिन जब हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उनके पैदा जो लक्षण हैं उन पर ध्यान नहीं देते और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगे रहते हैं तो वो छोटी सी बीमारी जो छोटे इन्फेक्शन के रूप में, छोटी परेशानी के रूप में आई थी, वो धीरे धीरे करके गंभीर रूप ले लेती है और वो गंभीरता फिर इतनी हो जाती है कि कई बार उसका लाइलाज होना भी समझ में आता है। तो बीमारी की शुरुआत छोटी होती है लेकिन उसका निदान अगर हो जाए तो इलाज आसानी से किया जा सकता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कुछ ऐसी बीमारी जो न्यूरो पर आधारित है। आप समझते होंगे हमारा जो सिस्टम है, पूरा शरीर है, वो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से चलता है, क्योंकि दिमाग कोई संदेश भेजता है शरीर को तो वो काम करता है। शरीर में कोई चीज़ें पैदा होती हैं तो वो फिर दिमाग के लिए जाती है, तो दोनों का संतुलन जिस माध्यम से होता है वो तंत्र का तंत्र है जो हमें इसमें सहायता करता है। इसमें अब ये तंत्र का तंत्र कैसे काम करता है, वो हमारी मदद कैसे करता है, कैसे इसको हम संभाल के रखें, कैसे उसकी देखभाल करें, ये हमारा जो विषय है वो रहता है इसमें। तो आज हम बात करवाएंगे, लेकिन अभी डॉक्टर्स जब तक हम आते हैं तब तक एक गाना सुनेंगे, कुछ मनोरंजन करेंगे और इस समस्या के बारे में जब तक आप जुड़े, दो टेलीफोन

0: फ़ोन नंबर रहेंगे हमारे पास, उनका नंबर मैं आपको एक बार बता देता हूँ, 0565 कोड लगा के 2530135 आप टेलीफोन नंबर नोट करिए, और एक व्हाट्सएप नंबर है 94-122-25-575। तो ये दोनों लाइनें खुली हुई हैं, इन लाइनों के माध्यम से आप अपनी जो भी समस्या है, जो भी आप जिज्ञासा रखते हैं, विषय मैंने आपको बताया, एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूँ, वो है कमर और पीठ या रीढ़ की हड्डी का दर्द, ये क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं, कैसे इसका निदान हो सकता है, और एक डॉक्टर की जो फरमाइश जो सिफारिश है वो क्या रहेगी, ये आज जानेंगे। डॉक्टर वरिष्ठ न्यूरोसर्जन हमारे साथ हैं, डॉक्टर एस के गुप्ता साहब, आप आकाश सिम्स हॉस्पिटल, आपने देखा होगा राधा वैली आपके हाईवे पर, वहाँ विराजते हैं, तो आप मिले भी होंगे कभी, लेकिन नहीं है तो कभी समस्या आए तो आप ज़रूर जा करके मिलिए। डॉक्टर साहब आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार
1: धन्यवाद सभी को राधे राधे।
0: जी। तो डॉक्टर साहब, श्रोता हमसे जुड़े, कुछ प्रश्न हम तक आए, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो न्यूरो की समस्याएं हैं, अगर हम इसको, वैसे तो आज हमारा विषय पीठ और कमर का दर्द है, लेकिन ये जो न्यूरो सिस्टम काम करता है, थोड़ा सा बताइए व्यक्ति, क्योंकि कभी चर्चा में नहीं आता कि ये न्यूरोटिक प्रॉब्लम क्या होती है, कैसे होती है, किस तरह के लक्षण शुरुआत में आते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करिए।
1: जैसा कि सब हम जानते हैं, कमर दर्द एक बहुत ही कॉमन समस्या है,
0: जी
1: आम समस्या है। लोगों को अक्सर कहता सुना होगा कि ये हमारे कमर में दर्द हो रहा है, पैरों में जा रहा है, कभी कभी लोगों को पीठ में भी दर्द होता है।
0: जी
1: तो ये स्पाइन से जुड़ी हुई एक समस्या है, और इसके विषय पे हम चर्चा करेंगे कि इसके क्या क्या कारण होते हैं। इसके जो मेन कारण होते हैं, जो लोअर बैक पेन या कमर दर्द या जो पीठ का दर्द जिसको कहते हैं, और आम भाषा में कुछ लोग इसको सियाटिका भी बोलते
0: हाँ,
1: हैं।
0: साइट का आजकल बहुत सुनने में मिल रहा है
1: हाँ,
0: इसमें।
1: सुनने में
0: जी
1: मिल रहा है,
0: जी जी
1: हर तीसरे आदमी को ये समस्या है।
0: हाँ
1: तो इसके कारण जो होते हैं, एक तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि जो जनरल कॉजेज होते हैं वो मसल और लिगामेंट पुल हो जाता है, कभी उससे भी होता है, उससे भी लोअर बैक पेन होता है कभी, और कुछ ओबेसिटी, जो ओवरवेट लोग होते हैं उनमें भी ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो सबसे ज़्यादा मुख्य कारण है वो स्लिप डिस्क का होता है, जिसमें डिस्क पीछे की तरफ खिसक जाती है और वो नस को दबा रही होती है, वो नस पैर तक जाती है और उससे काफ़ी तेज दर्द होता है पेशेंट को।
0: कई बार तो इतना सीवियर होता है कि व्यक्ति मतलब बस सहनी कर रहा होता है, लेकिन
1: हाँ,
0: उस कर कुछ नहीं पाता
1: कर कुछ
0: उसको।
1: नहीं पाता, बेड रिडन हो जाता है। और दूसरा और भी कारण जो है, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, इसमें घुटका एक दूसरे के ऊपर खिसक जाता है।
0: जी। तो कुछ श्रोता डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने लगे हैं, मैं स्वागत करता हूँ। हेलो
2: नमस्कार
0: जी, नमस्ते भैया, नाम बता दीजिए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: सर, मेरा नाम विष्णु, मैं मथुरा से बोल रहा हूँ सर।
0: मथुरा से, क्या नाम बताया आपने?
2: विष्णु
0: विष्णु भैया, बताओ, उम्र भी बताओ और समस्या भी बताओ
2: सर, मेरी जो उम्र है वो 30 के समथिंग है सर।
0: जी।
2: तो सर मेरे क्या है, रीढ़ की हड्डी में सर दर्द रहता है कि, तो सर मैंने जांच कराई थी तो डॉक्टर ऐसे बोला था आपकी रीढ़ की हड्डी बढ़ गई है।
0: डॉक्टर साहब बता रहे,
1: अच्छा, कौन सी जांच कराई थी आपने?
2: सर मैंने सीटी स्कैन कराया था सर।
1: अच्छा, आपको जो कमर में दर्द रहता है वो पैर में भी जाता है या?
2: कमर से लेके पूरे पैरों तक जोड़ देता है सर।
1: हाँ, पूरे पैरों तक। ये जो समस्या लग रही है, मुझे लगता है ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम लगती है, और इसके काफ़ी अच्छे निदान हैं, पूरी तरह से पेशेंट ठीक हो जाता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो स्लिप डिस्क है वो किस ग्रेड की है। अगर हल्की है तो हम सिर्फ दवाओं से और एक्सरसाइज से आपको ठीक कर देंगे, अगर वो ज़्यादा है, सीवियर ग्रेड है उसका स्लिप होने का, तो फिर हम आपको एक दूरबीन से सर्जरी करते हैं, उसमें 24 घंटे में ही मरीज ठीक होके चलने लगता है। तो इसके लिए हमें आपको एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना होगा, और आपने जो जांचें कराई हैं वो लाके आप हमसे मिलें सिम्स हॉस्पिटल में, आकाश सिम्स हॉस्पिटल में, तो फिर हम
2: सर
1: आप
0: जी।
2: उसका जो इलाज चल रहा है सर, वो जिला हॉस्पिटल से चल रहा है सर, उससे मुझे काफी हद तक फायदा आ रहा है सर। क्या
0: तो फायदा है। तो इस समय आप क्या जानना चाह रहे हैं बताए।

0: तो सर ये मतलब ये पूछना चाहता हूँ सर, ये सक्सेसफुल है या सर या फिर
1: नहीं, ये
0: नहीं
1: फायदा हो रहा है तो मैं समझता हूँ
2: नहीं
1: सक्सेस
2: नहीं
1: ही
2: नहीं पूरी तरह से इसका
1: है।
2: सक्सेसफुल इलाज है ना।
0: नहीं तो सर ये मेरे साल दो साल में कभी भी उठ जाता है सर, कमर से दर्द देख गया।
2: हाँ तो वो मैं यही तो कह रहा हूँ, वो मुझे आपको देखना पड़ेगा कि आपको स्लिप डिस्क किस ग्रेड का
1: आप सेकंड ओपिनियन आके ले सकते हैं,
2: है
1: कागज
2: ना।
1: वगैरह दिखा लीजिए और आके मिल लीजिए एक बार, जो भी समाधान होगा फिर वो आपके सामने होगा।
0: तो सर ये जो सिम्स हॉस्पिटल है सर, ये सरकारी होता है या प्राइवेट है सर ये हॉस्पिटल?
1: जी ये तो प्राइवेट डॉक्टर वो है हॉस्पिटल, लेकिन आप अगर समस्या है और आपको, क्योंकि हम ये तो नहीं कहते कि सरकारी में सुविधाएं नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जाके संपर्क कर सकते हैं ना। आपने फ़ोन किया विष्णु भैया, आपके इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, ये जैसे आपने कहा कि स्लिप डिस्क हो रही है इसमें, तो क्या इसमें जैसे कोई कार्य विशेष होते हैं जहाँ ज़्यादा चांसेस रहते हैं, या किसी को भी हो सकती है कभी भी इसमें, उठने बैठने में, पोस्चर में कभी व्यक्ति लापरवाही करता है, तो कोई विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता?
2: हाँ, इसके जो इटियोलॉजीज हैं किसके कारण से ज़्यादा होती है, एक तो सडन झटका लग गया कमर में,
1: हाँ जी
2: वजन उठाया तो अचानक
1: हाँ
2: से ही कभी कभी स्लिप डिस्क हो जाती है।
1: हाँ
2: कुछ ओवरवेट लोग जो होते हैं उनमें इसकी संभावना ज़्यादा रहती है।
1: जी, मतलब जो थोड़ा सा मोटापा आ गया है
2: हाँ
1: तो वो है, और क्योंकि अब आदतें नहीं रही है वजन वजन उठाने की, तो अचानक से अगर
2: हाँ
1: आपने
2: झटका
1: ध्यान नहीं,
2: उठाया,
1: हाँ पोस्चर बॉडी का
2: हाँ
1: कैसे कर रखा है
2: उससे भी हो जाता
1: उस
2: है।
1: उसमें हो सकता है। ऐसे में जो जो बहुत सारे लोग इसी तरह का काम करते हैं जैसे वो वेट उठाना है करना है, तो उनकी क्या आदत में आ जाता है वहाँ
2: नहीं,
1: समस्या?
2: वो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज अगर आप करते हैं
1: जी,
2: तब ये समस्या की
1: नहीं
2: संभावना काफ़ी
1: आएगी।
2: कम होती है, वो काफ़ी
1: हाँ
2: एक्सरसाइज करते हैं
1: मतलब
2: वो
1: अगर
2: लोग।
1: आपकी लाइफ सेडेंटरी है, थोड़ा आराम
2: हाँ
1: तलब जीवन
2: हाँ
1: है और
2: हाँ
1: आदत नहीं है, बॉडी को उसकी
2: हाँ
1: आदत नहीं है, तो जर्क लग सकता
2: हाँ
1: है।
2: जर्क लगने से भी होता है।
1: जी, इसमें अब इसका जैसे पैरों तक आपने कहा कि नस दबती है और नस दबने से पैरों तक वो जाता है इसमें, तो ये चीज़ें एक व्यक्ति कई बार तो पहचान ही नहीं पाता, कई बार कहता है मैं शायद सो नहीं पाया, कई बार थकान का हो, तो कैसे अंदाजा लगाए कि शुरुआत जब होती है तो किस तरह का पेन उसको?
2: शुरुआत में यूजुअली जो स्लिप डिस्क होती है उसका जो दर्द होता है वो लोअर बैक में ही रहता है, कमर में ही रहता है। जब उसकी जो स्लिप डिस्क की जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है, सीवियरिटी और ग्रेड बढ़ता जाता है, तब वो नस पे दबाव डालती है जो पैर को सप्लाई करती है, तब पूरे पैर में दर्द आता है, फिर वो इनकैपेसिटेट कर देता है आपको, कुछ भी आप कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे केसेज में फिर हम लोग एंडोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं, उससे फिर आपको पूरा राहत मिल जाता
1: लेकिन डॉक्टर साहब इसमें जैसे अभी जो वो आया था एक इसी तरह के एक साथी और हैं, उन्होंने भी ये लिखा है कि एक मेरे कमर में बहुत दर्द रहता है, सरकारी अस्पताल में दिखाया मगर ठीक नहीं हो पाया, उठने बैठने में बहुत समस्या हो रही है, दर्द होता है, तो इसी तरह की समस्या इन्होंने भी लिखी है। ये जो सामान्यतः लक्षण हैं व्यक्ति में जो आते हैं या पेन के साथ भी हम कई बार कर सकते हैं, तो क्या व्यक्ति, मेरा मतलब है कि बहुत देर में पहुंच पाता है हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास,
2: वो शुरू
1: उसको आदत सी बन जाती है कि वो दर्द के साथ ही रहने की आदत सी बना
2: वो शुरू
1: लेता
2: में बेसिकली इधर उधर दिखाता रहता है, झोला छाप डॉक्टरों को दिखाता है, फिर इधर उधर जाता है, वो फिर
1: है।
2: बाद में ही आता है, लेट ही आता है हम लोग के पास तो। बट इसके बड़े अच्छे सॉल्यूशन हैं, स्पाइन सर्जरी काफ़ी सेफ हो चुकी है, 99.99% रिजल्ट हैं।
1: लेकिन मिथक ये भी है कि लोग जो है रीढ़ की हड्डी के साथ छेड़छाड़ कम पसंद करते हैं, इस पर हम आपसे बात करेंगे, एक श्रोता हमारे साथ है। हेलो
3: नमस्कार सर,
1: नमस्ते भैया, नाम बताइए।
3: मैं सलीम बोल रहा हूँ मथुरा से।
1: सलीम मथुरा से, बताइए उम्र और बता दीजिए भैया।
3: मेरी उम्र 48 साल है।
1: 48 साल, सलीम मथुरा से, बताइए भी समस्या, डॉक्टर साहब से बात करिए।
3: सर मेरे जो है कमर में दर्द रहता है 4-5 साल से, तो जैसे मैं जिस ठंडे फर्श पर लेट सो जाता हूँ मैं, तो जब दर्द हो जाता है मेरे, और जैसे कोई ठंड लग जाती है जब दर्द हो जाता है मेरे, क्या मतलब है ये?
2: अच्छा सलीम, ये बताओ ये दर्द आपको कमर में ही रहता है कि पैर में भी आता है?
3: नहीं, कमर में रहता है, रीढ़ की हड्डी के पास।
2: रीढ़ की हड्डी के पास, और 4-5 साल से रह रहा है ना?
1: आप
2: चार
1: इसको
2: पांच साल
1: मौसम से जोड़ के देख रहे हैं कि सर्दी आती है गर्मी आती है तब?
3: नहीं, गर्मियों में भी हो जाता है सर ये।
1: हाँ तो मतलब कभी भी हो सकता है ना ये तो?
3: हाँ कभी भी हो जाता है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दर्द है मेरे अब भी।

0: तो अभी तो गर्मी है ना,
1: हाँ
0: तो
1: तो
0: डॉक्टर
1: सलीम
0: साहब से
1: ऐसा है
0: बात
1: कि
0: करिए।
1: ये जो कमर का दर्द होता है उसके बड़े सारे कारण होते हैं सलीम, है ना। तो हम आपको जांच करके देखेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है ना, कि किस वजह से दर्द है, तो हम उस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। उसके जो मेडिकल रीजंस होते हैं और कुछ सर्जिकल रीजंस होते हैं, तो अगर मेडिकल रीजंस हैं तो फिर हम दवाई देते हैं, और अगर सर्जिकल रीजंस हैं तो हम सर्जरी करते हैं। तो हमें पूरा जांच आपकी करनी होगी कि आपका कमर का दर्द क्यों है, क्या स्लिप डिस्क की वजह से है, क्या स्पाइनल ट्यूमर की वजह से है, या स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस है। अगर ये सब कारण है तो फिर हमें आपकी सर्जरी करनी होगी। अगर ये सब कारण नहीं है, मसल स्प्रेन है, लिगामेंट इंजरी है, तो आप दवाओं से भी ठीक हो सकते हैं।
0: तो एक बार आप जाके दिखा लीजिए, और डॉक्टर साहब से तो हम बात कर ही रहे, आप यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके एक बार जाएंगे तो पूरे फिर बॉडी का आपका जो है एक बार देख करके वो आपको राय बता देंगे उसमें। डॉक्टर साहब, जैसे मैं बात कर रहा था कि रीढ़ की हड्डी की जब बात आती है तो व्यक्ति बड़ा कॉन्शियस हो जाता है कि यार मैं जाऊँगा तो एक चीज़ के समाधान के लिए, कहीं मेरे को और समस्याएं ना लग जाए। आपने कहा कि बहुत सेफ हो चुकी है, मेडिकल साइंस बहुत एडवांस कर
1: बहुत
0: चुका है,
1: एडवांस हो चुकी है।
0: तो अब वो चीज़ें शायद नहीं हो।
1: हाँ,
0: जी
1: 99.99% सेफ है स्पाइन सर्जरी।
0: बताइए। जी,
1: पहले जो टेक्नोलॉजी थी उसके तुलना में आज की जो टेक्नोलॉजी है, बहुत ही एडवांस माइक्रोस्कोप है हमारे पास, बहुत ही एडवांस एंडोस्कोप्स हैं जो नस को अलग ही दिखाते हैं पैथोलॉजी से। तो जो चीज़ हमें साफ दिख रही है तो हम उसको अच्छे तरीके से डील कर पाते हैं। पहले इतने एडवांस इक्विपमेंट नहीं थे हमारे पास,
0: हाँ,
1: आज से 20 साल पहले।
0: तो हम पुरानी किसी कहावत या जानकारी या किसी केस विशेष के आधार पर ये नहीं कह सकते कि
1: हाँ,
0: आज हम नहीं जाएंगे और
1: आज हम
0: दर्द के
1: नहीं
0: साथ
1: जाएंगे।
0: जीते
1: हाँ,
0: रहेंगे।
1: पुराने समय में जो टेक्नोलॉजी थी उससे आज की टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो
0: जी जी
1: चुकी है।
0: एक श्रोता और जुड़ रहे हैं हमारे
2: हेलो,
0: साथ। हेलो,
2: राधे
0: राधे राधे भैया, नाम बताओ।
2: राधे। ये कृष्ण कुमार त्यागी बोल रहा हूँ, सैपो गुजरा।
0: कहाँ से?
2: सैपो गुजरा।
0: सहपऊ से? सहपऊ से बताइए भाई समस्या, डॉक्टर साहब से बात करिए।
2: दर्द
0: नहीं, आपकी आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं आ रही, तो सेट कम कर दीजिए और धीरे धीरे साफ से बोलिए ढंग से। ठीक,
2: कोठा
0: कोठा मतलब ठीक है, आपका कंधे की बात कर रहे हैं आप।
2: घटू
0: हाँ
2: तो इन पे किसी ने डॉक्टर ने भूख बताई थी घी छके और बाबा लहसन लहसन कारी नहीं के
0: नहीं,
2: पत्ता
0: अभी आपको कोठे पे घुटनों में इनमें दर्द रहता है, ये आप कहना चाह रहे हैं?
2: जी।
0: हाँ, तो मतलब डॉक्टर साहब क्या कहें, हड्डी का
1: हाँ,
0: इसमें?
1: इनको तो आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, मुझे लगता है आर्थराइटिस हो, तो एक बार रिमेटोलॉजिस्ट से या ऑर्थोपेडिक सर्जन से आप दिखाएं
0: आप
1: उसको।
0: किसी हड्डी वाले डॉक्टर को दिखा सकते हैं तो आपका समाधान होगा। डॉक्टर साहब, एक है ये है, मेरा नाम आशु है, मेरी उम्र 40 वर्ष है, मेरी लेफ्ट साइड में काफ़ी पेन रहता है, एक एक्सीडेंट के बाद ऐसा हुआ है, सदर बाजार से आप लिखते हैं। इसी में दूसरा है कि मेरा नाम खुशबू है, मेरी उम्र 48 वर्ष है, माट मथुरा से लिख रही है, मेरे लेफ्ट साइड में कमर, इनके भी काफ़ी दर्द रहता है, कभी कम हो जाता है और कभी कभी बहुत तेज हो जाता है, जिसके कारण मैं बिल्कुल झुक नहीं पाती उसमें।
1: ये आंसू जी ने जो लिखा है, इनकी
0: जी
1: उम्र 40 साल है, इनको लेफ्ट साइड में पेन रहता है और एक्सीडेंट के बाद हुआ है, तो हम इनकी जांच करेंगे कहीं कोई स्पाइन में फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है जिसकी वजह से नस दबी हो और वो उस साइड में पेन हो रहा हो। तो अगर कोई फ्रैक्चर है तो हम उसको एडवांस तरीके से काइफोप्लास्टी, वर्टीब्रोप्लास्टी करके फिक्स कर सकते हैं और उनकी ये समस्या दूर हो सकती है।
0: जी, ये बहन जो लिख रही
1: ये
0: है
1: खुशबू है, ये कह रही है इनको
0: 48,
1: 48 वर्ष है, लेफ्ट साइड से कमर में काफी दर्द रहता है और कभी कभी बहुत तेज हो जाता है जिसके
0: झुक
1: कारण
0: नहीं पाती
1: झुक
0: है।
1: नहीं पाती।
0: जी,
1: इनको मुझे लगता है कि इनको जांच करें हम, तो पता चलेगा कि उसमें क्या है। हो सकता है डिस्क की प्रॉब्लम हो और ये नस को दबा रही हो, उसकी वजह
0: जी
1: से दर्द हो। इसके लिए हमारे पास बहुत ही एडवांस सॉल्यूशंस हैं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के रूप में, तो उससे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगी।
0: जी डॉक्टर साहब, कई बार पेन होता है तो हम पेन की बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार जैसे पैरों में उसमें सुन्नपन भी आ जाता है, इस पर हम बात करेंगे। एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो,
3: हाँ हेलो,
0: हाँ जी, नमस्ते भैया,
3: हम विपिन कुमार बोल रहे, गांव चौली से ही।
0: गांव चौली से। विपिन जी बताइए क्या समस्या।
3: हमारी समस्या ये है कि 61 साल

0: हल्की बुढ़िया जी हैं, उनको नार में इधर उधर को करने में दर्द होता है।
1: अच्छा 65 साल की माँ है ना? ठीक है अभी बताते हैं।
2: इनको
1: गर्दन
2: 65 साल की माता जी हैं, इनको गर्दन के मूवमेंट में पेन होता है, तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इस एज ग्रुप में काफ़ी कॉमन होती है ना। तो इसका दवाइयों से इलाज होता है, और फिर आप एक बार ला के जाँच करा लें। अगर ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है सिर्फ, तो दवाइयों से इलाज होगा। अगर स्पाइनल ट्यूमर है या कोई सर्वाइकल स्पाइनल स्टेनोसिस है, तो उसके लिए सर्जरीज होती हैं।
1: जी जी
2: तो जांच करके ही हम एक निर्णय पर पहुंच पाएंगे कि हमें उनके लिए क्या सूटेबल उपचार
1: एक बार मतलब चेकअप बनता है इसमें।
2: हाँ
1: ला के दिखा लें और
2: हाँ
1: कुछ जो आवश्यक जांचें होंगी
2: उसके
1: वो
2: बाद ही
1: होने के
2: निर्णय
1: बाद।
2: पे पहुंच पाएंगे
1: जी,
2: हम।
1: आपने बात की रुक सब ट्यूमर की, तो इसमें ये ट्यूमर भी हो सकता है क्या इसमें
2: स्पाइनल
1: स्पाइन?
2: कॉर्ड में ट्यूमर भी काफी कॉमन होते हैं, उनसे भी इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
1: मैं बात कर रहा था इसमें कि जैसे ये तो दर्द एक लक्षण हुआ, लेकिन कुछ लोगों के जैसे अंगूठा सुन्न हो गया, पैर सुन्न हो रहा है नीचे से या कहीं से कोई पैर का भाग, तो ये भी क्या नस दबे होने का
2: ये
1: कारण हो सकता है?
2: यस
1: जी
2: ये भी नस नस दबे होने के लक्षण जो होते हैं, एक तो दर्द होता है, दूसरा सुन्नपन होता है, जलन होना, चींटी जैसे काटना, ये
1: हाँ
2: सारे नस दबे होने के लक्षण होते हैं।
1: हाँ मतलब अगर जलन हो रही है किसी उसमें उंगली में तलवे में, तो वो भी
2: इसका कारण होता है।
1: कारण हो सकता है। कुछ समस्याएं जैसे पुराने समय में डॉक्टर साहब हुआ करती थी, जैसे मिर्गी है, माइग्रेन आजकल लोगों के काफ़ी हो रहा है, अल्जाइमर है, साइटिका की तो हमने बात की, पार्किंसन है, तो ये भी क्या स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े?
2: नहीं वो ब्रेन से जुड़े हैं, मिर्गी
1: अच्छा
2: की जो समस्या है और
1: हाँ
2: एल्जाइमर्स की जो समस्या है वो ब्रेन से जुड़ी हुई है,
1: जी
2: स्पाइन
1: जी
2: से जुड़ी
1: स्पाइन से जुड़ी
2: नहीं।
1: हुई नहीं है उसमें, वो एक अलग तरह का
2: हाँ अलग
1: वो है
2: तरीके
1: जिसपे
2: का।
1: हमने पहले भी
2: हाँ
1: बात
2: पहले
1: की
2: भी
1: थी
2: बात
1: बात की थी। तो क्या कहना चाहेंगे कि इसमें व्यक्ति को, जैसे मान लो एक स्वस्थ व्यक्ति है लेकिन उसके बैठने का तरीका ठीक नहीं है,
2: बैठने
1: उठने का तरीका ठीक नहीं
2: हाँ
1: है, या
2: एक
1: अचानक से इधर उधर झुक जाने का वो,
2: हाँ
1: तो
2: एक तो अगर हम अपने स्पाइन को, स्पाइन हेल्थ के बारे में बात करें, स्वस्थ स्पाइन को रखने की जो बात करें, तो एक तो हमें एक हेल्दी वेट अपनाना है, पोस्चर को, सिटिंग पोस्चर को ठीक रखना है, और ओबेसिटी को बढ़ावा नहीं देना है, और रेगुलर एक्सरसाइज करना है, बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। और यदि हमें कोई स्पाइन में अर्ली सिम्टम्स आते हैं, तो अर्लियर इज द बेटर, हम स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। अगर
1: मतलब
2: हमें
1: उसको ढीला न छोड़े,
2: हाँ ढीला ना छोड़ें।
1: अचानक से कुछ
2: हाँ
1: आपको हो रहा है, इसका मतलब बॉडी ने आपको कुछ इंगित किया है,
2: इंगित किया
1: आप
2: है तो
1: उसको लेकर के एक्सपर्ट जाइए, अच्छे
2: हाँ
1: हॉस्पिटल जाइए, एक तुरंत और जो उपलब्ध है वो इलाज लेने की डॉक्टर साहब बड़ी हमारी समाज में आदत है कि हम कई बार तो पैसे की वो कर जाते हैं, लेकिन कई बार छोटी सी समय की भी बचत के लिए हम कहीं से भी सलाह के हिसाब से डॉक्टर वो ले लेते
2: आप
1: हैं।
2: ले लीजिए अपने नियर बाई सलाह, बट बेटर है कि आप अर्लीस्ट न्यूरो सर्जन से ही मिलें तो
1: हाँ
2: बेटर ही रहता है।
1: मतलब आज आपने ले ली कोई बात नहीं, लेकिन जब समय
2: हाँ
1: हो तब तो
2: तब
1: फिर
2: आप जाके
1: चले जाएं उस।
2: स्पेशलिस्ट से जरूर मिलें।
1: जी। तो इसमें मैं कह रहा था कि जो रहन-सहन का तरीका है, जैसे कुछ यंग बच्चे हैं आजकल जिम जाते हैं, तो और जिम में कई बार हम एक्सरसाइज जितनी करनी चाहिए क्योंकि कई बार वहाँ भी अच्छा एक्सपर्ट हमारे साथ नहीं होता, अच्छा ट्रेनर हमारे साथ नहीं हो, जिम तो है, मशीनें भी हैं और हम भी करना चाहते हैं, तो ओवर भी हो जाता है, तो ओवर होना भी कई बार मुश्किल।
2: ओवर जो एक्सेसिव वेट लिफ्टिंग करते हैं, सडन जर्क से स्लिप
1: हाँ
2: डिस्क होने की संभावना काफ़ी रहती है, और कई पेशेंट्स हमारे पास आते भी हैं तो, और कभी कभी मसल स्ट्रेच भी हो जाती है।
1: एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, हेलो, शायद फोन कट गया, तो हेलो
0: हाँ
1: जी
0: साहब,
1: जी जी बताइए, नमस्ते,
0: नाम भीमचंद है मेरा।
1: नाम दुलीचंद,
0: हाँ भीमचंद,
1: हाँ ठीक है,
0: और उम्र में ये 80 साल है करीब है।
1: 80 साल है, आप खुद ही बोल रहे? अच्छा
0: हाँ जी,
1: बताइए समस्या,
0: और
1: आपकी आवाज तो बुलंद आ रही है।
0: बाई तरफ मेरे पैर में पूरे पे जगह छोड़ दी है, डंडा के भी चलना पड़ता है, वजन नहीं सहता।
1: ओके ये किसने बताया कि जगह छोड़ दी है कूल्हे पे?
0: मैंने एक्सरा कराया था जयपुर में।
1: ओके ओके डॉक्टर साहब।
2: अच्छा आपको बाईं तरफ दर्द रहता है और वो पूरे पैर में आता है,
0: दर्द नहीं होता है, कल तक काम नहीं सकता, वजन नहीं सहता,
2: वजन नहीं सहता
1: वजन
2: है,
1: नहीं सहेगा।
2: दर्द नहीं होता है, कोई सुन्नपन है पैर में आपके?
0: हाँ, सुन्नपन से नसों में खिंचाव है शरीर में।
2: अच्छा नसों में खिंचाव है, और

0: कोई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की समस्या है आपको?
1: ऐसी कोई परेशानी ना है।
0: ऐसी कोई परेशानी नहीं है, तो हम आपको एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन और करेंगे।
1: अच्छा सर।
0: और कुछ टेस्ट करेंगे, तो उससे बाद हम एक डायग्नोसिस पे पहुंचेंगे कि आपको ऐसा क्यों हो रहा है।
2: ठीक है भैया।
1: घिसाव
2: पड़ गया आपको?
0: हाँ, तो उसको जांच करके ही हम बता पाएंगे।
2: जी, कई बार ऐसा होता है कि एक ही चीज समस्या नहीं है, कई समस्याएं आ जाती हैं, तो फिर निश्चित तौर पर तभी हम अपने हर कार्यक्रम में कहते हैं कि उम्र बड़ी हो या समस्याएं गंभीर हो गई हो तो एक अच्छी डॉक्टर और अच्छे ग्रुप के पास जाना जरूरी है, क्योंकि वहाँ समाधान ग्रुप में मिल जाता है हमें। ऐसा नहीं होता कि भाई हम नस की उसके लिए और हड्डी की समस्या साथ में, तो फिर आप आधे ही रह जाते। तो

0: उसके लिए और हड्डी की समस्या साथ में, तो फिर आप आधे ही रह जाते। तो अच्छे हॉस्पिटल जाना, अच्छे डॉक्टरों के ग्रुप के साथ जाना, ये बहुत जरूरी होता है इस पे। एक दूसरे श्रोता डॉक्टर साहब जुड़ रहे हैं। हेलो,
1: हाँ जी, हेलो, आकाशवाणी से
0: हाँ
1: बोल
0: बोले बोले भैया।
1: रहे। सर, मैं नेत्रपाल बोल रहा हूँ, जहांगीरपुर
0: से नेत्रपाल जी, बताइए।
1: से। मेरा ये प्रश्न है, डॉक्टर साहब, मेरे पैर में दर्द मारता
0: आपके पैर में?
1: है। हाँ, मैं कुछ छोटा सा था, जब 14-15 साल का, तो मैं कैसे ही कूदा था तो पैर में मेरे फ्रैक्चर हो गया था। मैंने दिखाया नहीं था
0: हाँ,
1: और ठीक भी हो गया था। और मैं भजन का कोई काम करता हूँ तो दर्द महसूस होता
0: अभी उम्र कितनी आपकी?
1: है। मेरी सर होगी उम्र 30 साल होगी।
0: अभी 30 साल है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कह रहे कि थोड़ा बचपन में कोई चोट लगी
2: हाँ,
0: उनकी।
2: बचपन में कोई चोट लगी, फ्रैक्चर हुआ है और वहाँ पे सिर्फ दर्द मारता है, तो हो सकता है कोई एंट्रेपमेंट न्यूरोपैथी हो और वहाँ पे डस्ट अभी रह गई हो आपकी चोट लगने से, वहाँ फाइब्रोसिस हुई होगी तो उसी की वजह से पेन हो रहा होगा,
0: जी,
2: तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं नर्व रिलीज के लिए, उससे आपका ये दर्द ठीक हो जाएगा।
0: जी डॉक्टर साहब, ऐसा अक्सर देखा गया है कि लोगों को जैसे कभी चोट लगी, फिर ध्यान नहीं दिया, वो हड्डी वहीं वहीं जुड़ गई, फिर तो थोड़े से एक कर्व विशेष के साथ चलने की आदत पड़ गई, झुक के चलने की आदत पड़ गई, लेकिन दर्द भी बना रहता है, वो समस्या भी बनी रहती है। तो ऐसे उसमें क्या, व्यक्ति भले आज देर हो गई लेकिन जाना चाहिए, दिखाना चाहिए उसमें।
2: दिखाना चाहिए,
0: जी
2: उसमें
0: जी
2: कभी कभी एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी हो जाती है, नर्व उसमें फंस जाती है, जो टेढ़ी हड्डी जुड़ी है उसमें नर्व फंस जाती है।
0: हाँ, और वो फिर हमेशा
2: हाँ,
0: आपको
2: दर्द
0: पर
2: वो फंसी रहेगी तो वो दर्द करती रहेगी, तो
0: हाँ,
2: आप उसको वहां से माइक्रोस्कोप से रिलीज करेंगे तो फिर वो ठीक हो जाता है तब।
0: मतलब देर भले ही हो गई हो लेकिन
2: हाँ
0: एडवांस साइंस और
2: हाँ
0: मेडिकल से अब अभी भी
2: कर सकते
0: समाधान
2: हैं, हाँ
0: समाधान हो
2: समाधान कर
0: सकता है।
2: सकते हैं।
0: तो जिनके पास समय है, पैसा है, उनको जरूर जाना चाहिए। ये जो सुविधाएं आज बनी है वो इसीलिए है कि हम उनका फायदा उठा सके। चलते चलते डॉक्टर साहब, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारी, जैसे आपने जिक्र भी किया, लोग डायबिटिक हैं, थायराइड के पेशेंट हैं, या क्रोनिक बहुत सारी डिजीज हैं, उनके साथ जी रहे, तो वहाँ क्या ये जो न्यूरो की प्रॉब्लम है अगर हो जाती है
2: इन
0: तो।
2: सब पेशेंट्स को न्यूरो की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेडिकल प्रॉब्लम्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, उससे भी पैर में सुन्नपन रह सकता है, दर्द हो सकता है, तो उसका हम लोग दवाइयों से उपचार करते हैं।
0: जी,
2: और इनमें अगर किसी को डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है, ओबेज भी है, एल्कोहल भी लेते हैं, तो इनमें जो स्पाइन रिलेटेड सर्जरीज होती हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है।
0: अब एक सामान्य सा सबके हित का एक सवाल मैं चलते चलते आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि आप एक वरिष्ठ सर्जन के तौर पे शहर में काम कर रहे हैं। भले ही मथुरा छोटी जगह है लेकिन एक अच्छी बात है कि उसको एडवांस मेडिकल फैसिलिटी मिल चुकी है उसमें। लेकिन व्यक्ति जहाँ जाता है, कई बार जानकारी कम होती है, साधन भी कम होते हैं, समय भी कम होता है, लेकिन उसको प्रॉपर सलाह नहीं मिल पाती है। जैसे कुछ व्यक्ति कहते हैं हम सरकारी अस्पताल गए लेकिन हमें अच्छा इलाज नहीं हुआ, हमें सुविधा नहीं मिल पाई, हम समस्या के साथ हैं, या किसी क्लिनिक पे गए, किसी क्लिनिक विशेष या डॉक्टर विशेष का ना, तो लोग ये पढ़े लिखे लोग भी ये नहीं बताते कि भाई मेरे यहाँ समाधान नहीं है, आप वहाँ चले जाइए।
2: ये एक थोड़ा
0: ये
2: सा,
0: मतलब
2: हाँ
0: हम कई बार अपने छोटे से फर्ज
2: हाँ
0: से उसको पूरा नहीं कर पा रहे।
2: ये तो एक सोशल प्रॉब्लम है, मैं
0: जी
2: ये
0: जी
2: कहना
0: जी
2: चाहूँगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको गाइडेंस तो ठीक देना चाहिए।
0: हाँ, कि
2: मथुरा
0: अभी
2: भले,
0: फर्स्ट एड मैंने दे दी
2: हाँ
0: आपका भाई ये है,
2: हाँ
0: लेकिन
2: आपको
0: प्रॉब्लम आपकी बड़ी
2: हाँ,
0: है, आप भाई जाइए
2: स्पेशलिस्ट
0: वहाँ।
2: से मिलना चाहिए। मथुरा भले ही छोटी जगह है, बट जो आकाश सिम्स हॉस्पिटल में जो हम स्पाइन और ब्रेन में काम कर रहे हैं, जो वर्ल्ड के वेस्ट सेंटर पे हो रहा है, वैसा ही काम हमारे यहाँ
0: काम
2: हो
0: हो
2: रहा है।
0: रहा है।
2: जो स्पाइन की सर्जरी हम एंडोस्कोपिक यहाँ स्पाइन कर रहे हैं, वो अमेरिका के जो बेस्ट सेंटर पे हो रही है वही हमारे यहाँ हो रही है, उसमें कोई
0: हाँ,
2: फर्क नहीं
0: कोई
2: है।
0: फर्क नहीं है।
2: मतलब वी आर इन नो वे लेस देन एनी वन इन द वर्ल्ड।
0: हाँ, मतलब ये एक सौभाग्य की बात हो सकती है, और हमारे लिए वो हो सकती है कि ये सुविधा अगर हमारे शहर में, हमारे आसपास है, तो अगर है समस्या तो जाइए मिलिए, और आपको नहीं है तो कम से कम दूसरे लोगों को भी बताइए कि भाई समस्या के साथ मत जियो, पैसा इसीलिए है कि आज उसका उपयोग करिए, और समस्याओं के साथ पुराना समय हो सकता है लेकिन आज आप

0: सेफ है।
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: जो ब्रेन और स्पाइन की समस्या का समाधान आकाश सिम्स यहाँ दे रहा है, किसी भी बेस्ट सेंटर पे आप दुनिया के जाएंगे वही समाधान होगा, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा।
1: जी
0: जो
1: जी
0: ह्यूमनली पॉसिबल है वो यहाँ हो रहा है।
1: जी। तो श्रोता बंधुओं, चलते चलते यही कहेंगे और हर कार्यक्रम के बाद यही कहते हैं, हमारे कार्यक्रम का ये उद्देश्य भी है कि इस कार्यक्रम से हम आपका इलाज नहीं कर रहे, आपको कोई समाधान उस रूप में नहीं दे रहे कि ये इलाज है, लेकिन एक अवेयरनेस है, एक जागरूकता का कार्यक्रम है। हम आपको ये बता रहे हैं कि आपके शहर में भी बहुत अच्छी मेडिकल सुविधाएं हैं, आप जाइए, समझिए, और आपके पास कोई और भी लोग हैं तो उनको भी बताइए कि भाई चीज़ें हैं, आप जाकर के चीज़ों का समाधान लीजिए। आप परेशानियों और बीमारियों के साथ रहना पुराना समय हो सकता है, लेकिन आज ये अच्छा नहीं है। तो एक जागरूक समाज, एक उन्नत समाज और एक विकसित भारत की संकल्पना जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं कि 1947 में विकसित भारत होगा, तो वहाँ एक अच्छा स्वास्थ्य भी उसका एक पैरामीटर बनेगा, एक मापदंड बनेगा, और स्वास्थ्य को हम धन पहले से ही हमारे भारतीय समाज ने माना है, तो अच्छा स्वास्थ्य हम सबके लिए वरदान हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप आए, हमारे श्रोताओं से जुड़े, कुछ समस्याओं के समाधान आपने सुझाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार, सभी को धन्यवाद। राधे राधे।
2: अब हर बीमारी का इलाज सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ, आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपने मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली मथुरा। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ, आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपने मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली मथुरा।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय था कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण। विशेषज्ञ थे डॉक्टर एस के गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरोसर्जन, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल मथुरा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मथुरा। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार हैं लाखन सिंह, संगत कलाकार हैं रामेश्वर दयाल शर्मा, प्रोफेसर मिश्रा, मनमोहन कौशिक और सूरज भान। आइए सुनते हैं ब्रज लोकगीत का कार्यक्रम।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से समय आप सुन रहे हैं ब्रज लोक गीत। आज के कलाकार हैं लाखन सिंह।

0: का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे ब्रज लोकगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार थे लाखन सिंह, संगत कलाकार थे रामेश्वर दयाल शर्मा, प्रोफेसर मिश्रा, मनमोहन कौशिक और सूरज भान। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना चाहता है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक का उद्घाटन

0: करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की आकांक्षाओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में भारत के निवेश के बारे में श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत विश्व की डिजिटल रूप से सक्षम सबसे बड़ी विद्युत प्रणालियों में से एक की नींव रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में ये परिवर्तन बड़े पैमाने पर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य के साथ साथ हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि देखने को मिली। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 570 अंक की उछाल के साथ 77,561 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि के साथ 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है।
2: मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।

संध्या 6:45 पर हम आपको सुनवाएंगे आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत बनाम बांग्लादेश के मध्य ओल्ड ट्रेफर्ड मैनचेस्टर से आंखों देखा हाल। मैच का आंखों देखा हाल आप मैच की समाप्ति तक सुन सकेंगे। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कंट्री वाइड। कार्यक्रम इनसाइट का समय होगा रात्रि 9:45। इन दोनों ही कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे रासलीला बूझत शाम कौन तुम गोरी। आलेख हरिबाबू कौशिक का होगा, प्रस्तुति नरेश मल्होत्रा की होगी।

रात्रि 10:30 पर उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे ठुमरी गायन पंडित भीमसेन जोशी से।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 1:15 पर महिलाओं का कार्यक्रम होगा वनिता लोक। इसमें पहनावा के अंतर्गत वार्ता प्रसारित की जाएगी, ऑफिस में महिलाओं का कैसा हो पहनावा। वार्ताकार होंगी आरती सेठ। अपराह्न 2:30 पर आप सुनेंगे NCERTM CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

अपराह्न 4 बजे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। संध्या 5:30 पर युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी। इसमें मार्गदर्शन क्रम में भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी। कंपनी सचिव के क्षेत्र में करियर, वार्ताकार होंगे अमर सेठ।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 6:15 पर। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता खेत बचाओ अभियान क्रम में प्राकृतिक खेती एवं संतुलित उर्वरक प्रबंधन के विषय पर। वार्ताकार होंगे डॉक्टर विजय वीर सिंह, डॉक्टर राम स्वरूप जाट, भेंट करता होंगे सत्यव्रत सिंह।

0: संध्या 7:05 पर साहित्यिक कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे देश समारोह क्रम में जगन्नाथपुरी के विषय पर जानकारी। वार्ताकार होंगी नेहा शर्मा। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरी उड़ान।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देशगान, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस, हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
5: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
6: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
5: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
6: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
5: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
6: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: अब बहने सुनेंगे।

कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ फरमाइशें हैं। कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ फरमाइशें हैं, दो पल की जिंदगी में अनगिनत आजमाइशें हैं। नमस्कार बहनों, मैं हूं आज आपके साथ आशु रावत, लेकर आपका अपना कार्यक्रम वनिता लोक, जिसे आप सुन रही हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। बहनों, आज के समय में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाओं ने अपना बोलबाला न रख रखा हो। अभी अगर हम 2 दिन पहले की ही बात लें तो हमारी राष्ट्रपति की तरफ से ऐसे बहुत से पद्म पुरस्कारों का वितरण किया गया, और उन पुरस्कारों में बड़े बड़े घरों की महिलाएं व्यक्ति तो थे ही शामिल, लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे घरों की भी महिलाएं थीं जो न तो ज़्यादा आर्थिक तौर पर समृद्ध थी, ना ही मजबूत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं और इसी के लिए उन्हें पद्म पुरस्कार भी वितरण किए गए। इसके अलावा फिर चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षा हो या कोई भी और क्षेत्र, महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। लेकिन इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि महिलाओं को उनके बारे में पता ही नहीं है कि वो किस तरह से उन अधिकारों का प्रयोग करके अपने लिए लड़ाई लड़ सकती हैं या अपने आप को आर्थिक तौर पर मजबूत बना सकती हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसे बहुत से उनके अधिकार हैं। खासकर अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की, तो वो ऐसी हैं कि उन्हें बहुत सारी बातों की जानकारी ही नहीं है, बहुत सारी बातों से वो अनभिज्ञ होती हैं कि किस तरह से अपनी ज़रूरत पड़ने पर वो उन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने लिए अपने जीवन को सरल बना सकें। क्योंकि महिलाओं के अधिकार जो होते हैं बहनों, और उनके प्रति उनकी जागरूकता, अगर बहुत सी जगहों पर ऐसा भी देखा जाता है, महिलाओं के साथ ऐसा भी होता है कि उन्हें पता है कि हम इस चीज़ के लिए ये सब कर सकते हैं, महिलाओं के लिए ये अधिकार उनको प्राप्त हैं कानूनी तौर पर, लेकिन उनके प्रति जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनके प्रति जागरूकता ही महिलाओं को लैंगिक समानता और एक सशक्त समाज की नींव रखने में मदद कर सकता है। कानूनी और संवैधानिक अधिकारों की जानकारी और उनके प्रति महिलाओं का जागरूक होना बहुत सी बातों में उनकी जो उनके प्रति जो गलत चीज़ें होती हैं उनको रोक सकता है, जैसे उनके शोषण को रोक सकता है, दूसरा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में ये बहुत मदद कर सकता है। और अब बात आती है बहनों के अधिकार, वो सारे अधिकार हैं क्या? तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अधिकार हैं, ऐसे बहुत सारे उनके हक हैं, जिनमें से एक है समानता का अधिकार, जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समान कानूनी समानता और सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। यानी कि अगर उनके साथ कहीं भी पुरुषों की अपेक्षा कुछ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो वो इसमें कानूनी मदद ले सकती हैं। अगर शिक्षा के क्षेत्र में जाएं तो शिक्षा और विकास का अधिकार उन्हें प्राप्त है, जिससे कि वो अपने जीवन को आर्थिक तौर पर तो मजबूत बना ही सकती हैं, शिक्षा के माध्यम से समाज में भी एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकती हैं। और एक बात आती है बहनों, समान वेतन का अधिकार, क्योंकि बहुत सी जगहों पर, बहुत सी संस्थाओं में ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता है, जबकि काम पूरा लिया जाता है जितना पुरुषों से। तो कार्यस्थल पर बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के समान वेतन पाने का भी कानूनी अधिकार महिलाओं के पास है। इसके अलावा संपत्ति का अधिकार, कार्यस्थल पर सुरक्षा का अधिकार आदि कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए कभी कभी हमें लगता है कि महिलाओं को बड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती सी करनी पड़ती है कि इसको हम करें, ये हमारे लिए होना चाहिए, जबकि ये उनको पहले से ही कानून की तरफ से प्राप्त हैं कि जिनमें उन्हें कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि जो उन्हें लगे कि हमारे संग ये हो नहीं रहा, हमें ज़रूरत है लेकिन फिर भी हमारे लिए नहीं हो रहा है, ये उन्हें पहले से ही प्राप्त होते हैं। और इन सब के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इससे होता क्या है कि कोई भी महिला बहुत सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं बहनों, उनसे बच जाती हैं, जैसे शोषण का शिकार होना, अगर उनके संग कोई गलत चीज़, गलत काम, अगर कहीं कुछ गलत एक्टिविटी हो रही है तो वो इन सब चीज़ों की जानकारी के होने के साथ उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं।

अगर शिक्षित हैं तो शिक्षा उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूती तो प्रदान करती ही है, जिससे कि वो समाज में अपनी मजबूती से राय रख सकें। साथ ही अगर शिक्षित हैं तो इन अधिकारों के प्रति भी जागरूक रहेंगी तो अपने लिए अपने जीवन को सहज बना पाएंगी। तो बहनों, ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत से अधिकार हैं जिनकी जानकारी के माध्यम से महिलाएं अपने आप को सशक्त बना सकती हैं, उनके लिए कानूनी तौर पर सहायता प्राप्त कर सकती हैं। और आज के समय में अगर बात करें तो उन्हें जागरूक करने के लिए बहुत से माध्यम भी अपनाए जा रहे हैं, जैसे कानूनी साक्षरता अभियान, जिसमें विभिन्न सरकारी संस्थाएं सेमिनार के जरिए, शिविर आदि के माध्यम से उनको जागरूक कर रही हैं। जैसे कि हम देखते ही हैं, स्कूल्स आदि में बहुत सी सरकारी जो संस्थाएं होती हैं वो बच्चियों को आकर, जैसे कि अगर बच्चियों का कोई स्कूल है वहां आकर उन्हें आत्मरक्षा के गुण सिखाते हैं और भी अन्य बातें उनको समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं। इसके अलावा डिजिटल और सामुदायिक मंच के जरिए भी महिलाओं में जागरूकता लाई जा रही है। तो ऐसे और एक और बात बहनों जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके लिए ऐसे बहुत हेल्पलाइन नंबर भी सरकार की तरफ से दिए गए हैं, जिनको कि वो प्रयोग करके संकट के समय, किसी भी परेशानी के समय उनका इस्तेमाल करके बचने में मदद कर सकती हैं। तो इस तरह की जानकारियां हैं, कुछ इस तरह के कुछ अधिकार हैं कि अगर हम उनके प्रति जागरूक रहें तो अपने जीवन को सरल और सहज बना सकते हैं।

बहनों, जब बात महिलाओं के अधिकारों की होती है तो ऐसा भी नहीं है कि सारी चीज़ें, सारी बातें, सारे काम अधिकारों से ही बन जाएं, क्योंकि जब तक कोई भी महिला आर्थिक तौर पर मजबूत ना हो तो ये सारी सिर्फ बातें ही लगती हैं। और आर्थिक तौर पर मजबूती होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक तौर पर ठीक है, समृद्ध है, तभी वो अपने हक के लिए लड़ सकता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बहनों, बहुत सी योजनाएं हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जिससे कि महिलाएं आर्थिक तौर पर समृद्ध हो सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। और ये योजनाएं महिलाओं के उत्थान, सशक्तिकरण और वित्तीय सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ओर से चलाई जा रही हैं। इसमें बचत, स्वरोजगार, उच्च शिक्षा और मातृत्व लाभ जैसी बहुत सारी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की, इसमें क्या होता है कि इसमें महिलाएं खुद का बिजनेस शुरू कर सकती हैं, और अगर उनका कोई बिजनेस है, थोड़ा छोटा मोटा काम करती हैं वो, तो उसको विस्तार देने के लिए 10 से 20 लाख तक का लोन आसान किश्तों पर दिया जा सकता है। इसके अलावा महिला समृद्धि योजना है, जिसमें महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर महीने कुछ पेंशन राज्य सरकारों की ओर से दी जाती है, यानी कि उनके खाते में मासिक पेंशन हर महीने डाली जाती है। इसके अलावा बहनों, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें कि गर्भवती महिलाओं के जो पहले बच्चे अगर जन्म लेते हैं और वो जीवित हैं, तो उनके खर्चे के लिए, उनके सारे कामों के लिए 5,000 रुपये सरकारी मदद की जाती है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना हुई, या मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हुई, सखी हुई, ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनके माध्यम से छोटी छोटी बच्चियों को, यानी कि छोटी उम्र में ही बच्चियों के प्रति उनको खुलवाकर, उन योजनाओं का लाभ लेकर उनके बालिग होने तक उन पे आत्मनिर्भरता उन पे रहा जा सकता है, समृद्धि, क्योंकि उन पे जब हम छोटी बच्चियों पर ये इन योजनाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजनाएं हैं, इसमें छोटी बच्चियों के लिए शुरू से ही कुछ पैसे डाल दिए जाते हैं उस योजना के तहत, और जब तक वो बड़ी होती हैं उस योजना का लाभ अच्छे से लिया जा सकता है, जिससे कि आगे बड़े होने पर उनको आर्थिक मजबूती दी जा सके, उनको थोड़ा शक्तिशाली बनाया जा सके आर्थिक तौर पर और साथ ही मानसिक तौर पर भी। तो इस तरह की कुछ योजनाएं हैं बहनों, जिनका के लाभ उठाकर कोई भी महिला मानसिक तौर पर तो, आर्थिक तौर पर तो समृद्ध हो ही सकती है, और जब आर्थिक तौर पर होगी तो वो मानसिक तौर पर भी मजबूत बनी रह सकती है। तो ज़रूरत पड़ने पर इन सभी योजनाओं से जुड़िए और इनके प्रति जागरूक रहिए।

0: जब हम बाहर काम करते हैं, घर में तो करते ही हैं, खैर बाहर जब हम जाते हैं तो बहुत सी तो ऐसी संस्थाएं होती हैं जहां पर एक ड्रेस कोड होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह भी होती हैं, ऐसे कार्यस्थल भी होते हैं जहां कोई ड्रेस कोड नहीं होता। वहां पर महिलाओं का यानी कि हमारी बहनों का कैसा पहनावा हो, किस तरह से उनका रहन-सहन हो, वो बातें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि सुबह उठ के ही हमें काम के साथ, घर के काम के साथ साथ ये भी लगता है कि ऑफिस जाना है या अपने काम पर जाना है तो क्या पहन कर जाएं। और जल्दबाजी में ऐसा होता है अक्सर कि जो भी मिला उसी को ऐसे ही पहन लिया, प्रेस किया तो क्रियन किया, नहीं तो ऐसे ही डाल के चल दिए। तो ऑफिस में या आपके काम के स्थल पर आपका पहनावा कैसा हो, कैसे आपका रहन-सहन तौर तरीका हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज ऐसी ही एक वार्ता हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पहनावा वार्ता के अंतर्गत, ऑफिस में कैसा हो महिलाओं का पहनावा, जिसके बारे में जानकारी दे रही हैं आरती सेठ।
1: बहनों, आपका पहनावा आपके व्यक्तित्व का दर्पण होता है। आपके व्यक्तित्व की पहली छाप आपके पहनावे से ही प्रकट होती है। आप कैसे परिधान पहनती हैं तथा उनको पहनने का सलीका कैसा है, इसी से आपके व्यक्तित्व की झलक दिखाई देती है। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा परिधान समय और परिस्थितियों के अनुसार हो। आपका पहनावा कैसा हो, इस बात पर निर्णय करने से पूर्व कई चीजों पर ध्यान देना होता है। जैसे यह कि आप कहाँ जा रही हैं। यदि आप कॉलेज जा रही हैं, तो आपका पहनावा अलग तरह का होगा। यदि किसी पार्टी में जा रही हैं, तो पहनावा दूसरी तरह का होगा। यदि आप ऑफिस जा रही हैं, तो पहनावा कुछ और ही होगा। बहनों, आज हम इस विषय

पर चर्चा करेंगे कि ऑफिस जाते समय आपका परिधान कैसा हो। ऑफिस हेतु पहनावा निर्धारित करने से पूर्व हमें यह ध्यान देना होगा कि आपके ऑफिस का कोई ड्रेस कोड तो नहीं है। यदि ऐसा है तो आपके पहनावे का चुनाव ड्रेस कोड के अनुसार ही होगा। जिस ऑफिस में कोई ड्रेस कोड नहीं है वहां पर आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। चलिए जानते हैं कि भारतीय परिवेश में महिलाओं को ऑफिस में किस तरह के परिधान पहनने चाहिए। बहनों, आज हमारे समाज में फैशन का बदलता दौर है। यह क्रांति चुपचाप हो रही है। कामकाजी महिलाएं न सिर्फ नौकरी में पीछे से आगे की ओर बढ़ रही हैं, तथा साथ ही उनका पहनावा भी कुछ ऐसे ही बदल रहा है। उनके ऑफिस ड्रेस का चुनाव अब भारतीय परिधान से बिजनेस सूट, शर्ट, स्कर्ट और ट्राउजर में बदल रहा है। ग्लोबल लेवल पर फैशन हर 10 साल में बदलता है, लेकिन भारत में यह ट्रेंड 20 साल में दिखता है। भारतीय फैशन के ट्रेंड में बदलाव सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात को भी दिखाता है। बहनों, कपड़े पहनने का आपका सलीका दूसरों को इस बात का अंदाजा लगाने देता है कि आपकी जिंदगी में आपका कितना अनुशासन है। अलग अलग चीजों को लेकर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सलीके से कपड़े पहनने का तरीका आपको कई सारी समस्याओं से भी दूर रखता है। ऑफिस परिधान में कपड़ों की फिटिंग की जब हम बात करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जरूरत से अधिक तंग नहीं हो, क्योंकि ऐसे में आपके रक्त प्रभाव की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है और आपको कमर दर्द और अन्य कई तरह के दर्द से गुजरना पड़ सकता है। और तंग कपड़े आपकी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या को न्योता देते हैं। इसके अलावा कई बार ज्यादा तंग कपड़े देखने में शालीन नहीं लगते। बहनों, अधिक ढीले कपड़े भी कामकाजी महिलाओं के लिए अच्छे नहीं लगते। कपड़ों की इतनी फिटिंग होना चाहिए कि आप उसमें अपने हाथ और अन्य अंगों को आराम से संचालित कर सकती हो। मौसम के अनुसार कपड़ों का चयन करें और रंगों का चयन भी सावधानी से करें, क्योंकि गर्मी में हल्के रंगों के कपड़े और सर्दी में गहरे रंगों के कपड़े आप पर अधिक शोभा देते हैं। यह सत्य है, बरसात के मौसम में बदन से चिपकने वाले कपड़ों का चयन नहीं करें और ना ही ऐसे कपड़े पहने जो अधिक पतले और झिन्ने हों। तो बहनों, वस्त्रों का चुनाव करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपका परिधान देखने में सभ्य और शालीन प्रतीत हो। महिलाओं के लिए ऑफिस परिधान ऐसा हो कि कपड़ों के रंग के अनुसार आप पर्स, चप्पल या सैंडल का चुनाव कर सकती हैं। और ध्यान रखें, आपके कपड़ों में कमीज और ब्लाउज के गले अधिक नीचे तक नहीं होने चाहिए, इससे आपकी शालीनता पर विपरीत असर पड़ता है। तो बहनों, जब भी आपको खाली समय हो अथवा छुट्टी के दिन, आप अपनी अलमारी और अपने हफ्ते भर के कपड़ों को सही से आयरन करके अच्छे से सहेज दें, ताकि पूरे हफ्ते आपको अधिक सोचना नहीं पड़े। साड़ी पहनते समय भी आप अपने पल्लू को सही से पिन कर सकती हैं, ताकि इधर उधर आते जाते समय आपको बार बार काम से अधिक पल्लू पर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़े। आप ऑफिस जाते समय हल्का और बेहतरीन तरीके से मेकअप कर सकती हैं, जो आपके व्यक्तित्व में निखार ले आएगा। परंतु ध्यान रखें, आप ज्यादा गहरा मेकअप ना करें, जिससे कहीं ऐसा ना हो आप पूरे ऑफिस में सबकी नजरों का केंद्र बिंदु बन जाएं। वैसे जब तक लड़कियां अविवाहित होती हैं, वो कुछ भी पहन सकती हैं, क्योंकि उन्हें कपड़ों को लेकर कुछ भी अधिक नहीं सोचना पड़ता है। वो अपनी इच्छा अनुसार सलवार कमीज अथवा जीन्स कुर्ती अथवा और अन्य कोई परिधान पहन सकती हैं। परंतु परिधान का चुनाव करते समय शालीनता का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। लेकिन शादी हो जाने के बाद जिस तरह के परिवार में वो जाती है, उनके वहाँ के माहौल के अनुसार कपड़ों के चयन का तरीका भी बदल जाता है। जैसे पंजाबी परिवार में सलवार कमीज सबसे अधिक प्रचलित है, न केवल गांवों में भी अपितु शहरों में भी वो साड़ी से कहीं अधिक प्राथमिकता सलवार कमीज को देते हैं, क्योंकि एक तो काम करते वक्त साड़ी की अपेक्षा कहीं अधिक सहज महसूस होता है। ऑफिस जाने वाली
कामकाजी महिलाओं के लिए सबसे उपयुक्त

0: यही परिधान हो सकता है। और अगर आप शादी के बाद नौकरी करती हैं तो साड़ी भी एक अच्छा विकल्प है। ऑफिस का वातावरण कैसा है, वहाँ पहनावे को लेकर कुछ खास सीमितताएं हैं अथवा नहीं, इस पर भी ऑफिस जाने के लिए किस तरह का परिधान है यह निर्भर करता है। बहनों, कुछ लोग मानते हैं कि महंगे कपड़े अच्छा दिखने के लिए जरूरी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके शरीर और व्यक्तित्व के अनुसार सही फिटिंग के कपड़े आप पर महंगे कपड़ों की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक लग सकते हैं। साथ ही आप इस प्रकार के परिधान में बड़ी सादगी में दिखाई देंगी। आपका परिधान ऐसा होना चाहिए कि आपकी गरिमा बनी रहे, और ऑफिस के लिए ऐसे कपड़े पहने जिससे आपका मानसिक सुकून बना रहे। कभी कभी अलग किस्म के परिधान पहनने पर दूसरे व्यक्ति आपको अजीब निगाह से देखने लगते हैं, इससे आपको परेशानी हो सकती है। आप यह भी सुनिश्चित करें कि आपका परिधान साफ सुथरा और प्रेस किया हुआ हो तथा देखने में नया सा लगे। पुराने घिसे हुए वस्त्र आपकी गरिमा पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। आपका परिधान ऐसा होना चाहिए आप स्मार्ट दिखें, सेक्सी नहीं। आपके परिधान से आपकी अथॉरिटी और पावर दिखनी चाहिए। हमेशा याद रखें कि आपका ऑफिस फैशन या स्टाइल दिखाने की जगह नहीं है। तो बहनों, अंत में मैं आपको फिर बताना चाहूंगी कि अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने ऑफिस के परिधानों का चुनाव करेंगी तो ये सर्वदा उपयुक्त रहेगा और इससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा।
1: तो बहनों, अभी आप सुन रही थी ये पहनावा वार्ता, ऑफिस में कैसा हो महिलाओं का पहनावा। वार्ताकार थी आरती सेठ। इन दिनों बहनों मौसम का कुछ हाल ऐसा हो रहा है कि कल तो जैसे बारिश हुई खूब तेज, तो मौसम ठंडा हो गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, अच्छा लग रहा था। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज सुबह से ही खूब तेज़ धूप है, और ऐसे में क्या होता है, जो हमारी कामकाजी बहनें होती हैं उनके जब वो काम पर बाहर जाती हैं तो अगर चेहरा खुला है या उनके हाथ खुले हुए हैं तो कहीं ना कहीं चेहरे पर या उस त्वचा में पिगमेंटेशन की दिक्कत हो जाती है, टैनिंग सी हो जाती है, किसी किसी को सन बर्न हो जाता है। तो उसके लिए करना क्या है, एक छोटा सा नुस्खा है, हल्दी होती है जो हमारी सबकी किचन में पाई जाती है, हल्दी को हल्का सा भून लीजिए, एक चुटकी हल्दी, और हल्का सा भूनिए क्योंकि वो जरा सी देर में जलने भी लगती है, तो मुश्किल से 4-5 सेकंड में वो भुन जाती है। एक चुटकी हल्दी को भून कर उसमें थोड़ा सा शहद डालिए, थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डालिए और उसमें एक चम्मच दही मिला लीजिए। अगर आपको हाथों को भी मालिश करनी है तो उसके हिसाब से ये पैक बनाइए और हफ्ते में 2 बार इसको लगाइए, और फिर देखिए आपकी त्वचा कैसे ग्लो करती है, जो पिगमेंटेशन है वो धीरे धीरे कैसे दूर हो जाता है। इसके अलावा बहनों, त्वचा को डिहाइड्रेट रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, बाज़ार से बहुत सारे सीरम और जाने क्या क्या लेकर आते हैं जो काफ़ी महंगे भी होते हैं। लेकिन घर पर ही अगर आप इस पैक को बनाएं या इस वाटर को बनाएं तो आपका चेहरा तो ग्लो करेगा ही, साथ में आपकी स्किन भी डिहाइड्रेट रहेगी। जैसे कि उसमें से एक होता है राइस वाटर। राइस वाटर के लिए आप राइस को धोकर उसको 1/2 घंटे के लिए गला दीजिए, उसके बाद जब उसका पानी जो आए उसमें उसको स्प्रे बॉटल में लेकर गुलाब जल की कुछ बूंदें और कुछ बूंदें विटामिन ई की कैप्सूल की मिलाइए और फिर उसको इस्तेमाल करिए, देखिए आपकी त्वचा कैसे डिहाइड्रेट होकर ग्लो करती है। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी को चलते चलते आशु रावत का प्यार भरा नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

आशा भोसले और कुमार सानू के गाए फिल्म बलमा के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया और मैनचेस्टर में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ीं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस गया, एक बरस।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
3: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
4: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
5: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
4: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की यह बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक

0: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
1: The global south should be enabled.
2: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जेकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
3: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय

0: राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

0: 36 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है।

सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया, शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू, नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियां इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ceiet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधे का के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधे का जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी सिंह रौल, नोमेश सिंह रौल, नेहा और वान्या सिंह रौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए

0: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि, भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
1: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
0: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुईं, जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
1: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजुभाई बधे का।
0: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजुभाई बधेका जी के, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
1: गिजुभाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजुभाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
0: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: मास्टर जी।
1: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। गिजू, तुम सुनाओ।
2: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
1: वोशिश मैं नहीं जानता, खड़े होकर सुनाओ।
2: जी जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
1: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
2: जी जी जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
1: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ सामने।
2: जी।
1: कान खोल कर सुन लो तुम सब, यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
3: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
4: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद

0: जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
1: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा। समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
2: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
0: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
2: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
0: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
2: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
0: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा, तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
3: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
0: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
2: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
4: शिक्षक बंधुओं, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ, वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं।

0: अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
1: अपनी साहित्य कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जितेश जी नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: तो जितेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
2: जी,
1: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं।
2: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियां हैं
1: जी,
2: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
1: जी।
2: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
1: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
2: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
1: युगल और सहभागिता पद्धति
2: जी। इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
1: जी,
2: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
2: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
1: हाँ हाँ, बताइए।
2: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
1: प्रश्नोत्तरी पद्धति
2: जी। इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
1: अच्छा।
2: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
1: जी,
2: वो बहुत ही शानदार है।
1: अच्छा
2: जी।
1: तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जीतेश कुमार जी। तो जीतेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
3: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
1: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
3: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
1: गिजू भाई के अनुसार,
0: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
1: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।

0: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। अपराह्न 4 बजे आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अपराह्न के 4 बजे हैं। हमारी ये विशेष सभा अब आरंभ होती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम शुरू हो गया है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स हमेशा की तरह से आज हमारे खास मेहमान एक सोल्जर जिनका नाम है कल वरुण वाजपेयी VSM। देश के कुछ बेहद टफ और सेंसिटिव रीजन्स में सर्व कर चुके हैं जिसमें कश्मीर घाटी से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर्स शामिल हैं। इसके अलावा 3 नए सैनिक स्कूल्स खड़े करना आसान काम नहीं होता। और भी कई शानदार अचीवमेंट्स और कीर्तिमान स्थापित करने वाले कर्नल वरुण वाजपेयी VSM हमारे साथ हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के हैं स्पेशल गेस्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम टू द शो।
1: नमस्कार,
0: बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस शो में। और संदेश टू सोल्जर्स हमारा प्रोग्राम है जो डेडिकेटेड है हमारे सोल्जर्स को, हमारे सैनिकों को। तो आपने तो सैनिक स्कूल एक या दो नहीं तीन तीन एस्टैब्लिश किए हैं, तो जाहिर है हमारी उस पर बात होगी। लेकिन सर हम शुरुआत करेंगे अपने आज के शो की, और हम आपके बारे में जो हमने थोड़ा सा एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है, ज्यादा हम आपसे ही बातचीत में जानेंगे कि शुरुआत आपकी किस तरह से हुई और आपने जो आर्मी ज्वाइन की इंडियन आर्मी, तो कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली या फैमिली बैकग्राउंड किस तरह से रहा?
1: जी, मैं मूलतः लखनऊ का रहने वाला हूँ एंड आई कम फ्रॉम अ एकेडमिकली ओरिएंटेड फैमिली जिसमें कि

0: मूलतः ज्यादातर लोग एकेडमिक्स और उससे जुड़े हुए अलाइड एस्पेक्ट्स में उन्होंने काम
1: अच्छा
0: किया पूरा का पूरा. तो आई एम द एल्डेस्ट अमंग्स थ्री सन्स ऑफ माई पेरेंट्स.
1: जी
0: तो घर में सभी लोगों का बेसिकली अकेडमी की तरफ रुझान ज्यादा था. तो टू सेलेक्ट अ प्रोफेशन लाइक फोर्सेस इट वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट एंड ऑकवर्ड वन फॉर एवरीबडी कि
1: ओके
0: भाई ये कैसे. बट हाँ, मेरा शुरुआत से ही मन था, आई वॉज एनसीसी कैडेट, तो बड़ा मन था कि हम फौज ही ज्वाइन करें. तो इसी से प्रेरणा लेते हुए देन आई क्लियर फॉर आफ्टर डूइंग माई ग्रेजुएशन क्लियर फॉर कमांड डिफेंस सर्विसेज और
1: अच्छा
0: फिर IMA ज्वाइन किया. ज्वाइन करने के बाद में आई गॉट कमीशन इन द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री फ्रॉम इंडियन मिलिट्री अकेडमी. तो हमारी रेजिमेंट जो है एक बड़ी यूनिक रेजिमेंट है जिसमें कि सारे के सारे ट्रूप्स जितने भी हैं
1: जी
0: वो सारे के सारे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ही आते हैं. तो वी हैव
1: अच्छा
0: सब्जेक्ट्स फ्रॉम जम्मू से लेकर वैली तक पूरा का. हाईलैंडर्स भी हैं जैसे कि द्रास में कारगिल से लेकर इस साइड उरी और पुंछ तक का पूरा पूरा.
1: ओके मतलब पूरा वो
0: हाँ,
1: एक
0: तो
1: सारा
0: हमारे हमारा
1: रीजन
0: ट्रूप्स का जो कॉम्पोजिशन है वो
1: जी
0: कंप्लीटली JNK का ही है. तो ये
1: ओके
0: अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज है. यही हमारी ऑपरेशनल एज भी हमको मिलती है. इसी की वजह से हम ऑपरेशनली इतना अच्छा कर भी पाते हैं JNK में,
1: ओके
0: क्योंकि आप उन लोगों के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं जिनको जो कि उस टोपोग्राफी को बहुत अच्छे से जानते भी हैं. तो इस तरह करते करते फौज में काफी टाइम कटा है. देन आई वॉज गिवन द टास्क टू सेट अप न्यू सैनिक स्कूल्स. तो वहां से
1: जी,
0: एक अकेडमी के लिए ओरिएंटेड जर्नी भी आगे स्टार्ट हुई.
1: यानी कि जो एकेडमी का आपका जो फैमिली का रहा, तो वापस वो
0: वो
1: आप
0: वापस घूम फिर के
1: वापस घूम फिर करके आया।
0: वापस.
1: लेकिन
0: जी
1: सर, जिस तरह से आपकी शुरुआत हुई, जो आपने सर्व किया, जो सेंसिटिव एरियाज कहा जाए, बहुत ही टफ, मतलब उनको फ्रंटियर्स कहा जाता है कि
0: जी
1: जम्मू
0: जी
1: कश्मीर से लेकर के अगर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें, तो वो बहुत ही टफ रहा होगा, बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा। उसके बाद के तो टास्क बाद में आए, वो
0: बिल्कुल
1: कैसा था?
0: बिल्कुल. मिलिट्री के अंदर में इन्फेंट्री इज जनरली द कटिंग एज, जहाँ पे जिसको किसके लिए कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं माना जाता है.
1: अच्छा
0: तो इन्फेंट्री को सर्व भी करना पड़ता है पहाड़ों पे. तो जहाँ जहाँ पे यूनिट रही, जहाँ जहाँ पे हम लोग डिप्लॉय रहे, वहाँ वहाँ पे एंटी मिलिटेंसी और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में जो भी योगदान दे पाए हम लोग वो देते रहे.
1: अच्छा
0: जी, तो डिफिकल्ट, इट इज इंडीड डिफिकल्ट, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक आप कट ऑफ रहते हैं चीज़ों से.
1: अच्छा
0: विंटर जो वैकेटेड पोस्ट होती हैं वहाँ, जहाँ से 5-5, 6-6 महीने भी आपको लग जाते हैं दोबारा वापस नीचे उतरने में. तो ऑपरेशनली इट्स अ डिफिकल्ट एनीवर. यस,
1: ओके तो उसमें सर कोई ऐसा इंसिडेंट रहा होगा जो आज भी आपके साथ जुड़ा हो, आपको याद रहा हो, या आपको सताता हो, या आपको याद आता हो?
0: जी, देयर नंबर ऑफ सच इंस्टेंसेस. एक बार ऐसा था कि पोस्ट पे काफी टाइम रहने के बाद जब बर्फ बहुत ज्यादा पड़ जाती है
1: जी
0: तो आपकी आंखें और आपका दिमाग अट्यून्ड हो जाता है टू सी, बिकॉज आप ऑपरेशन में भी उसमें जा रहे हैं, एम्बुश में भी उसी बर्फ में जा रहे
1: सिचुएशन
0: हैं.
1: में
0: तो
1: बिल्कुल
0: एवरीथिंग इज वाइट इन फ्रंट ऑफ यू, वेयरिंग वाइट क्लोथ, योर इग्लू इज वाइट, योर द आइस इन फ्रंट ऑफ यू इज वाइट. तो ग्रीनरी एक बहुत किसी भी इंसान के जीवन का बड़ा एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है.
1: बिल्कुल
0: तो पोस्ट से नीचे उतर के आने के बाद में नॉर्मल सब्जी खाना, लौकी को देखना, या चलती हुई बकरी और जानवर को देखना, ये सब चीजें बड़ी अम्यूजिंग से लगने लगती हैं कुछ टाइम के लिए. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम डाउन एंड टेक अ ब्रेक ऑल्सो फॉर अ वाइल. वो बड़ा आवश्यक हो जाता है. तो इस तरह के दुनिया भर के तमाम इंसिडेंसेस हैं.
1: जी
0: ऑपरेशनली मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज वो चीज एक थोड़ा सा
1: अलग
0: उसकी अलग
1: लेवल
0: सैंक्टिटी होती है. बट हाँ,
1: जी
0: फॉर एनी इंडिविजुअल इट इज अ यूनिक एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ एंड एक्सपीरियंस, बड़ा ही
1: ओके
0: अलग तरीके का.
1: तो आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी, VSM, विशिष्ट सेवा मेडल माने थे। और आप बात करेंगे आगे कि किस किस तरीके के फेजेस आए उनकी लाइफ में, क्या क्या चैलेंजेस सामने आए, और कब उनको VSM से नवाजा गया। तो आप बने रहे हमारे साथ हमारे प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर। आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी दुनिया भर में, और आप हमें SMS, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, और साथ ही आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं। हमारे आज के मेहमान कर्नल वरुण वाजपेयी VSM से, नंबर है दिल्ली का कोड 011-2342-1085, 2342-1085।

0: 102.6 ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ। और आज के हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण बाजपेयी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित। सर, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में।
1: जी धन्यवाद, थैंक यू।
0: सर, हमने बात करी कि जैसे आपने शुरुआत करी और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका जो है वो शुरुआती एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपने कहा कि कहीं भी कोई फैमिली में भी दूर दूर तक कोई आर्मी से जुड़ा हुआ नहीं था, तो ये काफ़ी पहला ही चैलेंज रहा आपके लिए। फिर उसके बाद आपने 3 नए सैनिक स्कूल इस्टेब्लिश करने में बेहद ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया।
1: जी,
0: बल्कि मिजोरम का सैनिक स्कूल तो आप सिंगल हैंडेडली ही खड़ा किया।
1: जी,
0: क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और कैसे आपने उनको टैकल करा और उसको कामयाब बनाया?
1: जी, मेरी पोस्टिंग सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार में एज अ रजिस्ट्रार आई थी, तो वहाँ पर तकरीबन 1.5 साल रहने के बाद में मुझे ये टास्क दिया गया कि मिजोरम में कैपिटल आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ ऑन द इंडो बर्मा बॉर्डर के पास में एक छोटा सा जिला है, इसका एक छोटा सा हैमलेट है बेसिकली, चिंगचिप करके, वहाँ पे आपको सैनिक स्कूल स्टैब्लिश करना है। तो फॉर मी, मेरे लिए बड़ा ही यूनिक सा एक्सपीरियंस रहा कि इतने ही सेक्लूडेड से एरिया में जाके, बट हाँ, गवर्नमेंट का विजन था कि भाई राष्ट्रीय भावना और ये अवसर सबको दिए जाएं, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, कितना भी फार फ्लंग क्यों ना हो। तो इस उद्देश्य के साथ पे 2017 में मैं मिजोरम पहुंचा। वहाँ पे चिंगचिप जगह है जो कि सरचिप डिस्ट्रिक्ट के अंदर में छोटा सा एक एरिया है, वहाँ पे हमने सैनिक स्कूल को स्टैब्लिश करने का बेड़ा उठाया। और तकरीबन साहब 7 महीने लगे हम लोग को, दिसंबर से लेकर अगले साल मई जून तक का, जिसमें बिल्डिंग भी बनवाई गई।
0: अच्छा।
1: जिन लोगों ने अपना लैंड डोनेट किया था उनको भी गवर्नमेंट ने इनकम पास किया साथ में, उन सबको जॉब भी दिए वहाँ पे।
0: अच्छा।
1: तो एक बार एक तरीके से स्टेक होल्डर्स को बढ़ा के हमने सबको साथ में लेके काम किया।
0: साथ में लेकर
1: शुरुआत में बड़ी दिक्कतें भी आई, चर्च को एक कुछ अपने अप्रिहेंशन थे, बिकॉज दैट इज अ प्राइमरली अ क्रिश्चियन

0: बिलीव स्टेट। तो चर्च से हमको मैनेज करने में कभी कभी दिक्कतें भी आई, बट बाद में जब उनको लगा कि नहीं यहाँ पे इनका पर्पस तो ये है कि भाई इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ के बच्चों को आगे फौज में अवसर बनने का, फौज ज्वाइन करने का अवसर मिलेगा, तो देन इट वॉज अ गुडविल विच वॉज स्टैब्लिश। फिर चर्च ने ही हमारा बड़ा हेल्प भी करी कि बाद में स्कूल का इनॉग्रेशन करने के टाइम पे आप मतलब उन्हीं के बेंचेस उन्हीं के वो टेबल तक आई, बट इट वॉज अ ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस अपने आप में। और सबसे अच्छी बात थी, सबसे बड़ा योगदान शायद चिमचक का ये रहा है कि स्कूल से शुरुआत हुई थी इंडियन आर्मी के अंदर में गर्ल स्टूडेंट्स को लेने की, जो कि बाद में एनडीए तक था। तो 2018 में हमारा पहला बैच आया था जिसमें लड़कियों को भी हमने शामिल किया था।
1: अच्छा।
0: इस तरीके से अभी सभी सैनिक स्कूलों में गर्ल कैडेट्स भी हैं और एनडीए में भी लड़कियां पास आउट हो रही हैं, आई में भी जा रही है।
1: अच्छा।
0: ये अपने आप में बड़ा सुखद और बहुत ही एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस था।
1: बिल्कुल, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे आपने बताया कि जो चैलेंजेस आपको सामने करना पड़े वो, और पहला स्कूल खड़ा करने में, तो क्या आगे जो आपने बाद में किए उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, क्या वो चैलेंजेस फिर से वही सब दोबारा से सामना करना पड़ा या आसान हो गया था?
0: नहीं, एक बार चीजों को कर लेने के बाद थोड़ा तो मतलब मनोबल बढ़ जाता है, चीजें आसान भी हो जाती है। अरुणाचल वॉज ओके, झुंझुनू हैड इट्स ओन चैलेंजेस, बिकॉज झुंझुनू क्या है, झुंझुनू एक ऐसा जिला है देश का जहां पे हर घर में फौजी है बेसिकली।
1: अच्छा।
0: तो अगर हम निकालें कि ऑन एवरेज दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फौजीज, इस जिले में सबसे ज्यादा फौजीज हैं पूरे भारत के अंदर में। तो यहाँ पे बच्चों को उन क्लास छठे में जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल अपनी मदर के फोल्ड से निकल के बाहर आते हैं ना, कि घर में तो उनको हाथ से भी खाना खिला दिया जाता है कभी कभी। ऐसे बच्चों को स्कूल में लाके उनको सेटल करना, उनको बताना कि बच्चों कैसे उठना है, कैसे बिस्तर लगाना है, कैसे अपने शूज को पॉलिश करना है, कैसे अपने ड्रेस को लगाना है, कैसे यू हैव टू स्टे इन दैट स्टेट ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन आल्सो, कैसे कैसे अपना अपनी दिनचर्या को आगे लेके आना है, पढ़ना कैसे,
1: पूरा लाइफ स्टाइल।
0: तो सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी स्कूल को स्टैब्लिश करने में इस टाइप के ये होता है कि जब आप जाते हैं एज अ फाउंडर प्रिंसिपल, तो आपके साथ में आपके कुछ लोग ही होते हैं जो कि अलग अलग कॉलेज से पूल होकर आए होते हैं। फिर ग्रेजुअली धीमे धीमे भर्तियों के माध्यम से टीचरों को लिया जाता है, कुछ स्टाफ को लिया जाता है, उसके बाद बच्चे आते हैं। तो इतने कम स्टाफ के साथ में उनका मैस चलाना, ट्रेनिंग करवाना, उनका पूरा मेडिसिन सबका इंतजाम भी करवाना, डे टू डे चैलेंजेस आर, मतलब एक फाउंडर प्रिंसिपल के तरीके से मेरे पास मेरा दिन शुरू होता था सुबह 6 बजे एंड आई टू वाइंड अप ओनली मतलब जब बच्चे सो जाते थे जाके। तो झुंझुनू वॉज इटसेल्फ अपने आप में अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात है कि इन बच्चों में इतना जोश था साहब कि झुंझुनू में इन्होंने मतलब उस सैनिक स्कूल को एक ओएसएस में कन्वर्ट कर दिया। इट इज अ ग्रीन कैंपस नाउ, इतना सुंदर है कि अगर आप इंटरनेट से भी देखेंगे तो आपको फोटोग्राफ देखिए या मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।
1: तो जबकि उसमें बताया जाता है कि झुंझुनू अपने आप में बहुत ही गर्म एक रीजन होता है, बड़ा गर्म इलाका है, तो उसमें इस तरीके से इसको बना पाना, तो ये मतलब आपकी अपनी कोशिश रही, इसमें कितने लोगों ने साथ दिया, और जो बच्चे आपने जैसे कहा कि वो तो जाहिर है वो तो सीख रहे हैं आपके साथ, तो क्या वो भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूटर रहे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों तो बच्चे तो स्कूल का एक अहम हिस्सा बन गए थे, हम जो भी कर रहे थे बच्चों को साथ में लेके कर रहे थे। देखिए साहब,
1: तो एक बड़ी टीम हो गई,
0: एक बड़ी टीम हो गई। द एंटायर ऑब्जेक्टिव वाज वेरी सेम कि ये अच्छे इंसान बने पहले, ये अच्छे सोल्जर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर अपने आप बनेंगे बाद में।
1: बिल्कुल,
0: टू इनकल्केट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ना, वो सेंस सिखाना, वो इंग्रेन करना उनके अंदर में, दैट द बिगर एंड द लार्जर एम। एक्चुअली मैं बड़ा खुश हूं कि इसमें से कई बच्चे अभी आर्मी में ऑफिसर बन चुके हैं।
1: अच्छा।
0: कई लड़कियां बन चुकी हैं जो वहां पे गई थी। तो आई एम श्योर ये एक मूवमेंट है जो देश में बहुत दूरगामी परिणाम देखा आगे आगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो बीज आपने वो बोया वो अब आहिस्ता आहिस्ता पौधा बन के पेड़ बन रहा है और वो फल फूल रहा है, सब तरफ फैल रहा है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो सिचुएशन आपने वहां की बताई, उसमें उन बच्चों को जैसे आपने कहा कि उनके घरों से, उनके माओ की गोद से निकाल करके लाना, उनको डिसिप्लिन सिखाना, पूरा लाइफ स्टाइल बदलना, उनको एक एक चीज सिखाना, वो मैनेजमेंट जो था, वो आपकी जो टीम थी उसमें कितने लोग थे और किस तरीके से आपने उसको मतलब प्लान किया, मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किया?
0: शुरुआती दौर में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये दो लोग होते हैं, उसके साथ साथ में 5 टीचर्स लिए आते हैं, 5 टीचर्स और करीब 6-7 का और स्टाफ। तो पूरे एक बड़े से कॉलेज को मैनेज पर 25 एकड़ के आसपास के कैंपस को या 50 एकड़ के कैंपस को शुरुआत में मैनेज करने के लिए ले देके आपके पास में गिनती की यही 12-15 लोग होते हैं
1: बस।
0: यही आपकी बैकबोन होते हैं, यही आपके लेफ्ट राइट, आपके आंख कान नाक सब कुछ होते हैं। तो इन्हीं से ही सारा काम करना होता है। तो सबसे बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोटिवेशन, कि सबको मोटिवेट करके एक लार्जर एम से अलाइन करना कि हम सबका उद्देश्य देखिए साहब ये है, ये पहला बैच है, इसकी नींव अगर मजबूती से रखी जा गई तो कम से कम ये आगे चल के सस्टेन करेगा आगे जाके।
1: बिल्कुल, और ये तो मतलब हमेशा के लिए
0: हमेशा
1: एक बहुत बड़ी मिसाल भी बन गया। तो क्या कभी उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा, कभी ऐसी मुश्किलें आई जहां आ गया कि अब शायद ये हम पूरी तरीके से कामयाब शायद ना हो पाए?
0: नहीं सर, चैलेंजेस बहुत आए, बट दिमाग में ये चीज बहुत जरूरी, बहुत क्लियर थी कि ये एक टफ फेज है, पर हाँ इससे निकल के आने के बाद में स्कूल जो तैयार हुआ है ये आगे से, देखिए हम सब शायद फेड हो जाएंगे कितने कितने टाइम पे आके, पर ये संस्थान रहेगा।

0: इसकी एथॉस रहेगी, इसकी कार्यशैली रहेगी, और जो जो चीजें अभी करी गई ये शायद चलती रहेंगी आगे तक
1: हमेशा के लिए, हमेशा वो बन गया और वो हमेशा ही वहां से नए बच्चे निकल करके आते
0: जी,
1: रहेंगे।
0: जी जी
1: तो ये
0: जी
1: बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके पूरे करियर का, अगर मैं गलत नहीं कर रहा।
0: मैं बिल्कुल आप मानता हूं आपकी बात, ये सबसे सैटिस्फाइंग फेज हमारे करियर का, और क्योंकि एक ऐसी चीज थी कि आप उन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं जिनको आपको, जिनमें आपका भविष्य दिख रहा है आपका उनका, तो ये अपने आप में बहुत ही अमेजिंग फेज था करियर का।
1: सर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो आपको अनथक कड़ी मेहनत, एग्जेम्पलरी फोरसाइट, जबरदस्त फुल प्रूफ प्लानिंग, लीडरशिप और अपने कर्तव्य से बढ़कर दिए गए अटूट समर्पण के लिए, यही सब काम उसमें शामिल थे जो राष्ट्रपति द्वारा आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था, तो कैसा महसूस हुआ आपको उस वक्त, वो क्षण, वो मोमेंट्स, और यही वो आपका काम था जिस बदले आपको VSM से सम्मानित किया गया
0: जी,
1: तो वो जो मोमेंट था।
0: देखिए साहब, कभी भी किसी रिकग्निशन के लिए काम नहीं किया, काम तो अपनी सेवा भाव से, अपने दम से किया पूरा का पूरा
1: जी।
0: हाँ, बस ये था कि तीन स्कूल स्टैब्लिश करना अपने आप में एक अचीवमेंट था, जिसको हमने अचीवमेंट की तरह तो नहीं लिया, बट हाँ जिन लोगों ने, जो मेरे ऊपर से उच्च अधिकारी थे, उन्होंने उसको अचीवमेंट माना और उसके बाद में राष्ट्रपति जी से सम्मान मिला, तो अपने आप में ये बहुत ही सुखद अनुभव था। इट वॉज एक्चुअली अ ट्रेमेंडस अचीवमेंट।
1: सर ये आपके लिए अचीवमेंट था, आपके लिए एक बहुत बड़ा एक मेडल था और ऑनर भी था। आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके जो मिलने वाले थे, उनका क्या रिएक्शन था? ये एक अलग सी चीज है
0: जी,
1: बड़ा इंटरेस्टिंग रहा हो तो वो बताइए हमें।
0: मुझे याद है जिस दिन ये अवार्ड डिक्लेयर करा गया था, हमारी एक कोर्समेट ने मुझे कॉल करके बताया कि भाई तुम्हारा नाम अवार्ड की लिस्ट में है, तो अपने आप में बस सबसे सुखद अनुभव था वो वाला। पर हाँ, ये फौज में बहुत चुनिंदा लोगों को ही इस तरह से अवार्ड दिए आते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो अपने आप में ये अवार्ड दिया जाना बहुत सुखद अनुभव था और बहुत प्रोत्साहन भी मिला इस चीज से कि आगे भी अच्छे करते रहना है।
1: बिल्कुल जी। सर एक चीज यहाँ पर हमें बताइएगा कि जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और सैनिक स्कूल का जो प्रोसीजर होता है कि कैसे वो आए, एडमिशन लें, फिर आगे बढ़ने के लिए उनके ऊपर क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो थोड़ा सा बताइएगा हमारे लिसनर्स को।
0: जी देखिए, सैनिक स्कूल भारत में करीब 31 सैनिक स्कूल हैं एज ऑफ नाउ। इन सभी स्कूलों में जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है,
1: ठीक है,
0: जिसको कि NTA कंडक्ट कराता है। तो जो भी बच्चे क्लास 5 पास कर चुके हैं या 5वें में हैं
1: जी,
0: देखे ना पियर इन द एग्जामिनेशन,
1: ओके,
0: और इस एग्जाम जब कंडक्ट कराया जाता है उसमें अपनी अपनी चॉइस दी जाती है कि आप भाई आप किस स्टेट के नेटिव हैं,
1: अच्छा,
0: किस राज्य के आप हैं नेटिव, और उसके बाद में कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उस जिस राज्य में आप अप्लाई कर, अगर आप जिस राज्य के हैं उसी राज्य में अप्लाई करें तो 70% सीट्स उस राज्य से भरी आती हैं,
1: okay,
0: और 30% सीट्स अलग अलग राज्यों से भी भरी आती हैं, जिनका अलग अलग कुछ सीट नॉमिनेट होती हैं। तो ये रूल्स समय समय पर चेंज भी होते हैं, बट एज ऑफ नाउ ये चल रहा है। एंड इन स्कूल्स में एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद बच्चे को वहाँ पर दाखिला होता है, पर यह बात निश्चित है कि सैनिक स्कूल्स का जो उसमें जो ग्रूमिंग होती है, जो एक बच्चे के अंदर में एक यश डाले आते हैं
1: जी,
0: जो उसके अंदर में एक डिसिप्लिन की भावना डाली जाती है, ये जीवन भर काम आती है। तो भले ही वो फौज में जाए या ना जाए, उद्देश्य तो जाना ही है, पर अगर वो चूज करता है कि नहीं भी जाना है, हर बच्चे के अंदर में अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, चॉइस हो सकती हैं, पर एक बात तो निश्चित है कि उस बच्चे को जीवन भर कम से कम एक सही दिशा, सही तरीके से डिसिप्लिन लाइफ जीने का एक रास्ता जरूर मिल जाता है।
1: बुनियादी तौर पर वो जो रूट्स हैं उसके वो मजबूत हो जाते हैं, और वो जैसे आपने कहा कि वो डिसिप्लिन और एक लाइफस्टाइल जो है पूरा वो बहुत ही ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो सर इसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया होता है या कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या कोई और प्रोसीजर है?
0: यस यस, अगर गूगल करेंगे सैनिक स्कूल एडमिशन की वेबसाइट भी अलग है, सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट भी अलग है, और इन सभी स्कूलों के अलग अलग स्वयं की वेबसाइट भी है जिसपे की जो लोग एडमिशन चाहते हैं वो जाके जानकारी भी ले सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, एवरीबॉडी हैज द डेटा विद हिम, तो सब लोग उस पे जाके देख सकते हैं, जिसको जहां पे चूज करना है दे हैव ऑप्शन।
1: ओके, तो ये इन वेबसाइट से और सैनिक स्कूल सर्च करेंगे गूगल पर तो सारा प्रोसीजर सामने
0: जी,
1: आ जाएगा उसके थ्रू। लेकिन आपने कहा कि जो पांचवी पास आउट कर रहे होते हैं बच्चे वो
0: या जो पास आउट हो चुके हैं,
1: वो
0: 12 साल की लिमिट होती है,
1: 12 साल
0: तो 10 से 12 के बीच में ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं।
1: ओके, हमारे साथ हैं आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। आगे भी हम उनसे बातचीत रखेंगे जारी और कुछ और भी उनके पहलू पर जिंदगी के और करियर के रोशनी। आप बने रहे हमारे साथ रेनबो पर। आप हमें व्हाट्सएप करके सवाल कर सकते हैं 9868107070 पर।

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमारा स्पेशल शो संदेश टू सोल्जर्स। और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। सर, हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से आपने 3 नए सैनिक स्कूल को एस्टैब्लिश किया, कितना चैलेंजिंग था और कितने ज्यादा आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, और वही आपकी मेहनत और वही चैलेंजेस जो आपने एक्सेप्ट किए और उनको फुलफिल किया, जिसकी वजह से आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। तो हमने आपकी फीलिंग्स ही पूछी और हम फीलिंग्स हम देखना चाहेंगे। हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पर, हम देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। ये है मैसेज, जय हिंद सर जी, रजनीकांत हैं ये रघुनाथ पाटिल वार्ड 1 से। और इसके अलावा मैसेज है, हेलो सर, माई हार्टेस्ट सल्यूट टू ऑनरेबल गेस्ट टूडे एंड जय हिंद टू ऑल आर।

0: Indian Army for their selfless service towards the country. I bow my head to them myself. Anjali Do, Anjali Lodh from Kakrola, Dwarka, Sector 15, Delhi. Vande Mataram, Bharat Mata Ki Jai. Please share my message to respected sir.
1: Thank you so much.
0: तो आपका मैसेज जो है अंजलि हमारे जो गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी उन्होंने सुन लिया है और एक मैसेज और है ये शरद का मैसेज है वो गुड इवनिंग सर आपको सल्यूट कर रहे हैं शरद
1: धन्यवाद
0: तो ये तो ही बात जो हमारे मैसेजेस आए हैं आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 और कॉल कर सकते हैं दिल्ली के कोड के साथ 01123421085 सर हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम में हम जानना चाहेंगे कि आप से के पीजीआई लखनऊ का जो आपका एक एक्सपीरियंस है पीजीआई क्या है क्या होता है और आप कैसे पहुंचे क्योंकि पीजीआई लखनऊ के रजिस्ट्रार के तौर पर

0: गुड इवनिंग सर, आपको सल्यूट कर रहे हैं शरद।
1: धन्यवाद।
0: तो ये तो ही बात जो हमारे मैसेज आए हैं, आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 और कॉल कर सकते हैं दिल्ली के कोड के साथ 01123421085। सर, हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम में। हम जानना चाहेंगे कि आपसे कि पीजे लखनऊ का जो आपका एक एक्सपीरियंस है, पीजीआई क्या है, क्या होता है और आप कैसे पहुंचे, क्योंकि पीजे लखनऊ के रजिस्ट्रार के तौर पर आप मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में नए बदलाव भी ला रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: जी जी, वाइल्ड बीइंग इन सर्विस मुझे डेप्यूटेशन पे पीजीआई भेजा गया। मतलब पीजीआई में डेप्यूटेशन की ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकलती हैं जिनमें इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को का चयन होता है। तो डेप्यूटेशन के लिए 3 साल के लिए मुझे पीजीआई गया था मैं। तो वहां पे एज अ रजिस्ट्रार माय रोल वाज प्राइमरली टू द मैनेजमेंट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज, जिसमें कि जो हमारे डीएमएमसीएच एमडीएमएस के जो पाठ्यक्रम हैं, प्लस जो हमारे यहाँ 2 कॉलेजेस हैं, कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज और कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इनका प्रबंधन और प्लस डे टू डे एकेडमिक मैनेजमेंट पूरे इंस्टीट्यूट का, वो एक रजिस्ट्रार के माध्यम से किया जाता है।
0: तो आई ये बहुत ही एक अहम भी और बहुत ही मतलब टफ होता है, क्योंकि अब बिल्कुल ही एक एकेडमिक्स
1: एब्सोल्युटली कमिंग फ्रॉम अ इन्फेंट्री बैकग्राउंड एंड कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच वॉज हार्ड कोर ऑपरेशनल बैकग्राउंड से एक एकेडमिक मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन वॉज अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर। मैं तो उस प्रकार का व्यक्ति था कि मुझे हेमेटोलॉजी और हेपेटोलॉजी के बीच में ढंग से फर्क नहीं पता था, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी मेडिसिन साइंसेज और क्लिनिकल साइंसेज के बारे में।
0: तो पहले आपको खुद सीखनी पड़ी वो?
1: जी, बट हाँ, चार साल हो गए वहां पे। इन 4 सालों में द एक्सपीरियंस हैज बीन ट्रेमेंडस, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली और बहुत चीजों को कंट्रीब्यूट भी किया हम लोगों ने। सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स को हमने बढ़ा के उनकी संख्या काफी बढ़ी वहां पे। तो पहले 28 थे, अब करीब 41 हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया में क्लिनिकल सर्विसेज देने वाले इंस्टीट्यूटों में नंबर 3 पे आता है, एम्स दिल्ली और चंडीगढ़ पीजीआई के बाद में। और यूपी के करीब 26-28 करोड़ पॉपुलेशन का एक सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए यहीं पे एक अवसर मिलता है।
0: अच्छा,
1: तो ये अपने आप में बहुत ही ट्रिमेंडस अचीवमेंट रहा। अब ये रहा कि भाई लोगों को हेल्प भी करी काफी
0: जी।
1: और नए एकेडमिक कोर्सेज को, नर्सिंग कॉलेज को रीइंस्टेट करने में, उसकी जो ग्लोरी बनती है उसको वहां पे लाने में, तो उसमें काफी योगदान किया गया
0: जी। तो सर, अब जैसे आजकल के बच्चे हैं वो भी, उसके लिए क्या आप कह सकते हैं कि करियर के लिए या अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए, तो पीजीआई उसमें किस तरीके से अपना योगदान देता है, रोल प्ले करता है, तो किस किस तरह से इसका फायदा उठाया जा सकता है?
1: देखिए, पीजीआई लखनऊ में है और एक चंडीगढ़ में भी है। तो लखनऊ वाला पीजीआई दैट इज पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एंड इसमें यहाँ पे एमबीबीएस कोर्सेज नहीं होते हैं, बट एमडी और एमएस कोर्सेज होते हैं और डीएम और एमसीएच कोर्सेज होते हैं, जो कि और प्लस पीएचडी भी हैं, जो कि सुपर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं। तो इनके लिए आपको ग्रेजुएट होने के बाद में नीट पीजी और नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम में अपियर करना पड़ता है, और जो लोग एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं, जहां पे इनके अच्छे नंबर आते हैं, तो रैंक के माध्यम से उनको रिस्पेक्टिवली कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। तो ये चूज कर सकते हैं, ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री, ऑटोनोमस है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ के डिपार्टमेंट्स पुराने हैं, यहाँ की लेगेसी बहुत रिमार्केबल है, और जिस तरीके से एक संस्थान चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे एक शिक्षा की पद्धति बनाई गई है, वो बहुत यूनिक और रिमार्केबल है।
0: सर, जैसे हमने बात करी थी कि इसके जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें और उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, बदलाव लाए जा रहे हैं, तो वो किस तरीके के हैं और उनसे कितना फायदा हो रहा है अभी?
1: बहुत सारे बदलाव हैं। देखिए, आप प्राइमरी केयर होता है, फिर टर्शरी केयर, फिर ना सेकेंड प्राइमरी अच्छा। होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शर होता है, उसके बाद क्वार्टनरी केयर भी होता है। तो अब संस्थान एक नए लेवल पर जा रहा है, कुछ स्तर पर जा रहा है, जहाँ पे टर्शरी केयर के बाद में अब हम क्वार्टनरी केयर की बातें करने जा रहे हैं।
0: जहाँ अगर हम एक लेमैन के हिसाब से समझें या आम भाषा के हिसाब से, तो उसको कैसे हम इसको समझेंगे कि ये कौन कौन से आप जो ये बता रहे हैं आप
1: संस्थान में? जैसे कि टर्शरी केयर होता है, जिसको हम बोलते हैं कि सुपर स्पेशलाइज केयर होता है।
0: अच्छा।
1: कि जैसे कि आपके ट्रांसप्लांट्स हो गए, जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट सर्जरीज हो गई, ट्रीटमेंट्स हो गए, जेनेटिक ट्रीटमेंट्स हो गए, तो इनका भी एक हायर लेवल होता है, इसको हम बोलते हैं क्वार्टनरी केयर, जिसमें मल्टीपल स्पेशलिटीज को अमैलगमेट करके एक जगह पे किसी भी पेशेंट के सारे रोगों का उपचार एक साथ करने की पद्धति निकाली जाती है। तो इन चीजों को अभी हम लोग लेके आ रहे हैं वहां पे, डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, एंड वी विल टेक इट फर्दर इन अ बिग वे नाउ। सो पीजीआई इज गोइंग टू बी ऑन अ डिफरेंट पेडेस्टल ऑल टुगेदर.
0: ओके.
1: हाँ, तो प्लस यहाँ पे ये है कि जो जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे
0: जी.
1: उनको जो एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेशेंट को देखने में, डिफरेंट प्रॉब्लम को क्योर करने में ना, वो बहुत रिमार्केबल होगा
0: सर. लेकिन एक चीज यहाँ पर हम ये भी महसूस करते हैं आपसे
1: जी,
0: बातचीत करते हुए कि जो चैलेंजेस आपको सैनिक स्कूल स्टैब्लिश करने में आए होंगे
1: जी,
0: ये तो मुझे और भी टफ महसूस हो रहा है कि इसको अपग्रेड करना इतने हाईली सेंसिटिव.

0: जी
1: जो ट्रीटमेंट आपने बताया उनको और बेहतर।
0: देखिए साहब, दोनों के चैलेंजेस डिफरेंट थे। सैन स्कूल में आई वाज द लीडर एंड आई हैड ऑल द पीपल हु अंडर मी एंड आई कुड यूज देम एट माय ओन डिस्पोजल। यहाँ पे एक टीम है जो कि अलग अलग कॉम्पिटेंसीज, कैपेबिलिटीज और अलग अलग एनवायरमेंट से आती है, तो यहाँ पे एक टीम भावना को लेकर चलना, उनको सबको समन्वय के साथ लेकर चलना आगे, वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, बिकॉज बड़ा इंस्टीट्यूट है, ज्यादा लोग भी हैं, तो दोनों के अलग अलग चैलेंजेस हैं। यहाँ पे हम लखनऊ में बैठे हैं, वहां पे आप आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ थे जंगल में, एक अच्छा। तरीके से जहां पे बहुत मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी वहां पे, जहां फोन तक नहीं मिलता था उस टाइम पे, तो इन सब में अलग अलग चैलेंजेस हैं, दोनों के अलग अलग वो हैं, प्रारूप हैं, बट द फैक्ट इज की यस बोथ आर इक्वली चैलेंजिंग एंड दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग।
1: जी तो लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि आप बहुत ही एग्जर्शन आपको महसूस हो, आपको लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे भी ब्रेक चाहिए, ऐसा कभी आपको लगा?
0: देखिए सर, ब्रेक सबको लेना भी चाहिए, टफ टाइम्स आते हैं, बट टफ टाइम्स में वही कहावत नहीं कि भाई टफ टाइम्स डोंट लास्ट ना, बट टफ पीपल डू, तो वही टफ पीपल डू लास्ट, तो वही वाली एक सच्चाई है कि जो इंसान मजबूत है, जो इंसान सहनशील है, जिसके अंदर में अपने आप को दोबारा एनर्जाइज करने का दम है, तो वो लगा रहेगा, रास्ता निकाल लेगा अपने आप।
1: तो बिल्कुल वो जोश और जज्बा बरकरार रहना चाहिए, तो आप कभी भी थकते या रुकते नहीं है, आप एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर आगे बढ़ते हैं,
0: फिर आगे बढ़ते हैं।
1: सर, इसी में पीजीआई के बारे में बात करें कि आपने पीजीआई के नर्सिंग कॉलेज को रीस्ट्रक्चर, इसका पुनर्गठन भी किया, तो वो कैसे किया गया, क्योंकि ये भी एक अलग एक पूरा एक अपने आप में काम था, कार्य था।
0: जी देखिए, नर्सिंग कॉलेज एक नर्सिंग एक बैकबोन है हमारी क्लिनिकल सर्विसेज की। अच्छे नर्सेज ही अच्छे केयर को दे पाएंगे। डॉक्टर्स ने इलाज करना है, सर्जरी करनी है, बट उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर है या किसी भी मरीज की देखभाल है, केयर है, वो तो नर्स के जिम्मे आती है। तो अच्छा नर्सिंग का करिकुलम बनाना, अच्छे नर्सेस को ट्रेन करना, तो हम लोगों ने लखनऊ में इस कॉलेज को पूरा रिस्ट्रक्चर किया। कॉलेज चल रहा था पहले से, बट उसके अंदर में बहुत ही जो ब्रॉड लेवल के बदलाव हम लोग लेके आए, हमने कोर्स को, करिकुलम को रिस्ट्रक्चर किया, टीचर्स को लेके आए अच्छे, जो हमारा ट्रेनिंग को हमने और प्रोएक्टिव बनाया, अकाउंटेबल बनाया, और उनके मेट्रिक्स को हमने किया, तो यूपी गवर्नमेंट ने अपने अपने अपने जो मेजर्स को लगाया वहाँ पे, तो जिन मेजर्स पे एक समय पे हम 38-35 नंबर्स पे आ रहे थे, वहाँ पे वी रीच टू द लेवल ऑफ 92 एंड पीजीआई वाज नॉमिनेटेड एज अ मेंटर इंस्टीट्यूट, जिसमें हम पूरे स्टेट की या जहां जहां प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं, इन सबको मेंटर करने के लिए हमको दिया गया कि आप उनको मेंटर भी करिए, बताइए कैसे आप कैसे अपने स्टैंडर्ड को ऊपर लेकर जाया जाता है। तो ये अपने आप में
1: बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट था। जी और जाहिर है बहुत टफ भी रहा होगा।
0: हाँ,
1: इसमें फिर किस तरीके का आपको,
0: इसमें सबका योगदान है, कॉलेज के प्रिंसिपल का, कॉलेज के फैकल्टी का, बाकी लोग जो इन्वॉल्व थे, बट हाँ सबको लेके चलना हो, ये बोलना कि नहीं साहब हमको इस स्टैंडर्ड को लेके ऊपर बढ़ाना है, और जिस चीज के लिए भी ये जाना जाता है वो स्टैंडर्ड को हमको अचीव करना है, तो दैट इज हाउ वी कुड डू इट एंड इट केम टू अ लेवल।
1: बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज यहाँ भी है कि एक तो होता है कि आप एक बुनियादी तौर से मतलब बिल्कुल रूट से एक नई चीज खड़ी कर रहे हैं, और एक है कि रीस्ट्रक्चर उसको करना, तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा टफ रहा होगा।
0: रीस्ट्रक्चरिंग में सबसे पहला जानना ये जरूरी होता है कि किन चीजों से आप लैक कर रहे हैं। जब आप ये जान जाते हैं कि भैया ये चीज हमको पुल डाउन कर रही है, देन उनको स्ट्रीमलाइन करना और उनके अलाइड चीजों को साथ में इकट्ठा करना, वो एक अलग टास्क होता है। तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जो लोग कॉम्पिटेंट हैं, जो इस काम को कर सकते हैं, कैसे आप उनको मोटिवेट करें, कैसे आप उनको एनर्जाइज करें, कैसे आप उनको कुछ ऐसे पर्क्स दें जो उनको थोड़ा अच्छा महसूस कराएं, और कैसे उनको एक सिस्टम में लेके साथ चलने के लिए प्रेरित करते रहें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
1: ये जितनी भी चीजें रही हैं यहाँ पर, वो जो आपका जो आर्मी का बैकग्राउंड था, वो जो ट्रेनिंग थी, वो सब जो सीख कर आप आए, तो वही यहाँ पर ज्यादा असरदार साबित हुई, उसी ने ही सबसे बड़ा इसमें आपको सपोर्ट दिया, हेल्प की, आप ये सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाए, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कर पाए।
0: बिल्कुल, मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कैसे आप हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चलें, कैसे आप उसको अपनी टीम का हिस्सा बनाएं, देखिए पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर इंसान की कॉम्पिटेंसी में, हर इंसान की कैपेबिलिटी में फर्क होता है, पर इन कैपेबिलिटीज को, कॉम्पिटेंसी को कैसे हार्नेस करा जाए, कैसे उसको सिस्टम में ज्यादा यूज किया जाए, कैसे उनको लेकर चला जाए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, एंड डेफिनेटली मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन फॉर द एंटायर एफर्ट। एक्चुअली
1: यानी कि वो जैसे हम अक्सर हम बात करते हैं जब भी हमारे पास आर्मी ऑफिसर सोल्जर्स आते हैं, तो वो यही बताते हैं कि आर्मी जो है वो हम उसका एक पार्ट जब बन जाते हैं तो वो एक अलग जिंदगी है, वो एक जिंदगी गुजारने का तरीका भी है,
0: जीवन शैली है
1: वो एक लाइफ
0: स्टाइल
1: और बहुत ही स्पेशल है,
0: समझता हूँ।
1: तो वो जैसे अब कहा जाता है कि एक थोड़ा बहुत वक्त जो है हर एक सिटीजन के लिए कंपलसरी करना चाहिए कि थोड़ा बहुत समय वो उस ट्रेनिंग को दें ताकि वो उस डिसिप्लिन को भी समझें और सीखें, और उनके मन में जो है वो देशभक्ति की भावना को लेकर के एक जज्बा पैदा हो।
0: जी,
1: तो इस चीज में किस तरीके का हम कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी पॉलिसी, अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं।
0: देखिए साहब, भारत बहुत बड़ा देश है और हमारे

0: की फोर्सेस आर स्ट्रांग इनफ. सो कंपल्सरी जो कंस्क्रिप्शन होता है कि भाई सबको सबको सैन्य में सेवा करनी करनी है, वो शायद यहाँ संभव ना हो पाए, बट हाँ ये जरूर है कि एनसीसी हो गया, स्काउट्स हो गया, इन सब की ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे पास एक एक युवा पीढ़ी मौजूद है जो कि फौज ज्वाइन करने के लिए तैयार है. आज भी देखिए भर्तियों में कितना भीड़ लगती है, आज भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यूज में देयर सो मेनी एप्लीकेंट्स, 10-12 लाख लोगों में से कुछ चुने हुए 400 लोग 300-350 लोग अकेडमी पहुंच पाते हैं. तो देयर देयर इज लॉट ऑफ एनर्जी इन द एनवायरमेंट, देयर लॉट ऑफ लाइक एंथुसियाज्म इन द यंगस्टर्स, जो लोग चाहते हैं कि हाँ भाई आर्मी में वो अपनी सर्विस दे पाए, नेवी में जा पाए, एयरफोर्स में जा पाए. तो डेमोग्राफिकली इंडिया इज इनरिच्ड, वी हैव अ लॉट ऑफ यंग पीपल. हाँ ये जरूर है कि गवर्नमेंट को अच्छी स्कीम्स लेके आनी चाहिए जिससे कि वो लोगों को मोटिवेट करें, जो जिससे कि एटलीस्ट एक सैनिक होने पे जो प्राइड है ना वो बरकरार रहे,
1: बरकरार रहे.
0: तो वो एक बहुत बहुत वो दशवा है. एग्जैक्टली
1: सर, एक चीज यहाँ भी बताइएगा कि जैसे जो शुरुआत है कि जब आप चाहते हैं कि आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने, जहाँ आपने बताया कि एनसीसी से शुरुआत हो सकती है और भी कई सारे ऐसे, तो कब से कर सकते हैं, क्या उसके लिए मिनिमम क्राइटेरियाज हैं, एज फैक्टर है, एजुकेशन है, वो भी बताइएगा.
0: आई ऑल्सो गॉट अ चांस टू स्टे इन एनसीसी बटालियन ऑल्सो. तो एनसीसी में क्या होता है, दो विंग होते हैं, जूनियर डिवीजन होता है, सीनियर डिवीजन होता है. तो जूनियर डिवीजन में तो ए सर्टिफिकेट मिलता है, बट हाँ सीनियर डिवीजन की शुरुआत होती है क्लास ऑलमोस्ट 9-10 से.
1: अच्छा,
0: तो 9-10 से वो बच्चा जा सकता है सीनियर डिवीजन में, और वो अपना एनसीसी का 11th 12th आते जाते अपना बी सर्टिफिकेट पास कर लेता है, और 12th के बाद में वो ग्रेजुएशन के टाइम पे अपना सी सर्टिफिकेट कर सकता है. बट सी सर्टिफिकेट करने का एडवांटेज ये है कि उससे उस पर्टिकुलर कैडेट को एग्जाम में अपीयर करने से छूट मिल जाती है.
1: अच्छा,
0: तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में एक एनसीसी का एक कोर्स चलता है जो कि विच इज इक्विवेलेंट टू अ नॉर्मल कोर्स, जिसमें इसके बाद में यू गेट अ कमीशन एज अ लेफ्टिनेंट फ्रॉम द एकेडमी. तो एग्जाम आपको एसएससी एग्जाम पास करने की वजह से आपको एग्जाम में अपीयर करने की छूट मिल जाती है. यू हैव टू अपीयर स्ट्रेट फॉर द एसएसबी. एसएसबी आपने पास कर लिया.
1: अच्छा,
0: तो आप यू कैन गो एंड ज्वाइन द एकेडमी विद अ रेगुलर कोर्स. तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है. तो मुझे लगता है कि एनसीसी को ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस में कंपलसरी करना चाहिए, और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर में और ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी युवा पीढ़ी को ना एक लार्जर नेशनल एथॉस में इंक्लूड कर सकते हैं.
1: कम से कम उनके अंदर वो चीज, वो
0: राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय स्पिरिट को वी कैन अपहोल्ड. दैट स्पिरिट
1: अपहोल्ड, बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज में बरकरार रहनी चाहिए, और उसके अंदर वो जोश और जज्बा, और देश देश से जुड़ने का भी एक ना उसके पास एक माध्यम होगा कि हां भाई क्यों वो अपने देश से मोहब्बत करता है, और उस पर जानिशार करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है. सर, हम आगे बढ़ेंगे, आपसे बात करेंगे, और हम पीजीआई के अंदर जैसे आपसे हमने बात करी, इतनी लंबी बात करी हमने, और उस पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उसमें टेक्निकली की भी अब एडवांसमेंट हो रहा है, एआई का भी इसमें शामिल किया जा रहा है जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहा है. तो जाहिर है एआई हर जगह पर है, तो क्या उसमें उसकी भी कहीं पर जो है शामिल किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है उसको?
0: जी जी बिल्कुल.
1: तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे संदेश टू सोल्जर्स में, और हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना बताएं ताकि हम यहाँ पर आपके लिए प्ले कर सकें.
0: आप बॉर्डर का गाना चलाइए, संदेश से आते हैं.
1: तो आज के हमारे गेस्ट हैं संदेश टू सोल्जर्स के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM. आप सुन रहे हैं 1.6 देश के नंबर 1 रेडियो आकाशवाणी रेडियो पर संदेश सोल्जर्स शायद के साथ, और ये हमारे आज के गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी की पसंद का ट्रैक. आप भी एंजॉय करें, और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं हमारे आज के गेस्ट से. 9868107070 नंबर है हमारा.

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। हमारे आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी VSM, और हम बात कर रहे हैं वरुण से। हमने बात करी 3 नए सैनिक स्कूल जो उन्होंने एस्टैब्लिश किए, उसके अलावा उनके आर्मी के बैकग्राउंड के बारे में बात की, और हमने बात करी PGI लखनऊ के बारे में। सर, हम आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि PGI लखनऊ की आपने बात करी, इतना प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, तो अब AI का तो यूज हर जगह है, हर चीज में है
1: जी।
0: तो हमारी जो मेडिकल फील्ड है और जो ट्रेनिंग है उसमें भी अब AI का बहुत यूज हो रहा है, तो PGI किस तरीके से AI के बारे में सोच रहा है या यूज कर रहा है?
1: देखिए, आज का दौर ऐसा है कि आप AI से अपने आप को अलग नहीं कर सकते
0: जी।
1: AI हम सबके जीवन का हिस्सा बन गया है, चाहे आप मोबाइल यूज करें, चाहे आप किसी चीज को सर्च करें, कुछ भी करें
0: जी।
1: AI हैज बिकम अ प्रिंसिपल वे टू लिव योर लाइफ नाउ।
0: तो गलत है कि मतलब किस तरह से आप इसको देखते
1: जी
0: हैं?
1: नहीं, मैं इसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। देखिए साहब, टेक्नोलॉजी कोई भी चीज जब नहीं आती है तो इनेबलर होती है, कुछ चीज को इनेबल भी करती है, उसके अपने पिटफॉल्स भी होते हैं
0: जी।
1: उसको दिक्कत नहीं आती जिसके लिए तैयारी पहले से कर लेता है। अब जैसे अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो वहां पे भी AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है डायग्नोस्टिक में।
0: अच्छा,
1: बहुत बड़ा रोल होने वाला है चीजों को समझने में। अब जैसे आप, छोटी सी बात है, मैं एक उदाहरण दे सकता हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, बट एटलीस्ट मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि क्लिनिकल साइंसेज में, डायग्नोस्टिक में AI विल बी हैविंग अ मेजर रोल नाउ। कि आपने MRI करा, MRI को पढ़ने के लिए आपको क्लिनिशियन चाहिए, हमेशा चाहिए होगा। देयर विल ऑलवेज बी अ मैन बिहाइंड टेक्नोलॉजी, यू कैन नॉट नेगेट दैट, उसको आप नहीं दूर कर सकते। बट हाँ, 10 चीजों को कंपेयर करके, 10 AI के जो AI का जो डेटाबेस है उससे, उस इमेज को कंपेयर करके जो एक इन्फ्रेंस निकल सकता है
0: जी,
1: और उस डायग्नोसिस के बाद में जो बेटर इलाज निकल सकता है, इन सब चीजों में AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो PGI में बहुत बड़े स्तर पे अभी AI को हम लेके आएंगे अपने क्लिनिकल टूल्स के अंदर में, सर्जिकल टूल्स के अंदर में, और टेक्नोलॉजी को हम ऐसे एम्बेड करें, कैसे उसका कंस्ट्रक्टिव यूज करें, उस पर काफी विचार विमर्श चल रहा है, काफी काम चल रहा है। आई एम श्योर आने वाले टाइम पे AI से आप दूर तो नहीं जा पाएंगे
0: जी। AI विल, अक्सर लोग बताते हैं कि सर, अब जो एक मेडिकल एग्जामिनर है वो किसी रिपोर्ट को देखता है, अगर उसको वो एनालाइज करता है, तो हो सकता है कि वो किसी हद तक परफेक्टली शायद उसको डायग्नोस ना कर पाए उस डिजीज को, लेकिन ये बताया गया है कि AI बहुत ही कम समय में एकदम परफेक्ट उसको एनालाइज कर लेती है, तो ये किसी हद तक,
1: मैंने भी कुछ कुछ रिपोर्ट्स ऐसी देखी हैं जहां पे ये देखा गया है कि AI का जो असेसमेंट रहा है वो क्लिनिशियन के असेसमेंट के बिल्कुल पास रहा है, कभी कभी उससे बेटर भी हुआ है, और स्कोप ऑफ एरर काफी कम कर दिया उसने। मैं ये बात तो हमेशा बोलूंगा कि देयर विल ऑलवेज बी अ इंडिविजुअल और मैन और क्लिनिशियन बिहाइंड एनी टेक्नोलॉजी। तो ह्यूमन इंटरफेस को तो आप निगेट नहीं कर सकते, बट ये जरूर है कि AI के माध्यम से, AI के आने से जो हमारा परफेक्शन है, हम उसके और पास पहुंच सकते हैं, अपनी हम ट्रीटमेंट की पद्धतियों को, अपने इलाज की शैलियों को हम और रिफाइन कर सकते हैं, एंड वी कैन रियली रीच आउट टू द रियल कॉज ऑफ द इलनेस इन अ शार्पर एंड अ फास्टर वे। दिस कैन डेफिनेटली बी अ बिग रेवोल्यूशन नाउ।
0: सर, AI पर हमने बात की, और AI तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि जिंदगी का हिस्सा बन ही चुका है हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में
1: जी।
0: हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर भी, जो फौज पर उसका क्या असर होता है, जो नए बच्चे जाते हैं उनका भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं मैसेज ले लूं जो मैसेज आए हुए हैं। ये मैसेज आया है, जय हिंद सर, सेवा मेडल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं शबनम बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से, और इनका सवाल भी है सर
1: जी,
0: इनका सवाल ये है कि किस आधार पर सैनिक स्कूल में दाखिला मिलता है, कृपया बताएं। हालांकि इस पर बात हमने की
1: जी जी जी,
0: तो एक बार और प्लीज अगर बता।
1: देखिए, ऑल इंडिया एग्जामिनेशन के माध्यम से एडमिशन होता है
0: जी।
1: क्लास 5th पास बच्चे जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं
0: जी।
1: 10 से 12 साल का एज लिमिट होता है। क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन किया जाता है। एग्जाम NTA कराता है, और सैनिक स्कूल एडमिशंस की एक वेबसाइट है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसमें सारा डेटा दिया हुआ है, और किस तरीके से क्या क्या करिकुलम होता है, कैसे एग्जाम में क्या चीज चेक करी जाती है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और साइंस।
0: अच्छा।
1: वो सारा कोर्स करिकुलम, एग्जामिनेशन का पैटर्न, सब कुछ मिल जाएगा। और इवन कोर्स में एग्जामिनेशन को अपेयर करने के लिए जो गाइड्स होती हैं।

0: किताबें होती हैं,
1: अच्छा
0: कोचिंग्स होती हैं, वो भी उपलब्ध हैं। तो आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे है आपके। यू जस्ट हैव
1: बिल्कुल
0: टू गूगल सैनिक स्कूल एडमिशन, देन यू कैन गेट द एंटायर इन्फॉर्मेशन।
1: ओके,
0: जी
1: आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और
0: पूरा
1: ऑनलाइन
0: मिल जाए।
1: अप्लाई भी आप वहीं से कर सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: सर, एक मैसेज और है। गुड आफ्टरनून वाजपेयी सर एन आरजे सर, जय हिंद। जय हिंद टू यू एंड ऑल इंडियन आर्मी। आई सल्यूट ऑल ऑफ यू फॉर द डेडिकेशन एंड फेयरलेसली सर्विस टू आर नेशन। आई गिव
0: थैंक यू।
1: रिस्पेक्ट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट माई सेल्फ शंकर लोड फ्रॉम गोमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड। वंदे मातरम, भारत माता की जय।
0: भारत माता की जय।
1: तो ये इनका मैसेज था, और भी मैसेजेस अभी हम देखते हैं। लेकिन हम सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या फौज पर भी सोशल मीडिया का असर होता है, क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर के कई कंट्रीज हैं ऐसी जो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे कि 16 साल तक के बच्चों के लिए उन्होंने उसको बैन किया हुआ है।
0: जी
1: तो
0: जी
1: वो जाहिर है उसके अपने जो भी उसके हार्म्स हैं, जो भी उसके ड्रॉबैक्स हैं, इसकी वजह से। तो हमारे यहाँ भी जो बच्चे हैं उसी दौर से गुजर रहे हैं, जो बच्चे, यही बच्चे जो होते हैं फिर ये जो इसी दौर से गुजर रहे होते हैं हम
0: जी
1: उसी जिंदगी में, लाइफ स्टाइल में,
0: जी
1: तो वो सोशल मीडिया के भी काफी तक हमने देखा है कि वो थोड़ा सा उसके इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो एनडीए में जब ये जाते हैं तो सोशल मीडिया का उन पर किस तरीके का इम्पैक्ट होता है, क्या होता है, कैसे आप महसूस करते हैं वो? आपने अपने तौर पर जो चीज़ें देखी होंगी वो, तो उसको कैसे हैंडल भी करते हैं ये भी बताइएगा।
0: जी जी देखिए साहब, सोशल मीडिया इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड नाउ, दुधारी तलवार है जिसके पॉजिटिव भी हैं, बिकॉज इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट हो रही है, लोगों को जानकारी मिल रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बट क्या ये कम्युनिकेशन रियल है, क्या ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है? तो इसका उत्तर ना है। ये तो एक ऑनलाइन मोड का कम्युनिकेशन है जिसमें आप वर्चुअली बात कर रहे हैं एक दूसरे से।
1: जी।
0: तो इस वर्चुअल एलिनेशन से होता क्या है कि हमारी कलेक्टिव साइकोलॉजी पर फर्क पड़ने लग जाता है।
1: ओके।
0: तो यही क्लास ट्वेल्थ पास लोग जो जवान जा रहे हैं फौज में,
1: जी,
0: ये भी फोन पे ही इनका फोन का एडिक्शन है। यही लड़के जब एनडीए जा रहे हैं तो ये भी उसी दौर से गुजर रहे हैं, सेम सोशल स्टाटा से, सेम सोशल सेगमेंट से इनको लिया जा रहा है। तो सोशल मीडिया का एडिक्शन अपने आप में उसके दुष्प्रभाव तो दिख रहे हैं।
1: जी।
0: आजकल सबको पता है कि भाई एक टेबल पे जो लोग बैठे हैं पांच लोग, तो आपस में बातें नहीं कर रहे हैं खाना खाने के टाइम पे, या गपशप नहीं लगा रहे हैं, पर वो अपने फोन पे लगे हुए हैं और रील्स को उंगली उनकी हिल रही है बस खाली।
1: पूछने वाला था सर, ये रील्स का जो एक तरह से वो हो गया है कि हैबिचुअल हो चुके हैं या एडिक्ट हो चुके हैं लोग, इसका कोई मतलब या असर भी, और दूसरी बात कि कैसे बचे इससे?
0: देखिए साहब, ये बहुत जरूरी है। तो जिन कंट्रीज ने देखिए अभी हाल में इसको इस पे बैन लगाया है, दे ऑल आर डेवलप्ड कंट्रीज। सो इन सब कंट्रीज में भी इस चीज का दुष्प्रभाव देखा जा रहा है कि कैसे इससे एक पूरी एक जवान पीढ़ी, एक पूरी पौध खराब हो रही है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे हम बात करते थे ड्रग्स का दुष्प्रभाव क्या है और ना बुरी हैबिट्स का दुष्प्रभाव क्या है, तो ये भी अपने आप में इसका बुरी मतलब डबल एज सॉर्ड तो है ही। जैसे मैंने पहले बोला, इसका दुष्प्रभाव दिख रहा है अभी कि कैसे इंसान आपस का कम्युनिकेशन खराब हो गया है और कैसे इंसान इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और दुनिया भर के स्नैपचैट और इन सब चीजों पे, कि उसको उनसे वही उसका एक कंफर्ट जोन बन गया है जिससे बाहर निकल के आने में बड़ी तकलीफ हो रही है।
1: सर, एक चीज ये भी बताई जाती है, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो ब्रेन है हमारा वो इस तरीके से डिजाइन है नेचुरली कि वो कंफर्ट को ही एक्सेप्ट करता है, प्रेफर करता है, वो एफर्ट्स पर जाना ही नहीं चाहता।
0: जी,
1: तो इससे बचने का कोई तरीका, क्योंकि जो फौज बच्चे जा रहे हैं, नए बच्चे जा रहे हैं ट्वेल्थ पास करके जा रहे हैं, तो क्या उसका असर फिर वो लॉन्ग टर्म में नुकसान बन सकता है, हार्म कर सकता है?
0: देखिए साहब, ये बहुत सबसे जरूरी बात है कि पेरेंट्स को इसलिए जागरूक होना पड़ेगा इस चीज के लिए कि वो अपने बच्चों को उतना ही एक्सपोज करें उनके ग्रोइंग अप ईयर्स में मोबाइल और लैपटॉप पे जितना आवश्यक है। हर चीज मोबाइल और हर चीज लैपटॉप के माध्यम से अवेयर कराना, उससे पढ़ाना जरूरी नहीं है, किताबें भी जरूरी हैं।
1: किताबें,
0: देखिए साहब, आप
1: तो
0: बिल्कुल एयरपोर्ट जाइए, आप देखिए साहब, एक टाइम था कि बहुत लोग किताबें देखते मिलते थे, किताबें पढ़ते मिलते थे, मैगजीन्स बिकना बंद हो गई, न्यूज़पेपर्स का सर्कुलेशन काफी कम हो गया है। तो देयर इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं, पढ़ना के और भी तरीके हैं, कुछ चीजें हैं ऑनलाइन, आप नहीं जा सकते दूर उनसे, बट यस, यू हैव टू गो बैक टू द कन्वेंशनल वेज ऑफ लर्निंग। ये बहुत आवश्यक है,
1: ये बहुत जरूरी है।
0: जी।
1: और सर, इसका जैसे हमने कहा कि जो फौज में नए बच्चे जाते हैं उन पर जो असर पड़ रहा है, वो आपने क्या महसूस किया है, और उसका फिर मतलब निवारण क्या है, मतलब उससे कैसे बचा जाए ताकि उसका नेगेटिव असर फिर लॉन्ग टर्म में उस तरफ ना जाए?
0: देखिए, फौज में, आर्मी में तो बहुत जबरदस्त तरीके से इसके अगेंस्ट में अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए कि किस तरीके से दूर रहना है। देखिए, फौज में बहुत सारी चीजें, स्पियोनाज भी हो जाता है, बहुत सारी चीजें मतलब ना, कोई इंसान आपको गलत तरीके से आपको टैप कर सकता है ताकि आपसे इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाए, तो इन सब से भी, ये भी सोशल मीडिया के तरीके से ही होता है। तो फौज ने तो इनफैक्ट फेसबुक पे और बहुत सारे ऐप्स पे बैन लगा दिया है कि भाई कि एज सर्विंग सोल्जर यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दोज ऐप्स ना।
1: अच्छा, मतलब सोशल मीडिया अकाउंट
0: भी,

0: डिलीट कर दिए गए हैं, बैन लगा दिए गए हैं, क्योंकि उन सब से भी आपकी इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट होती है, आप भूल जाते हैं कभी कभी, आप कैरी ऑन हो जाते हैं भाई कि इन चीज़ों को लेके कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट देन समबडी इज मॉनिटरिंग यू ऑन द सोशल मीडिया इन चीज़ों से. प्लस आपको पता ही है कितने स्कैम्स चलते हैं, कितने फाइनेंशियल स्कैम्स भी हो जाते हैं. तो सोशल मीडिया इज अ नेसेसरी ईविल, आई अंडरस्टैंड, बट द फैक्ट इज उसको कैसे कंस्ट्रक्टिव यूज करना है ये बताना, समझाना, सिखाना बहुत जरूरी है.
1: तो सर ये तो बहुत टफ काम है, क्योंकि जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं कि वो एडिक्शन इतना बढ़ चुका है कि वो बच्चा हो या बड़ा हो तो उसे वो छूट नहीं पा रहा है,
0: छूट नहीं पा रहा है
1: तो
0: लोग.
1: क्या उसके लिए कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए या कुछ ऐसा नया सिस्टम बनाना चाहिए कि जिससे उनको मतलब बचाया जाए,
0: देखिए कुछ चीज़ें
1: जब
0: तो
1: डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही हैं तब?
0: जी, जैसे डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही हैं, कुछ चीज़ें पॉलिसी फ्रेमवर्क में आनी चाहिए हम लोग के, कि भैया एक बच्चे की ग्रोथ के जो बेसिक ईयर्स होते हैं उनमें सोशल मीडिया का रोल उतना ही होना चाहिए जितना आवश्यक है. प्रॉब्ली दे वील कम टू अ टाइम, एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत में भी ये चीज़ें बैन करनी पड़ेंगी, अदरवाइज तो इस चीज़ों का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा दुष्प्रभाव हो गया है कि इनसे एक जनरेशन के अंदर में इम्पैक्ट आ गया है, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों.
1: जी, तो ये जो बातचीत आपसे रही है सर, ये बहुत ही इंसाइटफुल रही. आपने अपने जो करियर के बारे में बताया, आपने जितने बड़े बड़े अचीवमेंट बताए अपने सैनिक स्कूल और पीजीआई को लेकर के, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है और बहुत ही मोटिवेटिंग है. और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे जिससे सुन रहे होंगे
0: जी
1: उनको भी गाइडेंस मिला होगा, खासतौर पर सैनिक स्कूल के एडमिशन को लेकर के जो लोगों ने हमसे बात की.
0: थैंक यू सो
1: तो
0: मच.
1: हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना समय निकाला और यहाँ पर आए आप, और बहुत बहुत धन्यवाद
0: थैंक यू
1: आपके
0: सो
1: आने के
0: मच
1: लिए.
0: जी.
1: कर्नल वरुण वाजपेयी हमारे साथ रहे. कर्नल वरुण वाजपेयी VSM विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू.

FM 102.2 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5 बजे और आप सुनते हैं फिल्म संगीत।

एस पी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा को भी आपने सुना। फिल्म थी रोजा, धुन तैयार की थी ए आर रहमान ने।

जावेद अख्तर की शब्द रचना भी आपने सुनी। अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में फिल्म थी उमराव चांद। संगीत दिया था अनु मलिक ने।

हरिहरन अलका याग्निक को अभी आपने सुना। फिल्म थी हकीकत, गीत नवाब हरजू का था, संगीत दिया था दिलीप सेन समीर सेन ने। फिल्म संगीत इस समय श्रोता सुन रहे हैं FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

कार्यक्रम के अंत में सुन रहे थे मोहम्मद अज़ीज़ और राधा पोडवाल को, फिल्म है मरते दम तक, बोल और धुन रवीन चैन की है।

अनुराधा पोडवाल और मोहम्मद अज़ीज़ के गाए मरते दम तक फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है और अब युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार। समुद्र के लहरों से लड़ते हुए दुनिया का 90% व्यापार चलाने वाले नाविकों को सम्मान देने के लिए हर साल साथियों 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ ने 2010 में इसकी शुरुआत की थी। नाविकों के बिना ना हमें मोबाइल मिलेगा, ना तेल, ना कपड़े, ना खाना, फिर भी इनकी मेहनत दुनिया की नज़रों से दूर रहती है। 2010 में मनीला में हुए सम्मेलन में आईएमओ ने 25 जून को नाविक दिवस घोषित किया था और इसका मकसद है नाविकों के योगदान को पहचान दिलाना, उनकी कठिनाइयों को दुनिया के सामने लाना और युवाओं को समुद्री कैरियर के लिए प्रेरित करना। 2026 की थीम है माई हैरेसमेंट फ्री शिप, यानी मेरा जहाज उत्पीड़न मुक्त हो। आईएमओ नाविकों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल पर जोर दे रहा है। नाविकों का हमारे विश्व में और सभी पर व्यापक असर है। दुनिया का 90% आयात निर्यात जहाजों से होता है, जिसमें प्रमुख रूप से तेल, अनाज, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब जहाज से ही आते हैं और इन नाविकों का जीवन बहुत कठिनाईपूर्ण रहता है, जिसमें से ये करीबन 6 से 9 महीने तक परिवार से दूर रहते हैं। तूफान, समुद्री डाकू, साथ ही में अकेलेपन से लड़ते हैं। कोविड के दौरान, महामारी के दौरान भी नाविकों ने सप्लाई चेन नहीं रुकने दी। कई नाविक महीनों तक जहाजों पर फंसे रहे। इसके साथ इनके साथ कई चुनौतियां भी रहती हैं। महीनों तक जमीन ना दिखना, साथ ही अपने परिवार से दूरी,

जीवन का भी खतरा रहता है। सोमालिया जैसी गिनी की खाड़ियों में आज भी खतरा है समुद्री डकैती का, और उसमें डकैतों के द्वारा इनके ऊपर आक्रमण करने का। युद्ध क्षेत्र में भी इनको रहना पड़ता है, जैसा कि हम देख रहे हैं। यूक्रेन रूस युद्ध में कई जहाज फंसे भी हुए थे। इनके साथ साथ महिलाओं और नए नाविकों के साथ भेदभाव की शिकायतें भी आती हैं। हमारा भारतवर्ष दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रशिक्षित नाविक देता है। लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा प्रशिक्षित नाविक भारत से हैं। ये दुनिया के कुल नाविकों का लगभग 12% है। साथ ही मर्चेंट नेवी भारतीय युवाओं के लिए रोजगार का भी बहुत बड़ा जरिया है। मुंबई, चेन्नई, कोची, कोलकाता भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं। आज के इस दिवस पर हम सभी सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, तो उसी पर कम से कम थैंक्स यू सी फेयरर्स लिखकर उनका धन्यवाद करें। साथ ही बच्चों को भी बताएं कि उनके जो खिलौने और जो उपहार के सामान हैं वो भी ज़्यादातर इसी दुकानों में आने वाला सामान इन्हीं जहाज़ों से आता है। और सरकार से भी रहता है अपेक्षा है कि इनकी सुरक्षा और इनके बेहतर जीवन के लिए अच्छे नियम बनाए जाएं। ये नाविक समुद्र के गुमनाम हीरो हैं। ये घर से दूर रहकर भी हमारे घरों को सामान से भरते हैं। 25 जून हमें याद दिलाता है कि अगर जहाज रुक गए तो दुनिया रुक जाएगी। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस पर हम उन लाखों नाविकों को सलाम करें जो हमारे लिए समंदर से लड़ते हैं।

0: जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: साथियों, अब युवाणी करके मैं मार्गदर्शन में हम आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता। कंपनी सचिव के क्षेत्र में कैरियर, जानकारी दे रहे हैं अमर सेठ।
4: हम हमेशा अपने स्टूडियो में ऐसे लोगों को बुलाते रहते हैं जो हमें एक नया मार्गदर्शन एक नए क्षेत्र में देते हैं। इसी सिलसिले में करियर वार्ता के क्रम में हमने अपने स्टूडियो में श्री अमर सेठ जी को बुलाया है, जो आज हमें कंपनी सेक्रेटरीशिप के क्षेत्र में करियर के बारे में बताएंगे। अमर सेठ जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद, नमस्कार।
4: सेठ जी, पहल तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है, इसके विषय में आप जानकारी दीजिए।
5: जी, ऐसा है, कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा जारी की गई एक उपाधि है।
4: जी जी जी जी,
5: ये मुख्य रूप से कंपनी सेक्रेटरी कंपनी लॉ, सेबी और कैपिटल मार्केट का एक विशेषज्ञ होता है।
4: जी जी जी।
5: मेरा मानना तो यह है कि अगर संक्षेप में इसको समझा जाए तो हम यूं समझ सकते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट तो देखिए अकाउंट्स, ऑडिटिंग और टैक्सेशन का एक्सपर्ट है।
4: जी जी जी।
5: ICWA कॉस्टिंग का एक्सपर्ट होता है।
4: जी।
5: और कंपनी सेक्रेटरी जो है वो कॉर्पोरेट लॉज, कैपिटल मार्केट आदि का स्पेशलिस्ट होता है। तो इसको अपन संक्षेप में इस प्रकार से समझ सकते हैं।
4: अच्छा अच्छा, वैसे कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए करना क्या होता है, मतलब अगर युवाओं का अपना भविष्य वो अपने इस करियर के क्षेत्र में देख रहे हैं तो ऐसा क्या करें?
5: जी, कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए 10+2 पास होना आवश्यक है। तो 10+2 अगर जो भी बच्चा पास है वो कंपनी सेक्रेटरी में एडमिशन ले सकता है। उसको सबसे पहले एक फाउंडेशन कोर्स पास करना पड़ेगा।
4: जी जी।
5: उसके बाद एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास करना पड़ेगा और अंत में प्रोफेशनल प्रोग्राम, जिसको आप फाइनल कह सकते हैं, प्रोफेशनल प्रोग्राम पास करना पड़ेगा। जो लोग स्नातक हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उन्हें ये जो फाउंडेशन प्रोग्राम है उससे मुक्ति मिल जाती है, एग्जेम्पशन मिल जाता है। उन्हें सिर्फ दो ही करने पड़ेंगे, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और प्रोफेशनल प्रोग्राम। ऐसे करके आप इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के मेंबर बन जाते हैं और कंपनी सेक्रेटरी की उपाधि आपको प्राप्त हो जाती
4: अच्छा,
5: है।
4: अच्छा, मतलब कंपनी सचिव बनने के लिए हमें 3 चरणों को पास करना जरूरी होता है। अच्छा, आपने अभी बताया कि स्नातक करने के बाद फाउंडेशन के कोर्स से छुटकारा पा लेते हैं, वो क्यों होता है? वैसे
5: वो ऐसा इसलिए कि जो 12+2 है
4: जी,
5: तो उसको बेसिक थोड़ी सी नॉलेज ज्यादा कराने के लिए एक फाउंडेशन कोर्स डाला गया, और जो स्नातक अपने आप में पास होकर आया ये माना गया कि उसको बेसिक नॉलेज हो गई, अब उसे केवल 2 ही एग्जाम पास करने की आवश्यकता होती है।
4: अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और कंपनी सचिव के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं?
5: देखिए ऐसा है, कंपनी सेक्रेटरी का मुख्य कार्य है कंपनी लॉ की कंप्लायंस कराना। कंप्लायंस कराना माने कंपनी एक्ट में जो कुछ भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन कराना। अच्छा, इसके साथ साथ देखिए कंपनीज एक्ट में जो भी थोड़ा सा कंप्लायंस ऑडिट्स हैं अथवा अटेस्टेशन वर्क है वो भी कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है, क्योंकि जैसे अभी हमने देखा ना वो कंपनी लॉ का स्पेशलिस्ट होता है, तो कंपनी की कंप्लायंस भी करा देगा, वहां का अटेस्टेशन वर्क भी कर देगा, ऑडिट भी कर देगा।

0: इसी तरह से सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसमें अगर कुछ कंप्लायंस है उनका भी पूर्ति वो करा सकता है कंपनी सेक्रेटरी। कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार से संबंधित जितने कार्य हैं उसका भी वो कंप्लायंस वगैरह करा सकता है। इसके साथ साथ वो कंपनी के लिए एक परामर्शदाता के रूप में भी कार्य कर सकता है, क्योंकि डायरेक्टर्स को जो भी कंपनी लॉ से संबंधित जानकारी चाहिए वो किससे पूछेंगे, कंपनी सेक्रेटरी से पूछेंगे, वहां का एक बहुत बड़ा परामर्शदाता होता है वो। साथ साथ कंपनी के सारे सचिवीय कार्य, हम लोगों ने नाम में ही सुना हुआ है कंपनी सेक्रेटरी, तो जितने भी सचिवीय कार्य हैं वो सारे काम भी वो कर सकता है। इसी प्रकार से कंपनी लॉ के अंतर्गत जो विभिन्न कार्यालय हैं, जैसे रजिस्टर ऑफ कंपनीज है, कंपनी लॉ बोर्ड है, उनके अधिकरण हैं, उन सबके सामने वो अपीयर हो सकता है, कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है और कंपनी के पैरवी के रूप में कर सकता है। ये तो हुआ कंपनी के क्षेत्र में। इसी तरह से फाइनेंस के क्षेत्र में और कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार के क्षेत्र में भी उसकी एक अहम भूमिका होती है। वो जितने भर भी कंपनी के पब्लिक इश्यूज होते हैं, चाहे वो शेयर के हों, प्रतिभूतियों के हों, उन सबको सुचारू रूप से निष्पादित करवाने में कंपनी की सहायता करता है। जो कंपनीज अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना चाहती हैं तो लिस्टिंग का भी काम वो करवा सकता है। इसी तरह से कंपनियों का मर्जर, टेक ओवर, रिकंस्ट्रक्शन, ये सब काम भी, मर्जर मतलब दो कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी बन रही है, तो वो काम कौन कराएगा, कंपनी सेक्रेटरी कराएगा। एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को टेक ओवर कर रही है तो वो सारे काम कंपनी सेक्रेटरी सुचारू रूप से करा सकता है। इसके अलावा देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, टैक्सेशन है, ये सब काम तो वो कर ही सकता है। तो इस तरह से अनेक कार्य वो कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है।
1: इसका मतलब कंपनी सचिव जो होता है वो उद्योग जगत और पूंजी जगत के बीच की कड़ी
0: है। जी हाँ,
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इतने सारे करियर के क्षेत्र हैं तो युवा जो है वो अपना करियर सिर्फ कंपनी सेक्रेटरीशिप के क्षेत्र में क्यों देखें, वो क्यों बने कंपनी सचिव, इसके कुछ विशेष लाभ?
0: हाँ जी, कंपनी सचिव क्यों बनना चाहिए?
1: जी जी,
0: तो ऐसा है मैडम, देखिए सबसे बड़ा इसमें लाभ ये कि बड़ा सुविधाजनक कोर्स है।
1: जी जी,
0: 10+2 पास कोई भी विद्यार्थी कंपनी सचिव को का करियर को ज्वाइन कर सकता है, स्नातक है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: एडमिशन में कोई विशेष दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, ये बहुत महंगा कोर्स नहीं है। दूसरे कोर्स जो है बीटेक है, मेडिकल है, आप तो देखते हैं कितने महंगे को बहुत महंगे कोर्स है, ये इतना महंगा नहीं है।
1: एक मीडियम क्लास का कोई भी गार्जियन जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता,
0: इसको आराम से अफोर्ड कर सकता है। इसमें एक बड़ा, बहुत बड़ा आराम यह है कि डिस्टेंस एजुकेशन है, आप घर बैठिए अपनी पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, जो समय आपको सूट करता है उस समय पढ़िए, सुबह पढ़िए, शाम पढ़िए, दोपहर पढ़िए, अपने घर पे रहिए और पढ़िए, कहीं ऐसा नहीं कॉलेज जाना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे आना, कुछ नहीं।
1: यानी जो स्वरोजगार
0: कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं,
1: वो भी आराम से इस कोर्स को कर सकते हैं
0: घर बैठे कर सकते हैं। अच्छा, और घर बैठ के जो आप पढ़ाई करेंगे उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी आपको 24 आवर्स और 7 डेज आपको ई पोर्टल की सुविधा देता है, मतलब आप घर बैठे इंटरनेट के द्वारा अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई को अपनी जारी रख सकते हैं। उनके बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, आप वीडियो लेक्चर देख के अपना पूरा चैप्टर वीडियो पे अपना देख लीजिए, तैयार कर लीजिए, किस समय देखेंगे, जिस समय आपको सुविधा हो उस समय आप देख सकते हैं। तो ये सब सुविधाएं मौजूद हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात ये, बड़ा प्रेस्टीजियस कोर्स है, किसी के भी आगे आप संगे कहेंगे क्या कर रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी तो आपको इज्जत की दृष्टि से देखेगा। और सब इससे भी बड़ी बात ये कि इसका करियर बहुत अच्छा है,
1: मतलब करियर के क्षेत्र में आप बहुत ही अच्छा
0: अच्छा एक करियर आप बना रहे हैं अपना, और यदि आप जॉब में जाते हैं तो बड़ी अच्छी पोस्ट आपको मिलेगी, आपकी जॉब में पावर होगी, आपको एक रिप्यूटेड पोस्ट मिलेगी कंपनी के अंदर, तो जॉब में जाते हैं तो भी अच्छा, और जॉब ही नहीं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जाते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस जिसे कहते हैं, वहां जाते हैं तो वो वहां पे भी आपके लिए पर्याप्त संभावना है।
1: अच्छा, आपने अभी प्राइवेट प्रैक्टिस के रूप में भी इसके करियर की संभावनाएं बताई, तो वो प्राइवेट प्रैक्टिस में क्या क्या आता है, मतलब वो किस किस क्षेत्र में वो कार्य कर सकते हैं अगर प्राइवेटली अपना वर्क शुरू करे तो?
0: कंपनी सेक्रेटरी के रूप में दो तरह से आप जा सकते हैं, एक तो जॉब में तो आप जा ही सकते हैं, साथ में प्राइवेट प्रैक्टिस के रूप में जा सकते हैं। तो जो कंपनियां कंपनी सेक्रेटरी को फुल टाइम एंगेज नहीं करती हैं, वो अपनी कंपनीज एक्ट की कंप्लायंस, कंपनी लॉ की कंप्लायंस कैसे करें, तो उन्हें जरूरत पड़ती है एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की, जो कंपनीज एक्ट की सारी कंप्लायंस करवा दे, उनकी बोर्ड मीटिंग है, मिनट्स हैं, ये सारी कार्रवाइयों को करा दे और कंपनीज एक्ट की सुचारू रूप से कार्रवाई निष्पादित करा दे, तो उन्हें जरूरत पड़ती है एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की। तो वो सुविधाएं, वो सेवाएं एक कंपनी सेक्रेटरी प्रोवाइड करा सकता है। इसके अलावा जो कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना चाहती हैं, उन्हें लिस्टिंग एग्रीमेंट के लिए बहुत सारे सर्टिफिकेट्स देने पड़ते हैं और वो सर्टिफिकेट एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जारी कर सकता है, तो वो काम आप कर सकते हैं।
1: जी,
0: इसके अलावा कंपनी लॉ से संबंधित जितने भी ये

0: ये ट्रिब्यूनल्स हैं, कंपनी लॉ बोर्ड है, कंपनसेशन ट्रिब्यूनल है, आर्बिट्रेशन है, इन सब के समक्ष उपस्थित होकर एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी अपने क्लाइंट की तरफ से पैरवी कर सकता है, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, उनके सामने उपस्थित हो सकता है। इसके अलावा बैंक्स को एक ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो अभी आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह व्यवस्था बनाई है कि यह ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट जो है ये प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी इश्यू कर सकता, जारी कर सकता है। इसके अलावा कंपनीज एक्ट है, सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज आदि में अनेक सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ती है, जो सर्टिफिकेट्स कंपनी सेक्रेटरी इश्यू कर सकता है। तो इस तरह से कहें कि प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए अनेक क्षेत्र, अनेक सेवाएं उपलब्ध हैं सेवा देने के लिए। वो कंपनीज एक्ट में दे सकता है, वैधानिक कंपनी की कार्रवाइयों को पूर्ण करा सकता है और फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद कर सकता है, कंपनी की प्रोजेक्ट प्लानिंग में कर सकता है। तो अनेक संभावनाएं उसके लिए मौजूद हैं अगर वो प्रैक्टिस में है तो।
1: अच्छा, अभी कोई सर्वे आई हुई थी जिसमें मैंने पढ़ा, मुझे नाम तो नहीं याद है, जिसमें ये था कि हमारे इंडिया में, भारत में खासकर, कंपनी सचिवों की बहुत कमी है। तो मेरे ख्याल से युवाओं के लिए सबसे अच्छा रोजगार रहेगा,
0: बहुत अच्छा रोजगार है, क्यों नहीं है। इस समय कंपनी सेक्रेटरीज की अपने देश में काफी कमी है, कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो काफी ही है, ICWA भी है, बाकी कंपनी सेक्रेटरीज की बहुत कमी है। तो इसलिए एक बड़ा अच्छा रोजगार का अवसर है। उसका मेन मुख्य रीजन मेरे को यही लगता है कि शायद अवेयरनेस नहीं है युवाओं में कंपनी सेक्रेटरी के प्रति, तो इस कारण से।
1: अभी युवाओं ने सुना कि कंपनी सेक्रेटरी के क्षेत्र में कितने अच्छे करियर की संभावनाएं उनके लिए हैं और वो कितना आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए अमर सेठ जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, युवाओं को इतना अच्छा मार्गदर्शन प्रदान किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
2: मार्गदर्शन में अभी साथी ले रहे थे जानकारी कंपनी सचिव के क्षेत्र में कैरियर, वार्ताकार थे अमर सेठ। साथियों, आज संविधान हत्या दिवस है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। लेकिन 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाकर इसी संविधान की भावना की हत्या कर दी गई थी। इसी काले दिन को याद रखने के लिए भारत सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। 2024 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। 25 जून 1975 को आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में आपातकाल लागू कर दिया था। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने अनुच्छेद 352 के तहत आदेश जारी किया और अगले 21 महीने तक देश में लोकतंत्र नहीं, तानाशाही चली। इस आपातकाल में सबसे पहले तो मौलिक अधिकार खत्म हो गए, नागरिकों का बोलने, लिखने, इकट्ठा होने का अधिकार छीन लिया गया था। साथ ही चौथे स्तंभ प्रेस पर सेंसर लगा दिया गया था। अखबारों में जो सरकार चाहती थी वही छपता था। इंडियन एक्सप्रेस ने विरोध में खाली संपादकीय पेज छापा था। जिन नेताओं ने इसका विरोध किया उन सबको जेल में डाला गया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई समेत लाखों से ज्यादा नेता जेल में डाल दिए गए थे। साथ ही जो उस समय संजय गांधी के नेतृत्व में जबरन नसबंदी अभियान भी चलाया गया था। साथ ही न्यायपालिका पर दबाव बनाया गया, सरकार के खिलाफ फैसला देने वाले जजों का तबादला कर दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो, चलाने वाले खराब हो तो बुरा साबित होगा। आपातकाल में ठीक यही हुआ। अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग कर संविधान की मूल भावना, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन को कुचल दिया गया। इसीलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस कहा जाता है। इस दिवस का उद्देश्य भी हमें याद रखना चाहिए। 12 जुलाई 2024 को गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर 25

जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया, जिसका मकसद है कि नई पीढ़ी को बताया जाए कि लोकतंत्र की कीमत क्या है। साथ ही फिर कभी कोई सरकार संविधान को कुचलने की हिम्मत ना करे, इसका भी उसको संकल्प लेना चाहिए। साथ ही बलिदानियों को नमन है जिन्होंने आपातकाल में जेल जाने वाले, अत्याचार सहने वाले लाखों लोगों को श्रद्धांजलि देना इस दिवस का उद्देश्य है। और इससे हमें बहुत बड़ी सीख भी मिलती है। सबसे पहले सतर्कता जरूरी है। लोकतंत्र चलता रहेगा, सोचकर लापरवाह नहीं होना चाहिए। संविधान ही सर्वोपरि है। कोई भी व्यक्ति, पार्टी या सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सबको लिए जरूरी है और इसका अधिकार मिलना ही चाहिए। 25 जून 1975 का दिन भारत के लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय था। संविधान हत्या दिवस हमें याद दिलाता है कि आजादी और अधिकार मुफ्त में नहीं मिले हैं, इन्हें बचाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। 21 मार्च 1977 को जनता ने चुनाव में वोट की ताकत से आपातकाल को हराया था, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। और हमारा संविधान अमर रहे, यही कामना है।

0: बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट. बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा.
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए.
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए.
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए.
3: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी.
4: और अब आज का ये युवाणी कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए. नमस्कार. FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है. जी बजने को हैं कुछ ही पलों में समाचार होंगे.
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम. आज संविधान हत्या दिवस है. इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी. प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था. श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया.
6: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है. झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया.
7: सीकचों में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस
5: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई. शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंताकयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं. इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली. झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है. लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं. भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की. विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया. बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई. बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में कार्यभार संभाल लिया. उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे. राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में एक

0: 164 लोगों की मौत हो गई है, 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। विश्व भर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है, विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमेरिका के फुलटन में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदाम्बी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग ने आज आसान जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने भारत के ही डी सनीत को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है हमारे यहाँ से आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

हमारे मुख्य ट्रांसमिशन पर आज श्रोता सुनेंगे 6:45 से आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत बनाम बांग्लादेश के मध्य ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर से आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समय रहेगा आज संध्या 6:45।

हमारे मुख्य ट्रांसमिशन पर अब से कुछ देर बाद संध्या 6:15 पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किसान वाणी कार्यक्रम होगा, जिसमें आज फसल बीमा योजना से खेत की सुरक्षा पर चर्चा करेंगे दीपक गोस्वामी। भेंटवार्ता होगी खेत बचाओ अभियान क्रम में प्राकृतिक खेती एवं संतुलित उर्वरक प्रबंधन। वार्ताकार होंगे डॉक्टर विजयवीर सिंह, निदेशक DRRMR। और आपसे भेंट करेंगे सतप्रत सिंह, साथ ही डॉक्टर राम स्वरूप जाट, प्रधान वैज्ञानिक DRMR। इसके अलावा कुछ लोकगीत होंगे, साथ ही मौसम का हाल और बाजार भाव बताया जाएगा। समय रहेगा संध्या 6:15।

हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का समय इस प्रकार रहेगा। फिल्मी भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन आज सायं 6:45 पर प्रसारित किया जाएगा। संध्या 7:05 पर विश्व साहित्य कार्यक्रम में देश समारोह में श्रोता लेंगे जानकारी जगन्नाथपुरी के विषय में। वार्ताकार होंगी नेहा शर्मा।

आज रात 9:30 पर कंट्री वाइड कार्यक्रम होगा। इनसाइट्स प्रोग्राम का प्रसारण किया जाएगा रात 9:45 पर और ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आज रात 10 बजे श्रोता सुनेंगे रासलीला बूझत श्याम कौन तुम गोरी, आलेख हरी बाबू कौशिक का और प्रस्तुति नलेश मल्होत्रा की होगी। रात 10:30 पर उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्रोता सुनेंगे पंडित भीमसेन जोशी का ठुमरी गायन। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे 7:20 पर। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा शाम सुहानी 7:31 पर। एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा रात 8:30 पर। चितपट संगीत का कार्यक्रम सुहानी तराने का समय रहेगा रात 9:15। हिंदी समाचारों का समय रहेगा रात 8:45 और रात 11:00। अंग्रेजी समाचार होंगे रात 9:00 और रात्रि 11:05 पर। हमारी दूसरी सभा का समापन होगा रात 11:10 पर। यह था आज का कार्यक्रम विवरण। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है और अब श्रोता सुनेंगे किसानवाड़ी कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे दीपक गोस्वामी।

मैथिली शरण गुप्त की शब्द रचना अभी आपने सुनी शांति माथुर की आवाज में FM 102.2 MHz पर। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है और अब श्रोता सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे दीपक गोस्वामी।

0: क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो।
1: क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है।
0: जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं
1: और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। मिले

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा

0: द्वारा जनहित में जारी।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन को हमारी राम राम। भैयाओं, खेती किसानी के हमारे जो कार्य हैं, इन कार्य में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपनी जानकारी को बिल्कुल तरोताज़ा बनाए के रखें। कहने को मतलब ये है कि जब भी योजना की हमें सूचना मिले, वह पूरा समझ लें और वह को फिर लाभ हमें अवश्य लेना चाहिए। ऐसा ही है फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। खेती को प्राकृतिक आपदा से बचावे के काज है, एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ में हमारे किसान भैयन को सुरक्षा मिले है। या में प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़, जल भराव, ओलावृष्टि, चक्रवात, बिजली गिरनो, प्राकृतिक आग, फसल में कीट या रोग लगवे की स्थिति में, कम बारिश या खराब मौसम में बुवाई अंकुरण ना है विपे, और फसल काट के 14 दिन तक खेत में सूखनी रखी हुए, और ऐसे में अगर बारिश ओलावृष्टि हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हमारे किसान भैया को या को लाभ मिले। तो भैया, या में हमें जागरूक रहना है, या भी बैंक से हमने अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए रखो है, या जहाँ भी हमारे नज़दीक बैंक है वहाँ से हम या बीमा योजना को लाभ ले सकें या को नामांकन करा सकें। या में खरीफ, रबी और बागवानी व्यावसायिक सभी प्रकार की फसल या में सुरक्षित करी जाए। या को लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि 18 से 70 साल का कोई किसान या को बैंक खाता हो, या अपनी ज़मीन में खेती करवे बारे हो, ऐसे किसान भैया या को आवेदन कर सकें। बैंक, सहकारी समिति, CSC केंद्र से संपर्क करके या को लाभ लियो जाए सके। तो भैया, ये तो बात रही फसल बीमा योजना के क्रम में। अब आपको भेंट वार्ता क्रम में आज जानकारी दिवा रहे हैं खेत बचाओ अभियान के क्रम में प्राकृतिक खेती एवं संतुलित उर्वरक प्रबंधन के संबंध में। हमारे विशेषज्ञ वार्ताकार हैं डॉक्टर विजयवीर सिंह, निदेशक DRMR, डॉक्टर रामस्वरूप चार, प्रधान वैज्ञानिक DRMR, और इनसे बातचीत कर रहे हैं सत्यव्रत सिंह।
2: नमस्कार किसान भाइयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक पूरे देश में व्यापक अभियान चल रहा है और उस अभियान का नाम है खेत बचाओ अभियान। इसके अंतर्गत ICR के जितने भी संस्थान हैं, राष्ट्रीय स्तर के या प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट हैं या ICR की यूनिवर्सिटीज हैं, वो सभी इस अभियान में किसानों के द्वार तक जा रही हैं। और ये अभियान चलाया जा रहा है कि खेत बचाओ हमको एक अभियान के तौर पर लेना है, जागरूकता का स्तर उसमें इस कदर बढ़ाना है कि जो सस्टेनेबिलिटी की बात की जाती है, क्योंकि उत्पादन हमारी जनसंख्या के हिसाब से हमको लगातार मिलता रहे, हमारी जमीनें स्वस्थ रहें। और अब एक नई चीज और आ गई है कि सिर्फ जनसंख्या के हिसाब से उसकी गुणवत्ता भी इस स्तर की होनी है कि वो खाने योग्य हो, वो स्वास्थ्य को हमको सही पोषण दे सके। और एक चुनौती इसके साथ साथ में ये है कि चूंकि हमको व्यापार भी करना होता है, तो वो जो खाद्यान्न है वो इस स्तर का हो, निर्यात करने के योग्य भी हो। तो इसलिए खेत बचाओ अभियान की भूमिका इसलिए व्यापक हो जाती है, क्योंकि अपने लिए, निर्यात के लिए और अपनी जनता के पोषण के लिए हमारी जमीन है वो चिरस्थायी होनी चाहिए और उसकी क्षमताएं जो है लगातार बनी रहनी चाहिए। तो आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में है भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर के निदेशक डॉक्टर विजयवीर सिंह जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। और इसी संस्थान से शस्य विज्ञान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर रामस्वरूप जाट जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। आप डॉक्टर साहब, खेत बचाओ अभियान की जो कल्पना है ICR की, इसके बारे में हमको बताइए।
3: देखो, आपने इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी बता भी दी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूंगा। हमारे माननीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका 1 जून से और 30 जून तक पूरे देश में अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कि हमारे जो ICR के जितने भी विभिन्न संस्थान हैं, आपके जितने भी KVK हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं और आपके जो कृषि विभाग हैं, इनके सहयोग से संचालित हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा जो प्रमुख उद्देश्य यह है कि जो भूमि की उर्वरा शक्ति निरंतर उत्पादन कारण कमजोर हो गई है, तो उसको कैसे हम बढ़ाएं, उसमें जो जैविक पदार्थ होते हैं उसको कैसे किया जाए, और आपके जो किसान की लागत जो बढ़ रही है उसको कैसे कम किया जाए।
0: आप जैसे देखते हैं कि कालांतर में जब

0: ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करें जिसको हरित क्रांति कहते हैं
1: जी,
0: तो उससे उत्पादन में तो काफी वृद्धि हुई है, हम आत्मनिर्भर हो गए खाद्यान्न के मामले में, लेकिन भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो काफी कमजोर हो गई। जैसे कि आप देखते हैं किसान को हम कहते हैं भाई आपको 10 किलो नाइट्रोजन देनी है या 15 किलो देनी है, तो किसान के पास में इसका कुछ नहीं है, किसान में एक कंपटीशन हो गया, अगर उसने 10 किलो यूरिया डाला है तो मैं उसको 15 किलो डालूं, और हर बार उसको जो है नाइट्रोजन है फॉस्फोरस इसकी मात्रा बढ़ाती जा रहे हैं, इसका आपके जो भूमि की उर्वरा शक्ति है उस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप जैसे जानते हैं कि भाई जैसा खाए अन्न वैसा रहे, तो अगर आपका खेत ठीक है बीज ठीक है तो आपको उत्पादन बढ़िया मिल जाएगा, लेकिन आपका बीज ठीक है खेत ठीक नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता है। आपने उत्पादन काफी कर लिया, आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं और भी लेता हूं कि पहले जब हम छोटे थे तो हम लोग देखते थे कि आपकी भूमि में केंचुए बहुत होते थे, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं केंचुओं की मात्रा बिल्कुल ही कम हो गई है। केंचुओं के बारे में थोड़ा सा यह है कि सोयल के इंजीनियर कहे जाते हैं जो कि उसको बिल्कुल भूमि को पोली कर देते हैं, जिससे कि आपकी जो जल शोषण की है वो भी बढ़ता है और आपकी जड़ें काफी गहरी जाती है। तो ये जो सारे इफेक्ट हुए हैं, अब महत्वपूर्ण प्रश्न है केंचुए कहां चले गए, केंचुए चले गए आपके जो खाद और ये सब डाले हैं तो उससे सब नष्ट हो गए। ये तो केंचुए मात्र एक उदाहरण है, लेकिन इसी तरह से आपके जो सूक्ष्म आपके जीव हैं इसको आप जीवित मानिए, मिट्टी कोई निर्जीव नहीं,
2: निर्जीव
0: वो सब जो भी खत्म हो गए उन सब ने आपको एक प्रभाव दिया है, और आपका ये मान लीजिए कि यही अगर निरंतर दौड़ चला तो आपकी जितनी भी मन की सेहत की हम बात करते हैं, चाहे आपकी कैंसर की बात करें, चाहे आप डायबिटीज की बात करें, चाहे आपकी बीपी की बात करें, सब आपके जो इम्बेलेंस्ड आपके फर्टिलाइजेशन है, पेस्टिसाइड का उपयोग है, इंसेक्टिसाइड का उपयोग है, ये सब आपकी भोजन की थाली में आ रहा है और हमारे शरीर में जा रहा है, जिससे आपकी सेहत भी बिगड़ रही है।
1: यानी कि आपका एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताया कि जो जमीन, वो हिस्सा जमीन का, भूमि मृदा जिसमें से फसल पैदा हो रही है, वो सजीव है, और सजीव होने का मतलब ये हुआ कि उसके पांचों तत्व, जैसे हम कहते हैं ना पंचभूत हमारा शरीर है, तो उसका भी वायु आकाश जल और ये तत्व जो है ना, तो मृदा का संरचना अगर बिगड़ रही है किसी कारण से तो उसकी जो सजीवता में पूरी व्यवस्था बिगड़ रही है और मृदा के स्वास्थ्य की स्थिति कमजोर पड़ रही है। तो ये जो अभियान 1 से 30 तारीख तक माननीय मंत्री कृषि मंत्री जी ने जो चलाया है, देश में चल रहा है,
0: तो उसका मोटो मैं आपको बता दूं कि भाई आपके स्वस्थ मिट्टी है तो आपका किसान भी सशक्त होगा और आपका भारत भी समृद्ध
2: जी।
0: स्वस्थ मिट्टी, सशक्त किसान और समृद्ध भारत, तो इसमें करीब आपके काफी टीमें बनाई गई हैं, जिसमें कि आपके 650 की टीम है, वो करीब विशेष टीमें बनाई गई हैं, इसमें 115 करीब इसमें सहयोगी टीमें बनाई गई हैं, और आपके 1650 हैं आपके फील्ड टीमें बनाई गई हैं जो कि पूरे भारत में इसको फील्ड
1: आईसीआर सिस्टम की
0: आईसीआर सिस्टम भी है, उसमें केवीके भी हैं, यूनिवर्सिटीज भी हैं, और आपके जो रेस्पेक्टिव कृषि विभाग हैं आपके राज्यों के वो भी इसमें शामिल है। तो कहने का मतलब एक बृहद अभियान है जो कि किसानों को बिल्कुल जागरूक कर रहा है। होता है कि किसान गया और आपके यूरिया ले आया, उसको यह नहीं पता है कि मेरी भूमि में 10 किलो की आवश्यकता है या 15 किलो की आवश्यकता
2: जी।
0: कहने का पूरा मतलब यह है कि आपको संतुलित उर्वरकों का उपयोग करना है। संतुलित का मतलब है जितनी आवश्यकता है, ना ज्यादा ना आपको कम। तो वह होगा कैसे, जब तक आपको उसको पता नहीं लगेगा। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, मैं सरल भाषा में बताऊं, तो आपका पूरा एक होगा कि भाई इसमें हीमोग्लोबिन कितना है, इसका बीपी कितना है, या जो भी चीज है, तो इसको ये दवाई देनी है। आप अगर इसका बना लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में इसमें नाइट्रोजन अगर कमी है तो अपन नाइट्रोजन देंगे, अगर फास्फोरस कमी है तो फास्फोरस का फर्टिलाइजर डालेंगे, अगर आपको कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, जैसे हम सरसों की बात करते हैं, वही सल्फर एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। अब सल्फर उसमें कितना है, ज्यादा है कम है, तेल की मात्रा में उसका बड़ा योगदान हो सकता है, तो किसान उस सल्फर का प्रयोग करे। तो ये जो सारे बिंदु हैं, दूसरा मैं कह रहा था केंचुओं की बात है, सूक्ष्म जीवों की बात है, तो ये सबके सब जो बढ़ते हैं, जैसे आपकी हरी खाद है, तो हरी खाद का प्रयोग हम देखते हैं, किसान पहले आपके ढेंचा उगाता था और खेत में पलट देता था, वो प्रक्रिया भी काफी कम होने लग गई है। तो भाई किसानों को ये भी इसमें प्रोत्साहन कर रहे हैं कि कम से कम आपके खेत का, मान लो आपके पास में 10 बीघा खेत है, तो 2 बीघे खेत को आप इसमें जो प्राकृतिक खेती है जिसमें कि आप जैसे हरी खाद है तो उसको उसमें पलटें।

0: जैसे इतनी सारी टीमें बनाई गई हैं पूरे देश में, तो इनका मोड ऑफ एक्शन, जैसे गोष्ठियां हो रही हैं, क्या किस तरीके से किसानों के संपर्क
1: में? दो तीन महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो भी टीम है वो एक रूट मैप बनाए भाई कि एक दिन में हमें दो गांव कवर करने हैं, तीन गांव करने हैं, और वहां पर सबसे महत्वपूर्ण है जागरूकता अभियान चलाए और उनको प्रेरित करे कि भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाए। अब मृदा

0: स्वरूप जाट जी से। डॉक्टर साहब, जो खेत बचाओ अभियान है, इसकी अगर हम खेत बचाओ अभियान की खेती के संदर्भ में बात करना चाहें आपसे, तो कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से तत्व हैं इसके, जिससे खेत हमारे स्वस्थ रहेंगे?
1: जी देखिए, आपने बताया कि कालांतर में हम पदर में तो आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स में मुख्य रूप से जो है वो हमारी मिट्टी की उर्वरता क्षमता कम होती जा रही है, सबसे बड़ा कारण यह है। तो हम सतत कृषि उत्पादन के लिए किस तरह से अपनी मिट्टी को स्वस्थ बनाएं, उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाएं, उर्वरता बढ़ाएं, इसके लिए मुख्य रूप से हमें जो रासायनिक खाद हम प्रयोग कर रहे हैं, एक तो उनका संतुलित उपयोग करें, दूसरा हमारी मिट्टी के अंदर कार्बनिक पदार्थ की कमी होती जा रही है, और अभी जो मोस्टली हमारी जो सॉइल्स है, मिट्टी है, उसमें 0.2-0.3% कार्बनिक पदार्थ है, इसको हमें बढ़ाने की जरूरत है, कम से कम इसको हम 1% तक लेके जाएं, और उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, जैसे जो गोबर की खाद है उसका प्रयोग करना पड़ेगा, हरी खाद है उसका प्रयोग करें, इसके अलावा फसल विविधीकरण ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें हम जैसे मान लीजिए कि अपनी कोई अनाज वाली फसल है उसके साथ दलहनी फसल लगाएं, तो ये विविधीकरण यानी दो से अधिक फसलें हम खेत पर उगाएं, जिससे कि हर फसल का आप जानते हैं कि अलग अलग उनका एक गुण होता है, किसी फसल की वो वातावरण की नाइट्रोजन को अपनी जड़ों में संरक्षित करती है और उसको फिर आगे भूमि में संरक्षित होने से वो दूसरी फसल को मिलती है, कई फसलें ऐसी होती है जिनकी जड़ें हैं वो गहरी होती है तो वो उसको फायदा करती है, वो नीचे के पोषक तत्व लेती है, कई फसलें होती हैं जिनकी उथली जड़ें होती हैं तो वो ऊपर की सतह के पोषक तत्व लेती है। इस तरह से हम फसल विविधीकरण करेंगे तो हमारी मिट्टी की उर्वरता क्षमता सबसे ही बढ़ती जाएगी। इसके साथ जैसे मैंने कहा हरी खाद, मुख्य रूप से ढेंचा एक ऐसी फसल है जो जल्दी बढ़ती है और इसमें 60 से 100 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टर ये आने वाली फसल को देती है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, इसको हम बरसात के मौसम में हरी खाद करें और जब ये 40 से 45 दिन की अवस्था पर हो जाए तो इसको मिट्टी में पलट दें, आने वाली फसल के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है, साथ में ये मिट्टी की संरचना को सुधारती है, उसमें जो जीवाणु है मिट्टी के अंदर उनकी जनसंख्या बढ़ाएगी, और आपको बताऊं कि आजकल जैसे सरकार का भी इस पर जोर है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, प्राकृतिक खेती एक रसायन मुक्त खेती है जिसमें हम मिट्टी के जीवाणुओं की जनसंख्या बढ़ाने के ऊपर मुख्य रूप से कार्य करते हैं, और अगर हम मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या बढ़ा लेते हैं तो उसमें जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों का मिनरलाइजेशन होता है वो फास्ट होता है, सभी पोषक तत्व पौधे को मिल पाते हैं और उससे फसल अच्छी होती है, कम लागत पर अच्छा उत्पादन देती है। इसके अलावा जो संतुलित पोषक तत्व का प्रबंधन है उसमें यह है कि किसी भी फसल को 17 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए, उसमें हो सकता है कि उनकी रिक्वायरमेंट हर फसल की अलग अलग हो, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है उनका संतुलित उपयोग करना, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, बोरोन, जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह सबका एक संतुलित उपयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार किसान क्या करता है कि नाइट्रोजन का यूरिया लिया है और उसको डाल दिया, फास्फोरस लिया है और उसको डाल दिया, जो DAP का चल रहा है वो ये है कि इन पोषक तत्वों का ज्यादा प्रयोग करने से जो दूसरे पोषक तत्व है उनकी उपलब्धता मिट्टी के अंदर कम हो जाती है, यदि हमने फास्फोरस ज्यादा डाल दिया तो उससे आयरन और जिंक मिलना कम हो जाएगा, वो पौधे को कम उपलब्ध होगा, तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए किसानों को सलाह देते हैं कि हमेशा संतुलित और जो बताया गया है उतना ही खाद डालें, संतुलित मात्रा में डालें और जितना उस फसल के लिए बताया गया है, जैसे सर ने बताया कि सॉइल हेल्थ कार्ड ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना होती है किसान के लिए कि उनकी मिट्टी के अंदर कितने पोषक तत्व हैं और आप जो फसल लगा रहे हैं उसके लिए कितनी आवश्यकता है और इनमें कितना डिफरेंस है और आपको एक्स्ट्रा कितना डालना, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस सॉइल हेल्थ कार्ड के अंदर होती है जो किसान के लिए एक बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप हेल्थ कार्ड के हिसाब से अपनी फसल पैदा करते हैं तो आपको लागत भी कम आएगी, फसल की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और उससे अच्छा आपको मुनाफा होगा।
0: डॉक्टर साहब, एक धारणा ये है कि बाजार के हिसाब से हमको उत्पादन करना है, यानी कि बिक्री के लिए करना है तो ज्यादा पैदावार लेनी है, और जब हम थोड़ा सा इन चीजों की बात करते हैं कि कार्बनिक की तरफ जाइए, नेचुरल खेती की तरफ जाइए, तो एक धारणा ये है कि पैदावार नहीं होगी, कम होगी, तो केमिकल देना मतलब जरूरी है, संतुलित है या नहीं है वो उतना उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि देना जरूरी है और इसके बिना पैदावार नहीं होगी, तो इस मिथक में कितना मतलब आप कहेंगे कि क्या ये सही है?
1: देखिए ये बात कुछ टाइम पीरियड के

0: ये सही है, मतलब जिसे कहते हैं कि जैविक खेती या प्राकृतिक खेती के अंदर शुरू के 2 या 3 साल तक आपका उत्पादन कम हो सकता है, लेकिन मुनाफा कम नहीं होगा क्योंकि लागत हम कम कर रहे हैं।
1: जी, पैदावार कम
0: लागत,
1: होगी तो
0: हाँ,
1: लागत भी कम होगी।
0: लागत भी कम होगी। अब आप कह रहे हैं कि रासायनिक खाद देने से उसकी पैदावार बढ़ती है, तुरंत बढ़ जाती है, वो एक ठीक बात है। जैसे हम एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो तुरंत उसका इफेक्ट आता है, लेकिन अगर हमको सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करना है, सतत पैदावार लेनी है, तो आपकी मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारना पड़ेगा और उसके लिए आपको जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि 2 या 3 साल तक आपका पैदावार कम हो गया, लेकिन 3 साल के बाद आपकी पैदावार रासायनिक खेती की पैदावार से ज्यादा होगी, तो ये आपको भविष्य के अंदर अच्छा उत्पादन देगी।
1: हमने किसानों को कभी नहीं कहा और हमारे माननीय मंत्री जी का भी वो नहीं है, अगर किसी किसान के पास में 10 बीघा खेत है तो उसका रोटेशन बनाए। इस साल जैसे 20% से शुरू करें, तो 20% को करे तो 2-3 साल में जो डॉक्टर राम स्वरूप जी बता रहे हैं वो उसी लेवल पे आ जाएगी। उसके बाद में फिर उसको ले, उसमें उत्पादन का जो ओवरऑल प्रोडक्शन की आप बात करें देश की भी, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके मेंटेन।
2: मेंटेनेंस। और एक पक्ष ये भी है कि आप ये नहीं कह रहे हैं कि आप प्राकृतिक खेती करिए, ऑर्गेनिक खेती करिए, आप कह रहे हैं खेत बचाओ अभियान में कि संतुलित खेती करिए, संतुलित करिए, मतलब केमिकल्स का जो प्रयोग है, रासायनिक उर्वरक है, चाहे पेस्टिसाइड है, चाहे इंसेक्टिसाइड है या वीडिसाइड है, वो संतुलित रूप में रिकमेंडेड फॉर्म में क्रॉप तक जाना चाहिए।
1: रिकमेंडेड भी है। दूसरा आपने देखा होगा कि वेटिंग पीरियड की बात होती है पेस्टिसाइड।
2: जी
1: मान लो आपको भिंडी में आपने शाम को कोई पेस्टिसाइड दिया है, तो उसको कब तक किसानों को नहीं छोड़ना चाहिए? किसानों को इसके बारे में जागरूक करना है कि वास्तव में 3 दिन का वेटिंग पीरियड है, तो वही 3 दिन बाद करें, जिससे कि उसका जो इफेक्ट है वो आपके जो भी खा उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकते। किसान आमतौर पर क्या करते हैं कि भाई शाम को दिया, सुबह भिंडी तोड़ी और मार्केट पहुंचे, तो वो जो इफेक्ट आ रहा है वो सारा आपके शरीर में जा रहा है और शरीर आपका खराब हो रहा है और आपकी जो ये जो बीमारियां हैं इसी से हो रही हैं। तो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, कम से कम किसान जागरूक हो, और जागरूक में से भाई जो किसान लेते हैं उसको करते हैं, ऐसा नहीं किसान नहीं कर रहा है, किसान भी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, किसान प्राकृतिक खेती को भी अपना रहे हैं और आपके संतुलित उर्वरक के बारे में भी बिल्कुल जागरूक हो रहे हैं। तो इसका जो मैं सोचता हूँ इसका एक बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ेगा, वो हमारे कृषि व्यवस्था के लिए नहीं, आपकी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, आपका भोजन ही दवा बन जाए
2: जी,
1: ऐसा एक कंसेप्ट है। तो वो भी एक जो मिशन सेहत हमारी भारत सरकार ने चलाया है, जो आपके चिकित्सा ICMR और ICR के बीच में चल रहा है, उसमें भी यही कंसेप्ट।
2: यानी कि हमको अपनी खेती को बिल्कुल इस रूप में करनी है कि वो गुणवत्ता में बिल्कुल संतुलित हो, जमीन की सेहत है वो चिरस्थायी और लगातार पैदावार देने वाली हो, और उसके लिए जो इम्बेलेंसेज हुए हैं उनको ठीक करना है। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम बात करें खेत बचाओ अभियान की, तो कुछ ICR ने या आपके संस्थानों ने मिल करके कुछ ऐसे एरिया स्पेसिफिक मॉड्यूल्स किसानों को रिकमेंड कर रहे हैं कि इस जोन के लिए ये टेक्नोलॉजी कॉम्बिनेशन में फिट है, अमुक के लिए जहां बरसात ज्यादा होती है, जहां सूखा है, जहां इस तरह के जोन है हमारे एग्रो क्लाइमेटिक हिसाब से, तो उनके लिए अलग अलग पैकेज।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जैसे जितनी भी एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजीज हैं वो लोकेशन स्पेसिफिक होती है, यानी पर्टिकुलर जलवायु और मिट्टी के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी हम लें जिससे कि हमारी पैदावार बढ़े। इसमें चाहे आप प्रबंधन की बात ले लें या बीज की बात करें, हमारी अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग वेराइटीज का पैकेज है कि जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र है तो वहां पर कितनी है, जो सिंचित क्षेत्र है वहां पर कौन सी वेरायटी आपको लेनी है, कोई अगर क्षारीय या खारी भूमि है तो वहां पर कौन सी वेरायटी लेनी है, उस मिट्टी का किस तरह से प्रबंधन करना है, ये सब चीजें हम किसानों को बताते हैं। लोकेशन के हिसाब से, उसकी पर्टिकुलर मिट्टी और जलवायु की कंडीशन के हिसाब से किसानों को हम ये चीज बताते हैं।
2: आपसे एक प्रश्न और मेरे को किसान भाइयों तक तो जानकारी दिलवानी है कि इस अभियान के जो टेक्निकल बुलेट पॉइंट्स हैं कि ये काम आज से ही करने चाहिए और ये काम कतई नहीं करने चाहिए, जो इस अभियान के बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट है, हिस्सा है, उनके बारे में आप बताएं।
0: बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कार्य नहीं करना है, जैसे इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि आपको रासायनिक जो खाद हैं, दवाइयां हैं, उनका कम प्रयोग करना है। तो ये हम किसानों को बताते हैं कि आप अगर इस दवाई का या इस खाद का कम प्रयोग करेंगे तो आपको अल्टरनेट ऑप्शन ये है, यानी इसके बदले में आपको ये काम करना, जैसे कि हमने बताया कि हरी खाद करनी है, गोबर की खाद डालनी है। प्राकृतिक खेती के अंदर बहुत सारे आदान होते हैं, जैसे जीवामृत है, बीजामृत है, घन जीवामृत है, इन सब का प्रयोग करना है। इसके अलावा दवाइयों के ऑप्शन में हम प्राकृतिक

0: खेती में जैसे अग्नियास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, या खट्टी लस्सी बीमारियों के कंट्रोल करने के लिए है, इन सब का हम अल्टरनेट ऑप्शन किसानों को बताते हैं कि आप इसकी जगह ये करिए ताकि आपको कोई नुकसान नहीं होगा।
1: अभी तक हमने केमिकल्स की बात की, उर्वरक की बात की, अब मशीनों का प्रयोग खेती की सेहत के साथ में, जैसे धान गेहूं का फसल चक्र जहाँ पे है वहाँ पे ज्यादातर धान की खेती जब होती है तो वो गारा करके जो है ना रोपाई होती है, और ये बताते हैं कि कई सालों के बाद में फिर जमीन की जो है ना स्थिति, वैसे संरचना जो है ना, मिट्टी के गुण जो है ना वो खराब होने लगते हैं, तो मशीनीकरण का भी कोई एस्पेक्ट
0: बिल्कुल
1: इसमें।
0: आपने सही कहा, क्योंकि जैसे आप पंजाब हरियाणा की बात करें या अपना जो गंगा का क्षेत्र है जहां पर अधिक जुताई करते हैं, तो मशीन आने से लोग जुताई ज्यादा करने लगे, लेकिन अधिक जुताई करने के नुकसान भी बहुत हैं। आपकी मिट्टी के अंदर कार्बनिक पदार्थ की कमी हो जाएगी, पानी जल्दी सूख जाता है, और मिट्टी के अंदर नीचे एक परत बन जाती है। बार बार ट्रैक्टर चलने से, जुताई होने से एक कठोर परत बन जाती है जिसके नीचे आपका पानी नहीं जा पाता है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां जल भराव की समस्या सिर्फ इसी अधिक मशीनीकरण के कारण हुई है। रिसर्च और प्रयोगों द्वारा ये पाया है कि संरक्षित खेती जिसमें आपको कोई जुताई नहीं करना है या कम से कम जुताई करना है, वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और इसलिए उसके लिए आपने जैसे कहा मशीनीकरण, उसके लिए मशीन्स भी उपलब्ध हैं, जैसे हैप्पी सीड ड्रिल होता है, जीरो टिल ड्रिल है, इनका आप प्रयोग करके बुआई करें, कम से कम जुताई करें, जिससे कि आपकी जो मिट्टी की गुणवत्ता के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, आपकी मिट्टी के जीवाणुओं की जनसंख्या कम हो रही है, वो संरक्षित रहेंगे और वो मिट्टी के अंदर उसकी गुणवत्ता उर्वरता क्षमता बढ़ाने में अच्छा काम करेंगे। इसके साथ ही संरक्षित खेती में अगर आप देखें तो हम फसल के अवशेष को भी उसके अंदर मल्चिंग की तरह काम में लेते हैं।
1: डॉक्टर साहब, एक चीज का जैसे, क्योंकि खेती की सेहत से जुड़ा हुआ पूरा अभियान है, तो डॉक्टर साहब जो आईसीआर सिस्टम है, आईसीआर के जितने संस्थान हैं, तो अब क्या होता है कि जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सारी जांचें कराते हैं, और वो आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, वो सब आपने जैसे जिक्र किया था, तो हमारा जो सेटअप है आईसीआर का, वो किसान को मिट्टी की सेहत की जांच के लिए क्या क्या अवसर प्रदान करता है, और उसकी पहुंच किसानों तक कितनी व्यापक है?
2: देखो, इसमें जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है,
1: जी
2: ये सब हमारे आईसीआर के सिस्टम में भी है कुछ कृषि विज्ञान केंद्र, लेकिन अधिकतर ये क्या है कि जो कृषि विश्वविद्यालय है उनके उसमें आते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में ये निरंतर सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, और आपके जो विशेषकर कृषि, ये इसकी जिम्मेदारी भी है, कोई भी व्यक्ति वहां पर सैंपल ले जाए और उसको एनालाइज करके उसको रिपोर्ट देते हैं, भाई आपको इसमें ये डालना, इतना डालना, या इसकी मात्रा बहुत अधिक है, इसको नहीं डालना है। तो संतुलित उर्वरक का मैं पहले भी कहा था, ना तो ज्यादा, जितना चाहिए उतना ही।
1: किसान के स्तर पर कुछ ऐसे पीएच
2: पीएच
1: है या ईसी है
2: का भी है,
1: या नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की कुछ किटें जांच की ऐसी आई हैं, क्योंकि किसान 10-20-50 रुपए में अगर खरीद के घर पर ही कुछ कर ले तो उसके कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे
0: बिल्कुल
1: क्योंकि
0: ऐसी
1: वो।
0: किट्स हैं। और थोड़े ही दिन पहले हमारे कृषि मंत्री साहब ने, एक हमारी आईसीआर के संस्थान भोपाल ने, जो सोइल साइंस का संस्थान है, उन्होंने एक ऐसा किट बनाया है जो आप खेत में उसको लेके चलेंगे तो आपकी मिट्टी की गुणवत्ता वो बता देगा कि आपकी मिट्टी के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व हैं। इसी तरह से आप पीएच की बात करते हैं, पीएच के लिए पोर्टेबल पीएच मीटर आता है, ईसी आता है, वो किट्स में किसानों को आराम से मिल सकते हैं और उनसे वो अपने खेत के ऊपर ही अपनी अपनी खेत की मिट्टी की गुणवत्ता जान सकता है।
1: डॉक्टर साहब, जो अभियान चल रहा है तो ये 30 जून तक जैसे चलेगा, तो इसमें आप बैठकें कर रहे हैं, गोष्ठियां कर रहे हैं, तो इसके बाद में फिर किसान जो आपके संपर्क में आ रहे हैं उनके लिए और क्या क्या इसमें आप आगे के रूप देखते हैं जो
2: देखो,
1: आपके?
2: इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभाव है,
1: जी
2: गांव में हम जाते हैं करीब, हमारे संस्थान की बात मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ,
1: जी
2: तो करीब हमने 50 गांव को करीब संपर्क किया है, और वहां पे किसानों से हमने वो किया है, तो कम से कम वो किसान हमारे संपर्क में आ गए, हमारे पास में उनके फोन नंबर भी है, उनकी लिस्ट भी है,
1: जी
2: और हम ये मॉनिटर कर सकते हैं भाई किसान की। वहां कई किसान बिल्कुल समस्या ही बताते हैं।
3: अभय भैया सुन रहे भेंट वार्ता क्रम में खेत बचाओ अभियान, प्राकृतिक खेती एवं संतुलित उर्वरक प्रबंधन। जानकारी दे रहे वार्ताकार डॉक्टर विजयवीर सिंह, निदेशक DRMR डॉक्टर रामस्वरूप चाड, प्रधान वैज्ञानिक DRMR, बातचीत कर रहे सत्यव्रत सिंह। यही के संग आज के कार्यक्रम में विदा लेवे को है गो समय। सभी भैया बहनन को हमारी राम राम।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में श्रोता सुनेंगे ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत बनाम बांग्लादेश के मध्य ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर से आंखों देखा हाल हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर श्रोता सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर हैं और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं अगर आप उनकी तरफ नज़र डालेंगे तो आपको लगता है कि ये एक बनती हुई टीम है। हम अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें और कह रहे हैं कि वो प्रबल दावेदार है खिताब की, तो वो इस वजह से है कि उसका जो न्यूक्लियस है उसके कुछ 7-8 खिलाड़ी हैं वो पिछले कुछ समय से इस फॉर्मेट में लगातार खेलते हुए आए हैं। हम 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीते हैं, हमारे यहाँ पर जैसे ही जीते

कविता कृष्णमूर्ति को भी आपने सुना, फिल्म थी मजबूर, शब्द रचना आनंद बख्शी की थी, धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

महेंद्र दहलवी की शब्द रचना भी आपने सुनी। सुरेश वाडेकर और साथियों के आवासों में फिल्म थी नागमणि, धुन तैयार की थी अन्नू मलिक ने।

अरे अब सुनते हैं शंकर जय किशन के संगीत निर्देशन में हतरत जयपुरी की शब्द रचना, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म है कन्हैया।

लता मंगेशकर और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म थी कन्हैया। बोल हसरत जयपुरी के थे, धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने।

0: अन्ना थपड़वाल के गाए बीबी होता ऐसे फिल्म के इस गीत के साथ ही संध्या वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। फिर साहित्य कार्यक्रम है। आज देश समारोह में लेते हैं जानकारी धार्मिक स्थल जगन्नाथपुरी के विषय में। वार्ताकार है नेहा शर्मा।
4: श्री जगन्नाथपुरी चार परम पावन धामन में ते एक हते, शेष तीनों धामन में ते बद्रीनाथ सतयुग को, रामेश्वर त्रेता को और द्वारका द्वापर को धाम है। पर या कलयुग को परम पावन धाम तो पुरी को ही मानो जाए। आधुनिक भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के शिखर पे लगे भय चक्र को नील छत्र कहो जाए है। जहां तलक व चक्र के दर्शन हुए हैं वो पूरा क्षेत्र जगन्नाथपुरी कहो जाए। वैसे या क्षेत्र के अनेकन नाम हते, कोई जाए श्री क्षेत्र पुरुषोत्तमपुरी और कोई कोई जाए शंख क्षेत्र हु कहे है, क्योंकि यह क्षेत्र की आकृति शंख के समान बनी भई है। 52 शक्ति पीठन में ये स्थल एक पीठ स्थल के रूप में मानो जाए है। मान्यता है कि यहाँ पे सती की नाभि गिरी हती। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बेर रोहिणी जी श्री कृष्ण की पटरानीन को ब्रज की गोपिकान की अनुपम रस कथा सुनाए रही। तभी वह कथा के बीच में श्री कृष्ण बलराम अपनी बहन सुभद्राए लेकर कहूं ते वहां आए गए। प्रेम और विरह की या कथा को सुनते सुनते तीनों भाव विवोर हो गए। बिनके या रूप को देख के नारद ने प्रार्थना करी, महाराज आप तो बड़े अनोखे स्वरूप में लग रहे हो, कृपा करके कलयुग में आप तीनों ठीक याई तरिया जगन्नाथपुरी में विराजो। कलयुग में ये तीनों इधर उधर कृष्ण बलराम और बीच में सुभद्रा मूर्ति रूप है के यहाँ विराज गयी। या नीलाचल धाम के महत्तम स्वर्णिम अध्याय प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन ते आरंभ है गयो। नवदीप बिहारी श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करवे के बाद वृंदावन जानो चाहते, पर बिनकी माता सची और साथिन के आग्रह पे वे पुरी में ही बस गए। संबत 1510 ईस्वी के फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में श्री नित्यानंद दामोदर दास जगदानंद एवं मुकुंद आदि भक्तन के संग श्री चैतन्य महाप्रभु प्रथम बेर पुरी पधारे। श्री जगन्नाथ के दर्शन की आतुरता के आवेश में श्री महाप्रभु छत्रभोग जलेश्वर रेमना जाजपुर कटक भुवनेश्वर आदि के दर्शन और स्नान करते भय या मंदिर में पधारे। कमालपुर ते थोड़े आगे तुलसी चौरा नामक स्थान ते महाप्रभु जी को श्री मंदिर की जैसे ही ध्वजा दिखाई दी उनको भावावेश बढ़ गयो और वे दौड़ के मंदिर में प्रवेश कर गए। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की दीवार 22 फीट ऊंची 6 फीट 5 इंच मोटी बनी भई है। मंदिर के बाहर कोणाक ते लायो गयो विशाल अरुण स्तंभ विद्यमान है। मंदिर के पूर्व दिशा में सिंह द्वार, दक्षिण में अश्वद्वार,

पश्चिम में व्याघ्र द्वार और उत्तर में हस्ती द्वार बनो भयो है। सिंह द्वार में प्रवेश करवे पे दक्षिण की ओर पतित पावन भगवान श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के श्री विग्रह के दर्शन हुए हैं। मंदिर की बाहरी परिक्रमा में आनंद बाजार बनो भयो है, जहां भक्तगण महाप्रसाद प्राप्त करें। मंदिर के पश्चिम उत्तर भाग में नव कलेवर के बाद पुरातन विग्रह को विसर्जित किए जाएवे को स्थान है। मंदिर के सिंह द्वार पे जय विजय द्वार है और भीतर कुम्भवेड़ परिक्रमा में प्रवेश हुए है। भोग मंडप में गरुण स्तंभ है। श्री चैतन्य महाप्रभु यहीं ते लगभग 18 वर्ष तलक निवास के समय नित्य प्रति श्री जगन्नाथ के दर्शन करते हैं। या स्तंभ के स्पर्श करवे ते श्री महाप्रभु जी के हाथ को चिन्ह और खड़े है वे ते चरण चिन्ह हु पत्थर पे अंकित है गयो। भोग मंडप ते नाट मंदिर में है के जगमोहन में प्रवेश हुए है। जगमोहन के भीतर निज मंदिर हते। निज मंदिर में 16 फीट लंबी और 4 फीट ऊंची रत्न वेदी है, जाके ऊपर बाई ओर श्याम वर्ण जगन्नाथ जी, मध्य में सुभद्रा और दाई ओर बलभद्र जी विराजमान है। वेदी पे एक ओर लगभग 6 फीट आकार को सुदर्शन चक्र प्रतिष्ठित है और संगई में नीला माधव लक्ष्मी और सरस्वती जी के छोटे छोटे विग्रह विराजमान हैं। इन श्री विग्रह को कलेवर 8, 12 या 19 वर्ष बाद अथवा 2 अषाढ़ भड़वे पे पुरुषोत्तम मास में नयो कलेवर धारण कियो जाए है। मंदिर की तीनों बड़ी मूर्ति कास्ट द्वारा निर्मित हैं। रतन वेदी के तीनों तरफ 3 फीट चौड़ी गली हते, जहाँ ते यात्री श्री जगन्नाथ जी की परिक्रमा करें और ठाकुर जी के चरण स्पर्श को अवसर प्राप्त करें। श्री जगन्नाथ जी तक पहुँचवे के काजे नई दिल्ली ते हवाई यात्रा के अलावा सीधी रेल हो जाए है। जाके अलावा पूर्व रेलवे की हावड़ा वाल्टेवर लेन पे कटक ते लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पे खुर्दा रोड स्टेशन है। यहाँ ते एक लाइन सीधी पुरी तक जाए है। खुर्दा रोड ते पुरी तक की दूरी लगभग 45 किलोमीटर दूर हते। आसनसोल दिल्ली हावड़ा तिरुपति और तालचेर ते सीधी रेल मार्ग हते। रेलवे स्टेशन ते मंदिर की दूरी 1.5 किलोमीटर हते। पुरी में ठहरवे के काजे पुरी के शंकराचार्य मठ के अलावा अन्य संप्रदायन के मठ, धर्मशाला, होटल, अतिथि भवन बने भए हैं। यहाँ पे माँ दधी यानी समुद्र रोहिणी कुंड, इंद्र दुमन सरोवर, मारकंडे सरोवर विद गंगा चंदन तालाब, लोकनाथ सरोवर और चक्र तीर्थ आदि 8 पवन तीर्थ स्थल हैं। जगन्नाथ मंदिर ते समुद्र तट तक सीधो मार्ग बनो भयो है, जहां सैलानी दिन भर स्नान करते भय देखे जाए सके हैं। समुद्र के किनारे पे लगी भई सीप शंख और आकर्षक वस्तुओं की दुकान तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करती रहे हैं। जगन्नाथ जी के मंदिर में जाएवे के काजे पूर्व में 25 सीढ़ी चढ़ के दर्शन करवे को एक मार्ग बनो भयो है। मंदिर के भीतर एक बट वृक्ष हते, जहां नर नारी परिक्रमा करते देखे जाए सके। मंदिर की परिक्रमा में अनेकन देवी देवतान के मंदिर हैं, जिनमें मंदिर के ठीक पीछे एक छोटे से स्थान पे एकादशी की मूर्ति है। कहो जाए यहां एकादशी उल्टी लटकी भई है। जाते यहां एकादशी के दिन हूँ चावल को प्रसाद ठाकुर जी को लगाया जाए। यहां राधा कृष्ण को मंदिर, सिद्ध गणेश, सर्व मंगल देवी, संदीपन गुरु को मंदिर आदि अनेकन मंदिर बने भये हैं। यहाँ राम भक्त हनुमान की विशालकाय प्रतिमा एक कोने में बनी भई है। कहे हैं मंदिर के पीछे थे समुद्र की भयंकर गड़गड़ाहट को सुन के बजरंग बली ने अपने कानन में उंगली दे के कोने में खड़े है गए। मंदिर के पास ही में पातालेश्वर महादेव को सुंदर मंदिर है। याके दर्शन को बहुत बड़ो महत्व है। यहीं पे उत्तरामणि देवी की मूर्ति लगी भई है। याते थोड़े आगे निज मंदिर के एक द्वार के बाहर जाएवे वारो रास्ता बनो भयो है, जो द्वार को बैकुंठ द्वार कयो जाए है। बैकुंठ द्वार के समीप ही बैकुंठेश्वर महादेव को मंदिर है। यहाँ एक विशाल बगीचा है। 12 वर्ष बाद जब जगन्नाथ जी को कलेवर परिवर्तन हुए तो पुराने व विग्रह को यही स्थान पे समाधि दी जाए है। मंदिर के जगमोहन में गरुण स्तंभ बनो भयो है। श्री चैतन्य महाप्रभु यही स्थान पे चढ़ के श्री जगन्नाथ

0: जी के दर्शन कियो करते। दर्शन करते करते महाप्रभु जी के आंसुओं की अविरल धारा प्रवाहित होती जात। या स्तंभ के पास में बनो भयो गड्ढो कभू कभू महाप्रभु जी के आंसुओं से भर जातो। गरुण स्तंभ के दाहिनी ओर भगवान के द्वारपाल जय विजय की मूर्ति लगी भई है, जिन्हें प्रणाम करके ही निज मंदिर में प्रवेश कियो जाए। जगन्नाथ सुभद्रा की मूर्ति के ना तो हाथ ही पूरे बने भये हैं और ना ही मुखमंडल। यात्रिन को दिन में एक बेर प्रातः काल भीतर तक पहुँच के इन मूर्ति के चरण स्पर्श करवे को अवसर हु मिले है, और जगमोहन मेहते तो पूरे दिना ही होते रहे हैं। यहाँ की सेवा पद्धति में भोग को समय और भीतर दर्शन के समय को कोई निश्चय लेखा जोखा ना है। वैशाख शुक्ल 30 ते ज्येष्ठ कृष्णा अष्टमी तलक 21 दिन की चंदन यात्रा को विशेष उत्सव मनायो जाए है। या उत्सव में ठाकुर जी की मूर्ति को चंदन तालाब पे ले जाए, जहाँ ठाकुर जी को स्नान और नौका विहार करायो जाए है। ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को मंदिर में रुक्मणी हरण लीला को मनोहारी प्रदर्शन हुए है, और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को श्री जगन्नाथ सुभद्रा और बलराम की स्नान यात्रा हुए है। यह दिनांक ये तीनों ही विग्रह स्नान मंडप में विराजे हैं। वहां पे बिने 108 घड़ान के जल ते स्नान कराया जाए है। स्नान के पश्चात भगवान को गणेश रूप बनाया जाए है। विनको खूब श्रृंगार किया जाए है, कहो जाए या अवसर पे श्री जगन्नाथ जी ने एक गणेश भक्त को गणपत रूप में दर्शन दियो। या के बाद 15 दिन तक मंदिर बंद रहे है, जो असार शुक्ला दौज को खुले है। या दिना को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के नाम ते पुकारो जाए है। ये उत्सव पुरी को प्रधान महोत्सव है। या दिना तीन विशाल रथन पे श्री बलराम सुभद्रा और तीसरे पे श्री जगन्नाथ जी विराजमान हुए हैं। प्रातः काल ते मोटे मोटे रसान में बधे इन रथन को भक्तगण खेच के संजा तक गुड़िंचा मंदिर पहुंच जाए हैं, जहां ठाकुर जी 7 दिन तक निवास करे हैं। 10वीं के दिन रथ वहां ते लौट के श्री जगन्नाथ जी के मंदिर पहुंच जाए। विगत 9 दिना जगन्नाथ जी के स्थान पे आरत दर्शन हुए हैं, जिनको बहुत अधिक महत्व मानो जाए है। श्रावण मास की अमावस्या को जगन्नाथ जी के सेवकन को उत्सव और श्रावण में शुक्ल पक्ष की 10वीं ते झूलन यात्रा को शुभारंभ है जाए। जन्माष्टमी को जन्म उत्सव भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी को कालिया दमन और भाद्रपद शुक्ला एकादशी को बामन द्वासी, आश्विन पूर्णिमा को सुदर्शन विजय उत्सव तथा नवरात्रि में विमला देवी के उत्सव हुए हैं। या तरह प्राय सभी पर्वन पे मंदिर में नित्य नए महोत्सव होते ही रहे हैं।
1: दिस समारोह में अभी श्रोता ले रहे थे जानकारी धार्मिक स्थल जगन्नाथपुरी के विषय में, वार्ताकार थी नेहा शर्मा। इसके साथ ही आज का विश्व साहित्य कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही देर में श्रोता सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद।

0: के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल की 51वीं बरसी पर लखनऊ में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को किया संबोधित। कहा, सबका साथ सबका विकास का भाव है लोकतंत्र का आधार। मुख्यमंत्री ने संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सुशासन और सुरक्षा के माहौल के कारण देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में की उत्तर प्रदेश के कृषि रोडमैप की समीक्षा। कहा, किसानों को बेहतर पौध उपलब्ध कराने के लिए राजधानी में होगी क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना। और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने वाराणसी एयरपोर्ट में पहली इजी कनेक्ट उड़ान का किया शुभारंभ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिविल एविएशन सेक्टर में आया है बड़ा बदलाव। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आपातकाल की 51वीं बरसी संविधान हत्या दिवस पर लखनऊ में आयोजित लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश सरकार लोकतंत्र सेनानियों के लिए जल्द ही 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ समाज के हर वर्ग को योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है और यही लोकतंत्र का आधार है।
2: एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का वह अभियान जिसमें जनता ही सब कुछ है। लोकतंत्र का मतलब भी यही है, जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए योजना का लाभ, वो अंतिम पायदान पर बैठे हुए जनता जनार्दन के व्यक्ति को इस योजना के साथ जोड़ना। परिणाम, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त होकर के एक नए मध्यम वर्ग के रूप में उभर करके अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए दिखाई देते हैं और देश विकास में अपना योगदान देते हुए दिखाई देते हैं।
1: वरिष्ठ भाजपा नेता और डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने आपातकाल की बरसी पर मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार देश को एक वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 139 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश के हर जनपद का विकास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने पूर्वजों की विरासत को संरक्षित किया है। आज सुशासन और सुरक्षा के माहौल के साथ प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है।
3: ये डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है। जो उत्तर प्रदेश कभी पहचान के लिए मोहताज था, आज उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज नहीं बल्कि वह भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के कृषि रोडमैप, कृषि क्षेत्र की विभिन्न केंद्रीय और राज्य की योजनाओं तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन की संयुक्त समीक्षा की। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए समृद्ध उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान अलनीनो के प्रभाव से निपटने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में श्री चौहान ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा।

0: जिससे किसानों को बेहतर पौधे मिल सकें।
1: तीन प्लांट सेंटर यहाँ लगाएंगे जिसमें बागवानी के क्षेत्र में जो किसान काम कर रहे हैं उनको अच्छे पौधे मिल जाए। अगर पौधा खराब मिला, उनको प्लांट खराब मिला, तो 2 साल 3 साल या 4 साल बाद पता चलता है कि ये तो वैसा उत्पादन ही नहीं दे रहा। तो वो क्लीन प्लांट सेंटर भी हम खोलेंगे, लेकिन अच्छे बीज और अच्छी रोपण सामग्री उसका इंतजाम करना हम लोग भारत सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
0: इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चना, मसूर और सरसों की सरकारी खरीद की अवधि बढ़ाए जाने की मंजूरी भी प्रदान की। उन्होंने इस संबंध में स्वीकृति का आशय पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के अधिकाधिक किसानों को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का अवसर मिलेगा और उनके हितों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित होगा। इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने अयोध्या पहुंचकर आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में मखाने की खेती का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से संवाद भी किया। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने आज वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली ईजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है।
1: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके बहुत सारे एयरपोर्ट को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: ईजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर पूरा कर सकते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति वीबी नागरत्ना और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता को आश्वासन दिया है कि मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज प्रदेश के नवनियुक्त पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 8 महामंत्री, 19 उपाध्यक्ष और 19 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों के नाम भी घोषित किए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी ने सभी वर्गों और क्षेत्रों को ध्यान में रखकर पदाधिकारियों की नियुक्ति की है।
2: देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है, युवाओं को भी लेकर, महिलाओं को भी लेकर के, और हम लोग ख्याल रखें कि सभी का समायोजन उसमें हो जाए और सभी क्षेत्र का जो हमारे कार्यकर्ता है उनका सबका हर क्षेत्र से करीब करीब बराबर बराबर सबका समायोजन हो जाए, ऐसा प्रयास किया जाए।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी नए पदाधिकारी संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने, राष्ट्र प्रथम की भावना को जन जन तक पहुंचाने और जनसेवा के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में कोचिंग सेंटरों और अन्य इमारतों में अग्निशमन व्यवस्था की जांच की जा रही है। इसी क्रम में गौतमबुद्ध नगर में पुलिस, जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग ने 7 और कोचिंग सेंटर को सील कर दिया है। वहीं 2 कोचिंग संस्थानों में आग से बचाव के इंतजाम मानकों के अनुरूप न मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं प्रयागराज मंडल प्रशासन ने विशेष अभियान के तहत अब तक प्रयागराज और कौशाम्बी में कुल 10 कोचिंग और शैक्षणिक संस्थानों को सील किया है। मुहर्रम महीने की नवी तारीख पर आज लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में इमाम हुसैन की याद में मजलिसों और मातम का सिलसिला जारी है। लखनऊ में आज देर रात आलमे शबे आशूरा का जुलूस इमामबाड़ा नाजिम साहब से दरगाह हजरत अब्बास तक निकाला जाएगा। कल 10वीं मुहर्रम पर घरों में रखे ताजियों को सुपुर्दे खाक किया जाएगा, साथ ही आलमे आशूरा का जुलूस भी निकाला जाएगा। इन जुलूसों के मद्देनजर प्रशासन

सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। प्रदेश के कुछ पूर्वी जनपदों में आज हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी और पूर्वी जनपदों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान व्यक्त किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल की 51वीं बरसी पर लखनऊ में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को किया संबोधित। कहा सबका साथ सबका विकास का भाव।

0: कहा सबका साथ सबका विकास का भाव है लोकतंत्र का आधार। मुख्यमंत्री ने संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा सुशासन और सुरक्षा के माहौल के कारण देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में की उत्तर प्रदेश के कृषि रोडमैप की समीक्षा। कहा किसानों को बेहतर पौध उपलब्ध कराने के लिए राजधानी में होगी क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना। और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने वाराणसी एयरपोर्ट में पहली इजी कनेक्ट उड़ान का किया शुभारंभ। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिविल एविएशन सेक्टर में आया है बड़ा बदलाव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा

यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है और अब प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को हमारा स्नेह भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आपके द्वारा प्रेषित 7:15 पर भेजे गए संदेशों को शामिल कर रहे हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

विजय सुरलकर, रत्माला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार। ग्राम पीपर रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा। शेरवानी स्कूल गंज नडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद, कैफ अनवर, लुबना अली अंसारी। जिला अंबरगढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस और रिहान। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, मेहराज जहां। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, अमनदीप। कालका से शुभचंद बजाज, साहिल, बिट्टा बजाज। कलानोर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, गीता, निहारिका, सुशांत और सुरेश चौरसिया। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस, निखिल और यशस्वी वर्मा। पिपीरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता। धनत्रेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद मणि, अनोखेलाल वर्मा। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा। बुंदेलखंड से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार, सोनम वर्मा। शास्त्री नगर बीट शहर से किसान सबकाल, आशा, सोनिया, साईराज, विशाल सबकाल। करणवीर हाउस भूछा कैचिया भटिंडा। पंजाब से परम सिंह चौड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, वीरेंद्र, कुलदीप, सिमू, एकम, धमन और अभिज्योत। मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइडे, बसंतरा भोजने, पीएस नवानकर। ग्राम पंचायत कालेगांव चाफरावास से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजेश, संचेत वायर, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सर्वदा, सानवी देशमुख और हर्षदा देशमुख। गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत, सादिया। मलकापुर महाराष्ट्र से सोपान ताइडे, नारायण राव इंगले, आशीष मोहरकर। नलेश्वर नगर नरविल महाराष्ट्र से पी एस नवानकर, निर्मला, विशाल नवानकर। दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मेघलानी, बबीता मेघलानी, सुभाष, योगी और बब्बू और डब्बू। संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, जियाउल हक, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर, राजेंद्र कटारे। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु संस्कृति पौरुष। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर एमेकर, प्रमोद एमेकर, प्रदीप एमेकर। बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डॉली बेबी पूजा तामोरिया, राधिका और प्रभा देवी तामोरिया ने। और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में अनपढ़ फिल्म का गीत। गीत राजा मेहंदी अली खां का है, संगीत दिया है मदन मोहन ने।

मंगेशकर और यशुदास को अभी आपने सुना। फिल्म थी त्रिशूल, गीत साहिर का था, धुन तैयार की थी खैयाम ने। इस गीत को सुनना चाहा था मोतालाल महाराष्ट्र से

मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजा मेहंदी अली खां की शब्द रचना भी आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म थी अनपढ़। इस गीत के लिए हमें संदेश प्राप्त हुए साधुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद कला रेवाड़, ब्रिज रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह नकला राणा से, शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा, राजल लवानिया खंदौली आगरा, यादराम जी उस फार मथुरा, वीरेंद्र सिंह मंडी चौराया मथुरा, नेत्रपाल सिंह नकला विजयी राया, भजनलाल कुमार राया, महेश चंद सदर बाजार मथुरा, सतीन चंसौलिया जिला जालौन से और पंचमलाल चतुर्वेदी दौसा राजस्थान से, गांव गोपी की नगरिया से मिठन लाल सारस्वत, नेहा नीरज निकेतार उनके मम्मी पापा, गांव नगला पोला से विजय सिंह भानु प्रताप सिंह अनुराधा रामानुज पीहू कृष्णा राधिका पवन करण और इनके परिवारिक जन, गांव नौधरा से कोमल मास्टर यशोदा सूरज और शिवानी, गांव कोतपन से रमेश सुरेश सुनील रचना और इनके मम्मी पापा, हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से सोनिया अजीत शिवांश चुन्ना और इनके मम्मी पापा, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा बबीता बोट निखिल कांगड़ा तानवी बोट, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा विमला अनेजा, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह,

आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ, सपना और निवान शर्मा। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। आप 7:15 पे संदेश आपका। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हंदेड़ सिंह भाटिया, एंजल्स सोनू और पप्पी भाटिया। गांव लोकर ठोकरा वाला से स्वर सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और विराज सिंह। अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज हाशमी, सलमानाज, असद अरहम और समस्त परवारी जन। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, तुलसी मस्कीन। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश बल्लू निषाद, तरुण श्रीनिका और श्रीनिजा। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु गीतिका खोरवाल। पहाड़गंज मुल्तानी ठाणा से अनिल मोहन, उषा टिल्लू, मधु नायक। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मरमर, सरला विशाल, चेतन रोशनी, बेबी प्रियांशी। काटा रोड वाशी महाराष्ट्र से बास्टर मिट्ठल, सुरोज से सुषमा, परिधि, मायरा, सुरेश। करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से कानुकुला गोपाल, महेश्वरी, प्रमलिका, विश्ववर्धन, विघ्नेश। नथाना पंजाब से अर्जेंद्र सिंह छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना, हसन, अक्सर, नाजिया, आफिया, इब्राहिम। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा, पूजा, शव्या, रामटेके। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल, निशा। बरवड़ बकाल बुरठाणा से नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या और जय हागे। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा ने

हसरत जयपुरी के बोल अभी आपने सुने, मोहम्मद रफ़ी के आवाज़ में। फिल्म थी ससुराल। धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने। इस गीत को सुनना चाहा था पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप पारजू जाजोरिया, दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जामनिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति, देव कुमार, अर कुमार, मजनू कटीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिक्रोस्टा, रोजी पर डिक्रोस्टा और विलिस डिक्रोस्टा, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र, उमेश, पमला, बंछूर, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप कुकलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इनके सभी साथी, ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया, जेलरूड लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनौरी और दानिश, तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गोरवन श्रीवास, श्रीमती कोरोना, आयुष, विवेक, बेबी आयुषी श्रीवास, दिल्ली से रेशमा अंसारी, सना खान और शकीला, डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल, भारती बघेल, प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठन से सुरेश जाधव, अनीता जावा, आरती प्रसाद, सोनल, बेबी सिया जाधव, 7:15 पे काशी निवास नागपुर से प्रकाश रंभाडे, भारती, जानवी वैभवी और हर्षल रंभाडे, मजनू का टीला दिल्ली से कमल पालूजा, मधव पालूजा, इनका संदेश पुनः इन्होंने भेजा है। राजकिला मधुबनी बिहार से नवीन ज्योति सिंह, कुमार सागर, श्वेता प्रिंस रंगोली, केपी सिंह और इनके सभी परिवारिक जन, समता नगर काष्टी से लक्ष्मण जी जगताप, श्रेया मानशी, निशांत छतपति जी, शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा, शुभम और अक्षय सेन, कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी, बक्सर बिहार से शफीद्दीन अंसारी, फातिमा, डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी और सोनम,

गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जौंदले और आरती जौंदले, नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज और पीआर जैन ने

गाइड फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के आवाज़ में। गीत शैलेंद्र का था, संगीत दिया था एस डी बर्मन ने। इस गीत को सुनना चाहता परकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, नगद परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और समस्त अब्बासी परिवार। ग्राम कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े, योगिता प्रणाली हागोड़े, पार्थ हागोड़े और समस्त हागोड़े परिवार। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। कुंडरवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत कवानकर, राही श्रीमती सविता, प्रणीता सिद्धांत गवानकर, प्रिंस एकांश और छोटा टुक गवानकर। छत्रपति जी संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि श्रीमती शीतल राजेश। गांव चौलता बागपत से संजय डींगिया, नमन डींगिया, पार डींगिया। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान। गंजवारे से मोहम्मद आसिफ शेख, मोहम्मद अजीम शेख, मोहम्मद फातिमा। मथुरा से सभा अंसारी, शकील, हेना, आफ्ताब, गुलिस्ता, नंदनी, अंजलि। राजनगर मधुबनी बिहार से राजकुमार गुप्ता, विनीता गुप्ता, रविराज, गौरव कुमार, सभी साथी। गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और छोटा गुरशबद।

दमदमी एयरपोर्ट कॉलोनी कोलकाता से बसंत कुमार सेनार, रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिमझिम तनुश्री, पेरा बाजार झूमरी तलैया से अजय कुमार, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी, रिया जिया, तुसी आयुषी अनिरुद्ध, मुन्नी देवी शाह, जयप्रकाश साव और बसंत लाल साव। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया देशानी और निमित आहूजा। शिवबंदर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई, पिंकी, आर्यन, कृष्णा, पीहू, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार, प्रीति और कार्तिक आर्यन। सुरवाड़ी छत्रपति जी संभाजी नगर से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि सोहम बोरगांवकर, सदानंद, अंशुमन और बेबी ओवी के। और अब आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी का हृदय से आभार। नमस्कार।

102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

महेंद्र कपूर को भी अपना सुना फिल्म थी हमरास। गीत साहिर का था, धुन तैयार की थी रफी ने।

साहिर का लिखा गीत तभी आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के आवाज़ों में। फिल्म थी लैला मजनू, संगीत दिया था मदन मोहन ने। और आइए अब सुनते हैं खय्याम के संगीत निर्देशन में नक्श लायलपुरी की शब्द रचना, लता मंगेशकर के आवाज़ में। फिल्म है दर्द।

लता मंगेशकर के गाए दर्द फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कुछ देशभक्ति पर रचनाएं।

मैत्री शरण गुप्त की शब्द रचना भी आपने सुनी संवेद स्वरों FM 102.2 MHz पर। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। एक ही फिल्म से आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं एयरलिफ्ट फिल्म के कुछ गीत।

कुमार का था, धुन तैयार की थी अमाल मलिक ने। एक ही फिल्म से करकम इस समय श्रोता सुन रहे हैं एयरलिफ्ट फिल्म के कुछ गीत FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

अमाल मलिक और के गाय एयरलिफ्ट फिल्म के इस गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।

संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त

0: प्रतिक्रिया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपये किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रूपये होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। आईसीसी क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
2: पार्टनरशिप विद यूके इज टेकिंग मेनी मोर डायमेंशन।
1: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मामले की विस्तृत जाँच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रूपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए लागत 6,000 रूपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 5,000 रूपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रूपये का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश

0: में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1,700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागा, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
5: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा AI, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि COVID-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9। The headlines. India-UK free trade agreement, most comprehensive agreement so far, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Death toll rises to 164 after massive earthquakes hit Venezuela. Prime Minister Narendra Modi expresses condolences.

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म थी बरसात की एक रात, गीत आनंद बख्शी का था, संगीत दिया था आर डी बर्मन ने।

रफ़ी को भी आपने सुना, फिल्म थी सूरज और चंदा। गीत आनंद बख्शी का था, धुन क्या तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अशोक भोसले और मनहर के गाय होटल फिल्म के इस गीत के साथ ही सुहाने तरानी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।

0: 8 से 10 रुपए की कॉस्ट है पर जीबी। मैं अगर ये कहूं कि भारत जो है अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से कंप्यूटराइजेशन डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उसका नतीजा एडवांटेज काफी है भारत को कि भारत के पास कंजम्पशन हर प्रोडक्ट की है और हर प्रोडक्ट हर सोसाइटी के लिए चाहिए। तो पिछले 15 साल में काफी प्रोग्रेस हुई है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। मैंने कंज्यूमर की बात कही, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कहेंगे तो कहां हम 200 मेगावाट की वो डेटा सेंटर थे, क्लाउड थे, आज 1500 गीगावाट का क्लाउड हमारे पास इंस्टॉल्ड है भारत के अंदर,
1: जी
0: और वो 3000 गीगावाट टारगेट है अगले 5 साल में उसको करने का। आज विश्व का कोई भी क्लाउड मैन्युफैक्चरर नहीं है जो भारत में नहीं, हर सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी का डिजाइन सेंटर भारत में है। एक टीएसएमसी जो वर्ल्ड की एक प्रोडक्शन कंपनी है, सबसे बड़ी फैब कंपनी है,
1: जी
0: उसका भी डिजाइन सेंटर भारत में है। तो हर चीज में, हर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो कंजम्पशन है, ये जो एक्सपेंशन है, ये हमको प्रोडक्ट्स की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बहुत तेजी से ले जा रहा है। एक टाइम में आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट काफी थी, बीच में फिर
1: जी
0: एक थोड़ा सा स्लंप आ गया। आज देखिए इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया है,
1: जी
0: हम सोचते भी नहीं थे, हम सोचते थे कीबोर्ड पे आपको भेजेंगे या हम छोटे मॉनिटर भेजेंगे, आज हम बहुत सी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सपोर्ट मार्केट में कर रहे हैं।
1: सो जैसा आप कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत ही अपनी कहें कि फोकस्ड जो नीतियां हैं और जो रणनीतिक निवेश है उसके साथ देश की तकनीकी क्षमता को डेवलप किया है, जिसके साथ साथ विश्वसनीयता भी मजबूत हुई है भारत में। अगर हम जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम है जिसे इंडिया स्टैक कहा जाता है उसकी बात करें तो उसके बारे में आप बताएं कि उसमें जो एग्रीमेंट हुई है 23 देशों के साथ हमारी तरफ से जो तकनीक वहां तक पहुंचाई जा रही है ये

0: कितना इम्पोर्टेंट एक उपलब्धि है हमारे देश के लिए।
1: देखिए, एक जमाने में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्यों जरूरत पड़ी और भारत ने उसको निकाला, और इसका बैकग्राउंड देखिए कि हमने एक यूपीआई सिस्टम निकाला। भारत जो हो उस अग्रणी देश है जिसमें यूपीआई सिस्टम चालू हुआ। आज दिन भर में बिलियन से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं और जितने भी बड़ी कार्ड कंपनीज हैं ये सब यूपीआई को मानने को, रिकॉग्निशन करने को तैयार नहीं थे। आज जितनी भी संसार की, विश्व की सब कार्ड कंपनीज हैं वो सब यूपीआई इंटरफेस पे आती है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक कॉमन इंटरफेस हमने बनाया है और हर विश्व की कंपनी उस इंटरफेस से लेके हमारे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जुड़ जाती। इसको एग्जांपल जब हमारा सक्सेसफुल हो गया, फिर हमने इस भारत ने कहा कि हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो पूरे देश में या विश्व में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आज सब कनेक्टेड रहते हैं। आप उस पे ई कॉमर्स की एप्लीकेशन लगा लीजिए, कोई और किसी किस्म की एप्लीकेशन लगा लीजिए। तो पर्पस ये था कि सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक कॉमन इंटरफेस पे रहना है, ताकि किसी को कनेक्टिविटी की जरूरत ना पड़े और कहीं मोनोपोली की जरूरत ना पड़े, और हर देश, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी उस कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पे रह के उसका इस्तेमाल वैसा ही हो एक्सपेंशन हो जैसे यूपीआई के एक्सपेंशन।
0: और बिल्कुल, इसमें डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज भी एफिशिएंट हुई हैं और सिक्योर हुई हैं और लार्ज स्केल पर संभव हो पाई हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है।
1: क्योंकि हम डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं, हम एक दूसरे को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आप यूपीआई देखिए ना, मैं स्टेट बैंक में हूँ, दूसरा आंध्रा बैंक में है, तीसरा किसी और बैंक में है, पांचवा यूनियन बैंक में है, छठा सेंट्रल बैंक में है, किसी में भी है, आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। कहा हमने 2000 रुपए से चालू किया था, आप 1 लाख रुपए तक यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, बहुत आसान हो गया। तो ऐसा ही इम्पैक्ट इंडिया स्टेक जो बना रहा है वो ही इम्पैक्ट है उसका। एक कॉमन लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, जिससे एप्लीकेशन का एक्सेस, एप्लीकेशन रिट्रीवल एक बहुत ही आसान हो जाता है और मोनोपोली टूट जाती है।
0: बिल्कुल,
1: आज की डेट में अगर प्रोप्राइटरी लेंगे तो एक बारी प्रोप्राइटरी आप टेंडर करके ले लेंगे, दूसरी बारी आपके दाम ज्यादा लेगा, कॉस्ट आपकी ज्यादा लेगा, प्रोप्राइटरी हो जाता है। एक कॉमन इंटरफेस पे आ जाते हैं तो उसमें प्रोप्राइटरीनेस की बात खत्म हो जाती है। एक तो यूसेज में आसान मिलती है, एप्लीकेशन में आसान हो जाता है, उसके अलावा आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है।
0: आपने शुरुआत में ही बात करी थी जो एडवांस टेक क्षमताएं हैं उनके विकास की, जो फ्यूचर रेडीनेस के लिए इम्पोर्टेंट सरकार ने आइडेंटिफाई की हैं, सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर्स, ब्लॉकचेन, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी जो उभरती हुई तकनीकें हैं उनके लिए जो जो ये फोकस्ड स्कीम्स लाई गई हैं उनको मिशन मोड में जिस तरह से अप्लाई किया गया है, और फ्यूचर रेडी स्किलिंग के लिए भी जो बहुत कंसर्टेड, बहुत ही मजबूत एफर्ट्स किए गए हैं कि पूरे देश में AI स्किलिंग हो या जो और टेक्नोलॉजीज हैं उनमें स्किलिंग हो, ये आपको कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट लगता है ये फ्यूचर रेडीनेस के लिए प्रिपेयर्डनेस पर कार्य हो रहा है?
1: आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में एक सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम का, कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी टेक्नोलॉजी आइटम हो, नॉन टेक्नोलॉजी आइटम हो, इंडस्ट्रियल आइटम हो, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन, ये इनबिल्ट इंग्रेडिएंट्स हैं। आप बैंक में जाइए, बैंक में आज कुछ जाता नहीं है और टेक्नोलॉजी है बैंक में, सिर्फ फना दूर की बात है। सिर्फ आज बैंक एक टेक्नोलॉजी के ऊपर ही चलता है। पावर सेक्टर में टेक्नोलॉजी की कॉस्ट कम है, पर टेक्नोलॉजी जो ड्राइव करती है पूरे इंडस्ट्रियल प्रोसेस को, पावर सेक्टर को, उसकी एफिशिएंसी को, उसकी क्वालिटी को, उसकी प्रोडक्टिविटी। अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रोल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा हो गया, तो उसको देखते हुए ही भारत ने पिछले 5 साल से इस पे प्लानिंग चालू कर दी थी। सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में बनाया भारत ने, उसका आउटले 76,000 करोड़ रखा, उसके बाद 1,000 करोड़ 2025 में और ऐड कर दिया उसमें। उसका नतीजा क्या हुआ कि हमने एक सेमीकंडक्टर मिशन में हमारा गुजरात में धुलेरा जो है उसको फोकस किया, ताकि हम उसको सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से उसको बनाएंगे। और भी एरिया है जैसे असम में सेमीकंडक्टर को आगे करने के लिए उन्होंने एरिया आइडेंटिफाई किया। उन्होंने आज भारत में कोई भी सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनी है उसका R&D सेंटर, जहां R&D डिजाइन यही होते हैं। आप इंटेल ले लीजिए,

0: आप एआरएम आर्म ले लीजिए, आप टीएसएमसी ले लीजिएगा, जो भी कंपनी आप देंगी वर्ल्ड की फेमस कंपनी, सबका यहाँ डिजाइन सेंटर। तो उसी हिसाब से सेमीकंडक्टर मिशन लगाया गया। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया एआई मिशन भारत ने बनाया, जिसमें हमने आउटले 10,000 करोड़ रखा। उसके अंदर हमने एक 6 को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बैंगलोर, और उनको 1400 करोड़ रुपया आवंटन भी किया कि आप इसको आगे काम करिए, उनका डिफाइन करिए। ये जितने भी 6 सेंटर्स हैं, इन 6 सेंटर्स का अपना अलग रोल है। हमारा एआई की स्पेशलाइजेशन आज के भारत में एक हम एप्लीकेशन की तरह हमारा बहुत स्पेशलाइजेशन है, और उसमें हमारे पास 4.5 लाख ट्रेन मैन पावर है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन हमें एक सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए हमें और एआई के दूसरे सेक्टर भी चाहिए, तो हमें एआई टूल्स भी बनाने हैं और हमें ऐसी दूसरे और एप्लीकेशन करनी है। देखिए, संसार में 3 देश ऐसे हैं जिनके पास एआई की कुछ कंपोनेंट्स हैं, और एआई कंपोनेंट्स में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। भारत, चीन और अमेरिका, इन तीनों देशों के पास बहुत डेटा है, सारा डेटा इन्हीं कंट्रीज के पास है। पॉपुलेशन अमेरिका के पास, सारी आईटी कंपनीज वहां पे बैठी हुई हैं, चाइना की पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत है। तो इंडिया एआई के क्षेत्र में एक यूनिक पोजीशन रखता है कि हमारे पास बहुत डेटा है। एआई क्वांटम मिशन पे आई है, क्वांटम इतना जरूरी हो गया है, इंटरनेट पे जो ट्रैफिक चलता है वो 99% इंक्रिप्टेड होता है प्राइवेसी और सिक्योरिटी से, ताकि कोई इंफॉर्मेशन बीच में टैप ना कर पाए, उस पर अटैक ना कर पाए, वो इंक्रिप्ट करके चलते हैं। आपको वेबसाइट एक्सेस करेंगे तो आप देखेंगे उस पर लिखा हुआ HTTPS, इसका मतलब है सिक्योर, सिक्योर का मतलब है इंक्रिप्टेड डेटा है। अब इसके साथ एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी भारत सरकार ने बनाया, जिसका आउटले भी करीब करीब 350 करोड़ पर रखा। उनका काम था एक अग्रणी के तौर पे एक R&D प्रोडक्ट डेवलप करे। अब इन सबको सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार ने कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रेंथन किया। आप देखिए कि जो ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट है, हम इस वक्त 38वें पायदान पे हैं, हम 2015 में 81वें थे, अब उस पे हम इम्प्रूव करके 38वें हो गया। अब अगले आप 5 साल में आप देखेंगे कि ये 38 जो है हम फर्स्ट 10 में आ जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी के इंडेक्स में जो यूएन यूनाइटेड नेशन इंडेक्स देता है, हम पहले 10 में आते हैं इम्प्रूवमेंट। पिछले 5-6 साल में हम 17वें नंबर से इम्प्रूव करके 10 के अंदर आ गए, जो सेफ कंट्री मानी जाती है हम उसके अंदर आए। अगले 5 वर्षों के अंदर आप देखेंगे कि भारत एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के एक मैच्योर नेशन निकल के निकलेगा।
1: डॉक्टर राय, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस समग्र चर्चा के लिए, जिसमें आपने हमें बताया कि भारत कैसे एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर के रूप में उभर रहा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, जिस तरह से हमारी फ्यूचर रेडी स्किलिंग हुई है, फ्यूचर रेडी हमारी टेक्नोलॉजीज है उनकी डेवलपमेंट हुई है सरकार के एफर्ट्स, प्राइवेट सेक्टर के एफर्ट्स, स्टार्टअप्स के एफर्ट्स के द्वारा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विश्व में भारत की उभरती तकनीक और प्रौद्योगिकी की ताकत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे तकनीक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। कंट्री वाइड।

अरी बोई मोटी धमधल्लो सी, अरे बाय तो मैं खूब जानू, बड़ी चतुर है चतुर। और बोई तेरो बाबा बोई है ना, जो मोटो मोटो काजर लगावे और ब्रज गोपी ने देख देख के तारी दे दे के हंसे और गारियू दे।

0: जसोदा जी, हमारे बाबा ने कहा आप सो कछु हंसी की नहीं।
1: अरे बो बो मोते कहा हंसी ठट्टा करेंगे, एक ढक्का दूंगी 100 ठोर गिरेंगे 100 ठोर।

0: बेटिया मेरे समीप आ, आ तेरी बहनी गूथू और देख जे मैं नई साड़ी पहनाऊं। हे सूरज नारायण, हे ब्रह्मा जी, हे महादेव, मैं तो आपते अचरा पसार के यही मांगू कि मेरे घर राधा सी दुल्हन आवे, मेरे लाला कन्हैया को जे राधा मिल जावे।
1: अजी जसोदा जी, जे आप कहा कर रही हो?
0: अरे बेटी, मेरो तो जे नित्य नेम है, मैं तो रोज ही जे करूं।
1: अजी जसोदा जी, अब तो हम अपने घर को जा रही हैं। देखो बहुत अबेर है गई है, हमारी मैया हमसे लड़ेगी।
0: अरे लाला कन्हैया।
2: हाँ मैया।
0: देख इन्हें अबेर है गई है,

0: सो तू राधाए दरवाजे तक पहुँचाया।
1: मैया तू कह दे तो मैं घर तक पहुँचाया हूँ।
0: अरे नाए दारी के जा घर बेटी आमत रही हो, मेहर हमारी बात चला में तो मेरो पालागन कहियो। अरे बेटी राधा सुन, अपनी मैया और अपने बाबा ते मेरो पालागन कहियो, और बेटा नेक अच्छी तरह ते जइयो। हैं बेटा जा कन्हैया, जा छोड़िया।
1: अच्छो मैया मैं जा रहे हूँ।
2: चली प्रसभान सुता पुनि घर, संग सखी ने सो के तू चली है।

0: अरे ओ बेटी राधा।
1: हाँ मैया।
0: अरे बेटी, आज तुम कहाँ खेलवे गई? बड़ी देर है गई बेटी। बेटी, एक बात तो बताए, जे तेरी बेनी कौन ने गूंथी है और जे नई साड़ी कौन ने पहराई है?
1: मैया खेलन गई नंद के आंगन, जसमत कहो कुमर यहाँ आरी। तिल चामरी सो गोद भर दीनी, हरिया उतार पहराई नई सारी। मैया मैया देख, आज मैं खेलत खेलत नंदगाम चली गई और महा जसोदा जी ने मुकु बुलाई लीनो।
0: अच्छा
1: मैया जसोदा जी ने मेरो श्रृंगार कीनो और मैया मेरी गोद हो भर दीनी। पर मैया एक बात मेरी समझ में ना आई,
0: कौन सी बात बेटी?
1: मोतन चिते चिते ढोटा तन, कछु विधना सो गोद पसारी। अरे मैया पहले तो जसोदा जी ने मो माऊ देखो और फिर मैया बा कारे कनुआ माऊ देखो और विधनाते अचरा पसार के जाने कहा मांगयो।
0: अरे बेटी, और काम सब कियो सो तो ठीक कियो, जब कबहू बिनके लाला आमेंगे तो हमऊ बाकी खातिर कर देंगी, नए नए कपड़ा बनवाए देंगी, पर जो गोद पसार के बिदना पे मांगियो है, कोई जादू टोना तो ना कर दियो? तेरे संग कोई सखी खेलवे ना गई का? अरे ललता विशाखा सखियो, अरे ओ ललता विशाखा सखियो, कहाँ
2: है किरत रानी जू? अब आई आई।
3: पामन लाऊं किरत रानी जू?
0: खुशी रहो, दूधन नाओ, पूतन फलो।
3: पामन लागू कीरत जू?
0: खुशी रहे, आनंद होए, तेरी गैया खूब दूध दे, तेरो धनी निको रहे।
3: कहो कीरत जू, कैसे बुलाई? कोई सत्यनारायण की कथा करोगी?
0: अरे सखी, कथा तो करूंगी, पर एक बात तो बताओ कि आज तुम राधा के संग खेलवे नाए गई?
3: कीरत जू खेलबे तो गई हती, पर संकेत बन तक गई, आगे ना गई।
0: और तू?
4: मैं गई पर अपनी गैया की याद आई कि मेरी गैया भूखी होगी और रमाए रही होगी, सो बीच में ते ही बगद आई।
0: अरे सखियो, आज मेरी बेटी राधा खेलती खेलती नंदगाम पहुंच गई।
2: नंदगाम?
0: हाँ, और यशोदा जी के घर चली गई तो बिन्ने राधा को सब श्रृंगार कर दियो और तिल चामल ते गोदौ भर दीनी, नई साड़ी पहराए दई।
3: कोई बात ना है, जब बिनको लाला आवे तो तुमऊ बाए नए वस्त्र साल दुसाला उड़ाए दीजो। कीरत जू,

0: जसोदा जी बड़ी हसमुख है।
1: अरे सब बात ठीक कर दी नी, पर एक कहा जादू सो कर दियो।
0: बात को तो बताओ।
1: पहले मेरी बेटी राधा के माऊ देख के, फिर अपने कारे कनुआ माऊ देख के विधना पे अचरा पसार के जने कहा मांगयो।
0: हे कीरत रानी जी, हम ना समझ सकी कहा मांगयो है।
2: या बात को तो हम सवन में बड़ी बूढ़ी प्रोतानी जी हैं, उनको बुलवाओ और बिनते ही पूछ लियो।
1: तो सखी विशाखा सखी को भेज के प्रोतानी जी को बुलाए लियो।
0: हे कीरत जू, प्रोतानी जी ऐसे ना आमेंगी, बिनकु भोजन को नो तो और दक्षिणा की कहो, जब वे आमेंगी वे बड़ी लालची हैं।
1: अरे सखी भोजन की कह दीजो और दक्षिणा की कह दीजो।

0: अजी पोतानी जी।
1: अरे ओ पोतानी जी।
2: अरे कौन है वीर?
1: मैं हूँ लता विशाखा सखी। बरसाने ते की रज्जू ने मोए तुमको लेवे को भेजो है।
2: देख रही ललता, अब तो मेरे ठाकुर जी की सेवा पूजन आए भैया, ठहर के आऊंगी।
1: रोतानी जी, तुमको खीर पूरी के भोजन और दक्षिणा हूँ मिलेगी।
2: का कही? खीर पूरी लड़ुआ होंगे
0: और संग में दक्षिणाओं मिलेगी।
2: ठीक है, दक्षिणाओं मिलेगी तो ला जल्दी ते सेवा कर लूं और सब काम काज पीछे कर लूंगी। चल तू चल, बस
1: चलो ब्रोतानी जी।

0: हे कीरत जी, प्रोतानी जी आए गई हैं।
1: तो सखी, प्रोतानी जी को आसन बिछाए देओ। प्रोतानी जी पामन लागू।
2: खुशी रहो, तुम्हारी बेटी राधा को ब्याह जल्दी ते है जाए। पर जल्दी करो, देखो मोए भूख बहुत जोरन ते लग रही है, भोजन की तैयारी करो।
1: प्रोतानी जी, भोजन की सामग्री तैयार है, रसोई सिद्ध रही है, पर मैंने आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात पूछवे को यहाँ बुलाई है।
2: महत्वपूर्ण बात?
1: हाँ।
2: कोई बात ना है, जल्दी पूछ लियो, देर मत करो। देखो पहले खाए वो, फिर कछु बात।
1: श्रोतानी जी, आज मेरी बेटी राधा खेलती खेलती नंदगाम पहुंच गई।
2: अच्छा।
1: माँ यशोदा जी ने घर पे बुलवाए लई, तो बिन्ने तिल चामर ते राधा बेटी की गोद उभर दीनी और नई साड़ी पहराए दई।
2: जामे कौन सी बात है, कोई बात ना, जब इनको लाला आवे खेलवे तो बाकू बुलाए के तुम नई नई कुर्ता टोपी पीतांबरी पहराएगी, खूब चकाचक भोजन करवाए दियो। ठीक है के ना है? है?
1: हाँ प्रोतानी जी, सब बात ठीक की नी, परंतु एक बात समझ ना आई।
2: कौन सी बात?
1: यशोदा ने पहले तो बेटी राधा को देखो।
2: अच्छा।
1: और फिर अपने कनुआ को देख के, ऊपर की माँ देख के, अचरा पसार के कछु मांगयो। मो तो कछु ही जादू टोना मालूम पड़े।
2: अरे कीरत जू, तुम तो जान हो आज यशोदा के घर नौ निध बारे सिद्ध विराजमान है। दूध की जगह दूध ले, पूत की जगह पूत, सब कछु आनंद है। कहा मांगो वो यशोदा ने, और फिर देखो जब यशोदा ने कछु मांगो ही होगो तो बस राधा बेटी दुल्हन के रूप में मांगी हुई।
1: अजी, तुम्हारे 60 वर्ष तो कुआ में ही गए।
2: का कही? कीरत रानी कुआ में नाए गए, कुआ के मोह पे ही राखी हैं। आप बताओ तो सही, आपको कौन सी बात बुरी लगी?
1: अजी देखो, कांच और कंचन को कहूं मेल हुयो करे।

0: जसोदा को लाला कारो जैसे अंधियारी रात।
1: उत बनमाल इत किंकनी विशाल सो है, उत माथे पे तिलक इत बेंदी भाल दीना है, उत पीतांबर इत चूनरी अनुपम रंग, उत श्याम रंग इत गौर रंग भीना है, उत सो बजावे श्याम बांसुरी अनुपम राग, उत सो बजावे श्याम बांसुरी अनुपम राग, इत सो जो नूपुर बजत तान जीना है, जोड़ी है अनूठी अरे जोड़ी है अनूठी, उपमा लागे झूठी राधा राधा सोने की अंगूठी, कृष्ण नीलम नगीना है।
0: रोताने जू जे सब बात तो ठीक है, पर लाला कन्हैया माखन की चोरी करे।
1: का कह रही हो आज तुम चोर ना हो का?
0: हम काहे को चोर हो में?
1: देखो अपने अपने कामन में सब चोर हैं।
0: कैसे हैं?
1: देखो देवता ऋषि व्यापारी सब चोर हैं, को दूध को धुबोना है को ना है। जगत में देखे सो सब चोर, हानि लाभ तृष्णा माया को, तज तन संध्या भोर राजा चोर। सुन लिया राजा चोर राय और रानी, शहर चोर व्यापारी, पांच चोर सबके उर भीतर, कहा पुरुष कहा नारी। ब्रह्मा चोर आए वृंदावन, बालक बच्च चुराए, और इंद्र चोर पृथ्वी को है चोरो बहु पाखंड बनाए। शंकर चोर हरत बहु औगुण, शिव शिव जोई पुकारे, और संत चोर हरि हृदय चुरायो, संत चोर हरि हृदय चुरायो, जो त्रिभुवन उद्धारे। सब मिल चोरी करी श्याम की, सब मिल चोरी करी श्याम की, जो जापे बने आई, और सूरदास सट कहा लग बरनो, माखन चोर कन्हाई, अरे माखन चोर कन्हाई। हे कीरतू संसार सब चोर है, को ना को प्रकार ते सब चोरी करे, को तनते करे तो को मनते करे, और कन्हैया कन्हैया तो उन ब्रज गोपिन के घर बिन के बुलाए पे माखन खाए वे जाए। कन्हैया तो भक्तन के मन की इच्छा पूरी करवे के काजे तो आए हैं या ब्रज में, इत एक ना समझो तुम।
0: तो ये बात तुम्हारे मन में आए गई?
1: मेरे मन में? अरे मेरे मन में कहा, सबके मन में आए गई। आप अपनी सबई ब्रज गोपिन ने बुलाए के पूछ लियो, लाला को बुलाए के निहार लियो। अरे नंद बाबा के घर 9 लाख गैया दूध दे में, काहू बात की कमी ना है बागर में, बेटो नंदगाम के राजा है राजा।
0: तो प्रोतानी जी
1: हाँ?
0: तुम नंदगाम चली जाओ और लाला को लिवा लाओ।
1: अजी देखो तुम काहू और को भेज दे लेवे को, मैं ना जा सकूं।
2: देखो प्रोतानी जी हमारे नाऊ बामन ही बुलाए के लामे, और देखो तुम्हारी बात को सब मान लेंगे, तुम शी जाओ।
1: तो देखो ठीक है मैं ही चली जाऊंगी, तो मुझे बेलन को रब्बा मंगवाए दियो, मैं लाला कन्हैया को बैठार के अभाल गई और अभाल आई। लाला कन्हैया, ओ लाला कन्हैया।
3: कौन प्रोतानी जी? प्रणाम।
1: खुशी रहो लाला खुशी रहो, ब्याह जल्दी है जाए तुम्हारो।
3: आज तो आप नए बैलन की गाड़ी में बैठ के कहाँ ते आ रही हो?
1: बताए दे मुलाला।
3: हाँ बताओ ना।
1: मैं बस आने ते तेरी सगाई की पक्की पकाई के आ रही हूँ।
3: सगाई?
1: हाँ।
3: और हमारी?
1: और का?
3: प्रोतानी जू झूठ बोल रही हो।
1: ना लाला ना, तुम्हें कीरत रानी ने बुलवाया है, वो तुम्हें निहारेंगी, तुम जल्दी से तैयार है जाओ।
3: प्रोतानी जू हमको कहा तैयारी करनी है?
1: क्यों?
3: हम पे तो एक कारी कमरिया है और बंसी है, इन दोनों

0: को संग ले लेंगे और अभी मैं अपने ग्वाल वालन को और बुलाऊं। अरे भैया सुवल तो श्री रामा मध मंगल।
1: अरे हाँ भैया कन्हैया।
2: अरे कहा है भैया कन्हैया ले काई को बात जरो ले बोल।
1: अरे हम तो बता
0: देख प्रोतानी जी बरसाने ते मेरी सगाई की बात पक्की करके आई है। जल्दी कपड़ा पहन ले ओ, पहर के तैयार रह जाओ।
1: तेरी सगाई?
0: हाँ
1: सुन ले भैया या कारे की सगाई? अरे हम तो चंदन फूटा लगाते लगाते इतने बड़े है गए।
3: अरे चुप है जा, तेरी करवाई दूंगी, तेरी करवाई दूंगी। चल चलो चलो चलो
2: चलो चलो चलो
0: चलो भैया।
3: अरे अरे अरे ग्वाले वालो कहा बूढ़े हाड़ ने तोड़ के डारोगे चढ़े आए रहे हो आखन ते दिखे ना का तुम्हें तुमने तोड़ डालो। अरे तू परे को नेक्सर रख जा। अब गायबे की बात कर ली उन्हें एक देखो रास्ता कैसे कटेगो। रस बरसामते भाई सुनो, रस बरसामते भाई रसिया सुनामते भाई चलो बरसाने को।
2: चलो भैया चलो चलो भैया कन्हैया चलो भैया बैठो भैया
0: चलो
2: बैठो रब्बा बैठो
0: बैठ जाओ।

0: अरे कीरत रानी जू,
1: हाँ
0: लालाए लिवाए लाइयू, अब खूब अच्छी तरिया ते निभार लियो बिने।
1: कहाँ है लाला?
0: आय दिखना है रोका जेरो लाला, आय जा लाला ने की तुम हाँ
2: कीरत रानी जू, मैं आपको प्रणाम करूँ हूँ।
1: सुखी रहो लाला, खूब बड़ी उम्र होए। अरे सखियो आओ, लाला को खूब निहार लियो। शाम रो तो है पर आंख खूब मोटी मोटी है।
3: कारी अंधेरी में जायो है।
1: अरे सखियो, नेक लाला की खातर करो और गारी गाओ, तिलक कर दियो और नए नए कपड़ा पहनाए दियो।

अभी श्रोता सुन रहे थे सूर पदावली पर आधारित लीला श्याम सगाई पर आधारित रास लीला भूजत श्याम कौन तुम गोरी। आलेख हरिबाबू कौशिक का था, प्रस्तुति नरेश मल्होत्रा की। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनते हैं पंडित भीमसेन जोशी की गाई ठुमरी, मिश काफी पीलू और जोगिया में।

0: उपशास्त्रीय संगीत में भी श्रोता सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी का ठुमरी गायन। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है, कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: And together becoming a force multiplier.
1: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं उन्नत प्रौद्योगिकी

0: की और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a three-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
2: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and critical minerals, our shared objective to fight against terrorism, our effort to bring global peace and stability, our joint effort in several multilateral fora to bring good practices which will make it equal for all countries to do business in a fair and equitable manner.
1: Venezuela's acting president Delcy Rodriguez has said that 164 people have died and 971 others were injured after a pair of powerful quakes hit the country. Last night, 7.2 and 7.5